0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: आज का योगा टिप्स, रोज कम से कम 20 से 30 मिनट योग करें, क्योंकि योग से हमारे पूरे शरीर को आराम और स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। कुछ ऐसे योग आसन हैं जिसमें सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंग आसन और वज्रासन जैसे सरल आसन शरीर को लचीला और ऊर्जावान बनाते हैं। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि रोज नित सवेरे योग की शिविर में आकर के आसन, प्राणायाम, बहुत सारे ऐसे आसन आप हम सभी मिलकर के एक साथ करते हैं। आप सभी को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी लोग मिलकर के जो इस योग शिविर में शामिल हो रहे हैं, उनसे होने वाले लाभों को जान रहे हैं, उनसे होने वाले विषयों पर बैठ करके हम अब मनन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार है हमारे जीवन का। तो हम सभी को मिलकर के योग करना चाहिए, आसन, प्राणायाम सभी एक साथ मिलकर के यदि हम करते हैं और हमारे संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति और संपूर्ण शरीर को ध्यान में रखते हुए ही हम आसन और योग को बताते हैं। आप सभी को एक और बात पता है कि इस समय जो कि 30 दिवसीय योग शिविर चल रही है, उसमें हर एक आसन, हर एक प्राणायाम के आगे एक शब्द की उत्पत्ति की जा रही है। उस शब्द का अर्थ जो है वो हम सभी लोगों को हम बताते हुए ही और उसका विस्तार रूप से अर्थ बताते हुए, उसकी उपयोगिता बताते हुए ही हम आसन की उपयोगिता बताते हैं। आज जैसा कि हम आज आपको आसन करवाएंगे, यानी हम सभी मिलकर के करने वाले हैं त्राटक प्राणायाम। त्राटक आसन भी कहा जा सकता है और त्राटक प्राणायाम भी कह सकते हैं। उज्ज्वल के साथ साथ हम एक शब्द की उत्पत्ति और कर देते हैं त्राटक प्राणायाम में, जो कि है तिराक्ष। तिराक्ष का मतलब होता है जो दूरदर्शिता से देखता है, यानी कि बिना किसी निशाने के बात करना, बिना किसी निशाने के हम दूर दराज बैठे हुए एक तीर से अपने शब्दवादी वेण को करना, यानी कि शब्द बेदी बाण। तो तिराक्ष का मतलब भी यही हुआ कि बिना आंखों देखा। सेम उसी तरीके से उज्ज्वल, जो कि हमने अभी साथ में हम करने जा रहे हैं उज्ज्वल त्राटक प्राणायाम। दोनों में क्या अंतर है, हम सबसे पहले आज उसकी भी पुष्टि करेंगे। लेकिन त्राटक के आगे आज हमने एक शब्द को जोड़ा है, जो कि है उज्ज्वल। उज्ज्वल जैसा कि नाम से ही आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वल मीन्स क्या होता है, यानी श्वेत, सफेद और हर एक रंग के साथ मिल जाने वाला रंग। श्वेत का असर हम सभी को पता है कि हम किसी भी रंग में अगर उसे मिला दे तो वह उसमें घुलकर अपना कर लेता है। ठीक उसी प्रकार आज त्राटक प्रक्रिया में भी हम उज्ज्वल को कुछ इस तरह देखेंगे कि वह किस तरीके से अपना असर एक आसन प्राणायाम पर छोड़ जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उज्ज्वल का अर्थ, शाब्दिक अर्थ एक प्राणायाम के साथ क्या है और क्यों है इसका महत्व, क्या हमने क्यों जोड़ा इस अर्थ को हम जानेंगे। सबसे पहले उज्ज्वल नाम का मतलब दिव्य, लिट, शानदार, आकर्षक, सनशाइन होता है। अधिकतर आपने देखा है कि हम अपने बच्चे का नाम उज्ज्वल जरूर से रखते हैं, क्योंकि उज्ज्वल का जो अर्थ है वो ही अपने आप में शानदार, आकर्षक होता है। कई मायने में हम देखते हैं कि उन लोगों का असर भी उसी नाम के साथ में होने लगता है। आम तौर पर हम देखते हैं कि यह क्रिया विशेषण, और यदि आप किसी को प्रतिभाशाली बनाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वह चीज सीखने में तेज है। इसी तरीके से एक बुद्धिमान, चतुर, जानने वाला और अधिक सम्राटी शब्द भी हर एक शब्द के आगे आता है और उसका भी कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। उज्ज्वल त्राटक शब्द के आगे हम लोगों ने इसलिए जोड़ा क्योंकि त्राटक एक महत्वपूर्ण प्राणायाम और आसन है। त्राटक को हम कई रूपों में जानते हैं, एकादशी या फिर हम ये कह सकते हैं एक द्वादशी पर जब हम किसी एक को, किसी भी एक वस्तु को काफी देर तक निहारते रहना, देखते रहना, एक द्वशीय यानी कि त्राटक प्राणायाम। वह चीज कुछ भी हो सकती है, आप चाहें
तो अपने घर में एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आप मोमबत्ती पर कर सकते हैं, या आप अपने कमरे में बैठे हैं तो किसी भी तस्वीर को लेकर के भी हम त्राटक कर सकते हैं। त्राटक की प्रक्रिया, विधि, सावधानियां और होने वाले लाभ पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्राटक उज्जवल कैसे बना। उज्जवल का अर्थ अभी हमने आपको बताया, शानदार, सनशाइन, श्वेत, और वह ऐसा रंग जो कि सभी में मिलकर एक रंग बनने वाला। आपने आंखों का रंग देखा है, यानी कि काला और सफेद। किसी की पुतलियां ब्राउन होती हैं, किसी की पुतलियां कत्थई होती हैं और किसी की नीली होती हैं। अब नीली पुतलियां किसकी हैं? ये तो आप बखूबी ही जान गए होंगे कि हम सभी के जुबा पर सिर्फ एक ही नाम आता है, जो कि है विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। तो आप समझ सकते हैं कि इन पुतलियों का रंग भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी, जैसे कहते हैं ना कि सागर के बीच में अगर एक नाव है और नाव के रंग अलग अलग हैं, लेकिन हमें सागर के रंग पर ही ज्यादातर हमारी दृष्टि रुक जाती है, जैसे कि श्वेत, मटमैला या फिर मिट्टी जैसा रंग। श्वेत यानी सफेद हमारी आंखें और हमारी पुतलियों का रंग भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी दृष्टि हमारी आंखों की एक श्वेत पर ही जाती है। उसके आसपास जो काला रंग यानी हमारी भौहें, हमारे आंखों के आसपास की पुतलियों का रंग भले ही भिन्न हो, लेकिन हमारी सबसे पहली दृष्टि सफेद और श्वेत पर ही जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि त्राटक स्थिति में जब हम करते हैं तो त्राटक आंखों से जुड़ करके आंखों से ही प्राणायाम है ये। आइए अब हम सभी मिलकर के त्राटक प्राणायाम की प्रक्रिया विधि को बताते हैं। उज्जवल त्राटक प्राणायाम, त्राटक को उज्जवल रूप से करना है, एक शानदार तरीके से, एक सनशाइन की तरीके से, जिस तरीके से हम किसी भी अवस्था में जा कर के अपने उस प्राणायाम को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए त्राटक प्राणायाम की स्थिति में हम चलते हैं। सर्वप्रथम हम किसी मैट या चद्दर बिछा करके किसी एक ऐसे हॉल में बैठ जाएंगे जहां पर अगर हम कोई भी, मान लीजिए, दिया जलाते हैं या फिर मोमबत्ती जलाते हैं, तो उससे होने वाले कुछ ऐसे प्रदूषण से हानि ना पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने घर के कुछ ऐसे एरिया में बैठ जाएं जहां हवा का आदान प्रदान ना हो, तो आप किसी भी अपने घर के कोने में या फिर घर के किसी ऐसे आंगन में बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमें एकाग्र चित होकर के ही बैठना है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम वातावरण को बनाते हैं और उसके बाद त्राटक की विधि बताते हैं। उज्जवल त्राटक प्राणायाम को करने के लिए हम किसी भी योगा मैट या फिर हम किसी साफ सुथरी चद्दर को बिछा करके बैठ जाएंगे। अगर आप सामूहिक रूप से त्राटक कर रही हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप एक सर्कल बना लें, यानी कि गोलाकार, क्योंकि हम जिस वस्तु को त्राटक बनाने जा रहे हैं वह सामूहिक रूप से अगर हम त्राटक कर रहे हैं तो सभी को एक ही दृष्टि में ले जाने के लिए वह सिद्ध साबित होगा। और यदि हम एकाकी कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो हम आराम से कहीं भी बैठ करके अपने घर में, यानी कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण की बात यह है कि यदि हम किसी भी वस्तु को त्राटक बनाते हैं तो वस्तुओं के नाम है, आप दिया ले सकते हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं, आप किसी किताब को ले सकते हैं, आप किसी दीवार पर टंगी हुई सीनरी को ले सकते हैं, आप किसी मनुष्य को भी बैठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हम जब त्राटक करते हैं तो हमें एकाग्र चित होकर के बैठ जाना है। तो पहली विधि, सबसे पहला पॉइंट, कि हम अपने आप को यानी अपने मन को स्थिर करते हुए एकाग्र चित होकर के बैठ जाए। तत्पश्चात हम अपने मन की सारी वृत्तियों को शांत करते हुए ओम का उच्चारण 1 से 3 बार, तत्पश्चात हम यदि दिए की लौ को लेकर के त्राटक कर रही हैं, तो उस कमरे का जो भी वातावरण होगा वह इस तरीके से होना चाहिए जैसे पूरा अंधकार। अंधकार करने का मतलब ये है कि हमारी पूरी की पूरी दृष्टि जो है वह उस त्राटक की प्रक्रिया पर आएगी, यानी कि त्राटक की उस लौ पे आएगी। यदि आपने दिया लिया है तो हम दिए की लौ को देखेंगे, यदि आपने मोमबत्ती लिया है तो आप मोमबत्ती की लौ को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात त्राटक की यही होती है कि यदि हम अगर दिया और मोमबत्ती ले रहे हैं तो हमारे त्राटक का पूर्ण उद्देश्य पूरा होता है। तो सबसे पहले हमने दिया जला लिया है
और अपने ही हाइट के हिसाब से आपको वह दिया रखना है या मोमबत्ती। यानी आप नीचे से कुछ भी आप डब्बा रख लें, या फिर आप कुर्सी रख लें, या फिर एक मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके बराबर, आंखों के बराबर ही वह त्राटक का वस्तु होनी चाहिए। चाहे आप रख सकते हैं दिया और चाहे आप मोमबत्ती, आपकी सीध के हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद आपको सीधे बिल्कुल अपनी गर्दन करनी है और उसी वस्तु को सीधे आपको देखना है, कम से कम प्रारंभिक अवस्था में 1 से 1.5 मिनट। प्रारंभिक अवस्था में हम 1 से 1.5 मिनट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को आसन प्राणायाम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, आंखों की पुतलियों में हल्की सी झुंझुनाहट। तो ये सारी परेशानियां जब आपको प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, तो हम प्रारंभिक अवस्था को 1 से 1.5 मिनट तक ही करते हैं। साथ ही साथ जब हमें इन सारी परेशानियों से जब हम निवृत्त होकर हम आगे की अवस्था में आ जाते हैं, तो हम अपना टाइम इसमें बढ़ा सकते हैं। यानी कि 2.5 मिनट, 3 मिनट बिना पलक झपकाए हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यानी कि हम अब आते हैं त्राटक की दूसरी विधि पर। एकाग्रचित होकर के सीधे हमें आंखें खोल करके बिना पलक झपकाए, यानी कि आप अपनी आंखों की पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकाएंगे और सीधे आप उस मोमबत्ती को या दिए की लौ को देखते जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था जैसे आपकी 1.5 मिनट की पूरी हो जाती है, हाथों की हथेलियों में घर्षण करना है और अपनी आंखों पे, चेहरे पे लगा करके आंखों को स्वतः ही बंद कर देना है। 30 सेकंड के बाद आंखें खोलने पर ही हम अपने कमरे की जो लाइट है उसे हम जलाएंगे। तुरंत ही आप उठ करके ये काम ना करें क्योंकि अभी आपने त्राटक किया हुआ है, और उसके बाद में आप जाकर के अपने कमरे में रोशनी कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सुबेरे और शाम को कर सकते हैं। आइए त्राटक प्रक्रिया के लाभ जान लेते हैं। छोटे बच्चों को आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं और छोटे बच्चों को चश्मा लगना आजकल एक आम बात सी हो गई है। 3 से 4 साल के बच्चों को भी हमने देखा है कि उन्हें उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है। तो इसका सीधा कारण सिर्फ आंखों में ये इस प्रकार की कमजोरी नहीं हो सकती है, मोबाइल नहीं हो सकती है। कुछ बच्चों को जेनेटिक भी होता है, उनके माता पिता के द्वारा ही आंखों की कमजोरी मिलती है। ठीक वैसे ही यदि हम स्टार्टिंग से ही, हम प्रारंभिक अवस्था से ही हम अगर अपने बच्चों को इस तरीके से त्राटक करवाएं, तो चश्मा भी उतर सकता है। और दिन में 2 बार त्राटक अवस्था में जरूर से करें। इसके बाद में हम दूध का सेवन करें। साथ ही साथ में जब हम सवेरे उठें, तो अपनी आंखों में ठंडे पानी का छिनकार करें। ठंडे पानी के छिनकार से भी आंखों में होने वाली परेशानियां और साथ ही साथ जो कि आईएसबी की प्रॉब्लम होती है वह भी दूर होती है। आइए अब हम आपको बता दें इसकी सावधानियां। सावधानियां ये हैं कि हम किसी भी प्रकार में जब हम त्राटक करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सावधानी यही है कि हम मोमबत्ती या दिए की लौ को अपने बराबर रखें। इस तरीके से नहीं कि हमारी आंखें नीचे झुक करके देखें या फिर छत पर बिल्कुल ऊपर। आप अगर अपने कमरे में इसी तस्वीर को भी देख रहे हैं त्राटक के रूप में, तो भी बिल्कुल आंखों की सीध, यानी आपकी नाक की सीध तक होना चाहिए। तो ये है उज्ज्वल प्राणायाम। तो आपने सुना उज्ज्वल त्राटक प्राणायाम हम सभी ने मिलकर के आज किया और इसका संपूर्ण लाभ हम सभी मिलकर के कर सकते हैं। जिनके भी घर छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें चश्मा लगा हुआ है, या हम बड़े भी हैं मोबाइल फोन्स आजकल यूज करते करते, टीवी ज्यादा देखते देखते, या फिर पढ़ाई ज्यादा झुक करके करने से भी, जो कि त्राटक अगर आप करेंगे और आईज वीक की समस्या होने लगती है, तो उज्ज्वल त्राटक करेंगे तो हमारी आंखें भी उज्ज्वल होंगी, साथ ही साथ हमारा भविष्य भी उज्ज्वल होगा। 30 दिवसीय योग शिविर में हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम त्राटक की अवस्था से वापस आने के बाद में हम सभी 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे सभी लोग मिलकर के। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, योग की योग पाठशाला की चल रही शिविर में आप सभी का तहे दिल से मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। 8 दिवसीय योग शिविर में जो कि आत्म प्रीति से जुड़ना है हमें, और आत्म प्रीति शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तो आइए आज हम जानेंगे एक नए प्राणायाम को और नए प्राणायाम से जुड़े हुए एक शब्द को। आज हम करने वाले हैं अग्निसार, लेकिन अग्निसार कैसे बना हम आज उस पे भी बात करेंगे। आज हम करने वाले हैं योग शिविर के 5वें दिन में ओजस अग्निसार। ओजस अग्निसार का मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ। ओजस अग्निसार का मतलब हुआ, सबसे पहले हम ओजस को जानेंगे। ओजस संस्कृत भाषा के ओजस का हिंदी तत्सम स्वरूप है। इसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ है एबिलिटी, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, शक्ति, बल। और बल जहाँ पे हो जाता है वहाँ अग्निसार के नाम से जुड़ करके, यानी कि ओजस अग्निसार। आपको बता दें कि ओजस का मतलब शरीर की ताकत होता है। ओजस नाम रखने से आपका बच्चा भी नाम के मतलब की तरह व्यवहार करने लगता है। ओजस का अर्थ शरीर की ताकत से है, तो आप समझ गए होंगे कि अग्निसार को नाम हमने आगे से ओजस क्यों दिया। अग्निसार यानी कि ओजस अग्निसार। योग में ओजस का क्या अर्थ है आइए हम आपको बताते हैं। ओजस एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद शक्ति या जीवन शक्ति का सार के रूप में किया जाता है, या यूं कहें हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, ओजस वह महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो हमारी प्रतिरक्षा, ताकत और खुशी को नियंत्रित करती है। 3 चीजों में जो हम प्रचुर मात्रा में लेते हैं, यदि हमारा ओजस कमजोर है तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा उत्साह, हमारी ऊर्जा शिथिल हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी आत्मिक शक्ति को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ओजस शक्ति को हमेशा से बनाकर रखना चाहिए। ओजस की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं, यानी इस शब्द की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं, हम उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। ओजस रंग और आवाज को बनाए रखता है। ओजस 5 इंद्रियां और मन के कार्यों को उत्तेजित करता है। ओजस शरीर, मन, इंद्रियों, आत्मा की अखंडता को बनाए रखता है। मन की ऊर्जावान स्थिति शरीर का विकास और शक्ति ओजस पर निर्भर करती है। ओजस की विशेषताओं में सबसे पहले अगर किसी चीज की कमी अगर करते हैं तो जिम्मेदार कारक है। इसीलिए ओजस की विशेषताओं में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओजस के फायदे, यानी हमें इस नाम से जो फायदा है तभी हम जान पाएंगे कि ओजस अग्निसार का नाम हमने ओजस अग्निसार क्यों रखा। प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करता है। शारीरिक पोषक तत्वों से समृद्ध है जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्ट करता है जिसमें कोई भी फिल्टर, बाइंडर, रासायनिक या कृत्रिम स्वाद नहीं होता है। हम अगर ओजस को अग्निसार के साथ जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण जरूर है। आयुर्वेद के अनुसार ओजस का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं। दूध में सबसे ज्यादा ओजस माना गया है, बादाम में सबसे ज्यादा ओजस माना गया है, यानी कि शारीरिक क्षमता और शक्ति को बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन। आध्यात्म में ओजस का क्या अर्थ है आइए हम वो भी बता देते हैं, क्योंकि जब हम योग से जुड़े हैं तो आध्यात्म से जुड़े रहना भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पचे हुए भोजन, जलवायु, संस्कार और विचार का सार है। गहरे स्तर पर यह सभी उच्च संस्कारों के विकास को पोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ओजस हमारी अव्यक्त रचनात्मक क्षमता भी है, रचनात्मक ऊर्जा का भंडार भी करता है। तो आइए अब हम करेंगे ओजस अग्निसार। हमने पहले भी दोस्तों अग्निसार किया हुआ है, लेकिन अब इस बार हम अग्निसार को लेने वाले हैं ओजस अग्निसार। अग्निसार करने के लिए, यानी ओजस अग्निसार करने के लिए सबसे पहले हम किसी मैट पे या चादर पर आसन बिछाकर बैठ जाएंगे, पद्मासन की स्थिति में या हम बैठ जाएंगे। आपको बिल्कुल से शांत पलथी मार करके पद्मासन की स्थिति में या हम बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में इसलिए क्योंकि यह पेट से संबंधित है, इसीलिए अग्निसार को करने के लिए हम 2 मुद्राएं ले सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम को करने से पाचन क्रिया मजबूत होती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी और गैस है,
वह अग्निसार कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अभी हमने बताया कि ओजस प्राणायाम यानी ओजस अग्निसार प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है, और जैसे आपको अभी सुन करके लग रहा होगा कि यह प्राणायाम शरीर को ऊर्जा देता है, तो सोचिए अग्निसार में अगर ओजस मिल जाए तो दोनों ही कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अग्निसार से क्या लाभ मिलता है, आइए हम आपको बताते हैं। अग्निसार से यह लाभ मिलता है कि हमारी पाचन क्रिया को गतिशील रखता है और उसे मजबूत बनाता है। शरीर के सभी तरह के रोगाणुओं को भस्म करके शरीर को स्वस्थ करता है। यह क्रिया पेट की चर्बी को घटाकर मोटापे को दूर करता है और कब्ज में यह सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। क्या अग्निसार पेट की चर्बी को कम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। पाचन अग्नि या अग्निसार को प्रज्वलित करना सबसे महत्वपूर्ण यह परिणाम होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो पाचन अग्नि या अग्निसार प्रज्वलित होती है। उस अग्नि को शांत करने में और भोजन पकाने में, सबसे पहले भोजन पकाने में यह महत्वपूर्ण अंग है उसका। लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं और उसके बाद में तुरंत हम आराम करने की स्थिति में चले जाते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है दोस्तों कि चाहे वो दोपहर का भोजन हो चाहे वो रात का भोजन हो, भोजन करने के बाद में वह तुरंत सोने की कोशिश करते हैं और सोना चाहते हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा पेट की चर्बी को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास चयापचय प्रक्रिया में सहायता करता है और पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो पाचन को कितना मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। यह अभ्यास वसा जलाने में मदद करता है, सुस्त अंगों को जगाता है और पाचन तंत्र को पोषण देता है। तो अग्निसार है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है, यह आपने शिविर में देखा। और शिविर में बहुत सारी ऐसी हमने प्राणायाम करवाए हैं जो कि उनका महत्व सुनने मात्र से और करने मात्र से ही आपको दुगना लाभ लगता होगा कि यह मिल जाएगा। तो आज अग्निसार को हम जानेंगे कि अग्निसार कितनी बार करना चाहिए। 3 से 4 बार अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि जो प्रथम अवस्था में कर रहे हैं वह 1 से 1.5 मिनट से शुरू करते हुए ही हम उसे 4 से 5 की स्थिति में ले जा सकते हैं। अग्निसार अनुलोम विलोम का दूसरा नाम है? नहीं, अग्निसार जो है यह पेट से संबंधित होता है। पेट की सारी प्रक्रियाओं को यह आपस में मिला करके बहुत ही ढंग से आपको ये नया एक प्राणायाम बताता है, जैसा कि ओजस अग्निसार। ओजस अग्निसार क्रिया कैसे की जाती है, आइए हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। अग्निसार प्राणायाम यानी ओजस अग्निसार की प्रक्रिया। इस प्राणायाम का अभ्यास खड़े होकर, बैठकर या लेटकर तीनों तरह से आप कर सकते हैं। सहजता से जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोकें, पेट को नाभि पर बार बार झटके से अंदर खींचे और ढीला छोड़ें। अर्थात श्वास को रोककर रखते हुए पेट को तेजी से 3 बार फुलाएं और पिचकाएं। यानी पेट को बार बार पिचकाना है और बार बार उसे ढीला छोड़ देना है, जिसकी वजह से इसकी जो पाचन क्रिया है उस पर सीधा का सीधा असर पड़ता है। पानी की खपत के, जो कि पानी नहीं पीते हैं लोग, उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ओजस अग्निसार पानी की जो कमी है उसे भी पूरा करता है। लेकिन ओजस अग्निसार हम करेंगे और पानी की भी प्रक्रिया को अगर हम निरंतर लेते रहेंगे तो हमें इसका दुगना लाभ मिलता है। तो योग शिविर में आज का 5वां दिन यानी कि आपने आज किया ओजस अग्निसार, तो कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा और हमारे शिविर में निरंतर ऐसे ही बने रहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं योग के माध्यम से पानी की उपयोगिता। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि योग के माध्यम से पानी की उपयोगिता भला क्या हो सकती है। बिल्कुल, पानी सभी को पता है कि जल ही जीवन है और योग के माध्यम से जल ही जीवन को और अच्छे से हम आपको विस्तार से बताएंगे। योग, सभी को पता है कि जब हम योग करते हैं तो हमारे संपूर्ण शरीर का विकास होता है। विकास, हम अपने आप को विकसित करते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं।
योग ही एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने आप से मिलते हैं। साधारणता अगर हम ये कहें कि योग का मतलब क्या होता है, तो वो होता है जोड़ना। तो आज हम पानी से, हम जल से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सुनने में कुछ ऐसा आपको एक अद्भुत सा लग रहा होगा कि योग और जल, योग और पानी, पानी और योग का मेल तो है ही नहीं। लेकिन आज हम योग के माध्यम से ही पानी का महत्व बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा थके होते हैं, बहुत ज्यादा

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

हाँ जी, आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय, कैसे हैं आप? फिलहाल अगर आप आ चुके हैं तो हम आपको बता दें कि मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर्षुनति। और आज के इस गाने के पीछे की जो कहानी है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले कर लेती हूँ आपका अपना वार्म वाला वेलकम आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग कोडा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप कर रहे होंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि घड़ी में वक्त हो चला है 8:37, जस्ट 37 हुए हैं फिलहाल के लिए, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM आपका अपना रेडियो ज्ञान असली गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त वेंसडे के स्पेशल मॉर्निंग जॉगिंग मौजूद रहती हैं आपके साथ, यानी कि मैं, मेरा नाम उन्नति। और आज के इस गाने के पीछे की वजह है हमारा खुद से मोहब्बत करने का फलसफा। जी हाँ, दुनिया भर से मोहब्बत करते हैं, दुनिया भर में प्यार बांटते हैं, लेकिन न जाने क्यों जब मोहब्बत की बात आती है, जब प्यार की बात आती है, जब इश्क की बात आती है, तो सबसे पहले लोगों को रख कर सबसे आखिर में जो हम रखते हैं वो अपना खुद होते हैं। इवन कई बार लाइन से भी गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? और इसीलिए आज का हमारी पोइट्री ऑफ द डे कुछ यूं कहती है कि दुनिया की भीड़ में खुद को खोना छोड़ दो, दुनिया की भीड़ में खुद को खोना छोड़ दो, दूसरों के साँचे में खुद को पिरोना छोड़ दो। आप जैसे भी हैं एकदम मुकम्मल हैं आप, फालतू की बातें फालतू के आईने के सामने रोना छोड़ दो। कुछ कमियां हैं तो उन्हें दुलारना सीखो, गलतियां अगर हुई हैं तो उनसे ज़रा संवारना सीखो। रोज़ बचते रहते हैं ज़माने की धूप से, चलो आज खुद की हसीन छाँव में कुछ वक्त बिताना सीखो। लोग क्या कहेंगे ये सोचना उनका काम है, आपकी हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है। ज़िंदगी बेकार नहीं, एक खूबसूरत सफ़र है दोस्त, बस खुद से मोहब्बत ही इसका असली नाम है। तो आज एक कप गरम चाय अपने लिए बनाइए, गमों को भुलाकर थोड़ा सा मुस्कुराइए। दुनिया से तो दोस्ती बहुत कर ली है आपने, चलो आज पहली बार खुद से भी हाथ मिलाइए। और यही कहना चाहता है आज का पोइट्री ऑफ द डे कि भैया खुद से तरह मोहब्बत करना सीख लो, क्योंकि जब तक आप खुद से मोहब्बत नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करती है। हालांकि जब आप खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारे ताने मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक ओ तुम तो बहुत सेल्फिश हो रहे हो, तुम तो बहुत मतलबी हो रहे हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम कैसे इंसान हो, न जाने कौन कौन सी बातें। और कई लोग तो आपको नार्सिस्ट का टैग भी दे देंगे। बट जनाब, अगर आपको कोई ये बातें कह रहा है तो मुबारक हो, आप अपनी ज़िंदगी के सबसे सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि इंसान को कभी खुश नहीं किया जा सकता। आपके साथ रहने वाला दूसरा इंसान आपकी किसी भी हरकत से नाराज हो सकता है, कभी भी खुश नहीं रह सकता। और कहते हैं कि इंसान चाहे किसी की लाइफ में कितना ही बड़ा हीरो क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उसे हमेशा विलन ही समझता रहता है। इसीलिए दूसरों के नजरिए से खुद को देखना जरा बंद कीजिए। आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। तो थोड़ा मुस्कुराइए, खुद से हाथ मिलाइए और कहिए लव यू जिंदगी। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इस गाने को एंजॉय करते हैं डियर जिंदगी से, और जिंदगी को याद दिलाते कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं।

भैया इस गाने से मुझे कुछ बहुत ज्यादा याद आ रहा है और इतना तगड़ा याद आ रहा है कि सोचा आपको भी बता ही दिया जाए। आज सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है, नहीं पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है मिठाई कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी मिठाई। बिकॉज भैया सुनने में आया है कि मिठाइयों का सीजन आ चुका है, त्योहारों का सीजन आ चुका है और आज बड़ी मिठाई बटने वाली है सब जगह पर। और हमारा बच्चे जैसा दिल कह रहा है कि क्यों ना सबके जिले की फेमस फेमस मिठाइयाँ ट्राई कर ली जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे जिले की फेमस मिठाई है कौन सी। हालांकि यूं तो जो लोग मुझे चढ़ाया करते हैं वो उनसे जब सवाल करो कि भैया आपके ज़िले की फेमस कौन है तो वो उठाकर कहते हैं अरे बरेली की बर्फी, वो अलग चीज़ है। फिलहाल के लिए आप बताइए, अगर आप उठ चुके हैं मेरे शेर और शेरनियों तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजी उन्नति और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। और तो भैया कैसे हैं आप? ना ये वाली बात सुनकर नहीं जी। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपकी आंख खुल चुकी है और आंख खुलते ही आपको सुनाई पड़ा है कि किसी का मीठा खाने का मन कर रहा है तो फिर कैसे हैं आप? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई मिठाइयों की बात करता है तो दूसरे इंसान का भी मन कर जाता है कि लाइक समथिंग मीठा मीठा हो जाए। और वैसे भी कहते हैं कि हर एक अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले कुछ

0: मीठा खाना चाहिए, अब मुझे मीठा मिल नहीं रहा है। तो ऑफ कोर्स आपका अपना चैट बॉक्स खुला है, आपकी अपनी फोन की लाइंस खुली हैं 6393316429 पर, और आप मुझे आकर बताइए कि आपके आपके जिले की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है, आपके स्टेट की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है, और आप मुझे कहां कहां से सुन रहे हैं। जस्ट लाइक अगर आपके शहर का फेमस लड्डू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आई लव लड्डू, बट वो मोतीचूर के होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके सिटी का कुछ और फेमस है मीठे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाला है बिकॉज ऑफ ये त्योहारों का, जो फेस्टिवल्स का जो सीज़न आ रहा है, जो मौसम आ रहा है, जो बहार छाने वाली है आजकल, उसके बारे में ज़रूर से बताइएगा कि आपके शहर का, आपके ज़िले का, आपके इलाके का और आपके क्षेत्र की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है। हालांकि अगर मैं अपने शहर की बात करूं, जहां से मैं आई हूं, वहां आप सुबह सुबह इंसान जो मुझे खाते नज़र आते थे वो था दही और जलेबी। हालांकि इसमें जजमेंट मुझे बहुत सारे मिले कि दही जलेबी खट्टा मीठा साथ में कैसा लगता है, लेकिन गजब की बात है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इससे पहले कि मेरे मुँह से पानी आपको नज़र आने लग जाए, लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक आप चैट बॉक्स में बताइए कि आपके ज़िले की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है, ताकि मैं सबके ज़िले में जा जाकर इस त्योहारों के मौसम में मिठाइयाँ खरीद सकूँ। ऑफ कोर्स सुनते रहिए गुड मॉर्निंग हुंडा, स्टे ट्यून्ड।
1: पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन, डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसके, क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय, जवानी की होती है यही निशानी रे।

करते हुए हम वापस से आ चुके हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। एक बार वापस से वार्म वेलकम है आप सभी का और वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि आपके मैसेजेस इंतजार कर रहे हैं मेरा यानी कि आपकी अपनी अर्जुनती का।

और हमारे चैट बॉक्स में जो पहला मैसेज आया है आज के शो में, वो आया है अरविंद जी का फ्रॉम मनकापुर, और लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग अनिता मैम, लव यू जिंदगी। बस यही तो कहना था अपनी जिंदगी से, और जिंदगी ने आपको लव यू टू कहा कि नहीं? फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। एंड साथ ही उन्होंने लिखा है कि जिंदगी खुद की है, इसे अपनी तरह से जियो, माफ कर दो सबको और बेहिसाब खुल के जियो। क्या बात है, बस यही मुझे भी सिखाना था आप सभी को कि भैया जिंदगी आपकी है तो दूसरों की शर्तों पर इसको जीना थोड़ा कम कर दो। क्या कहेंगे चार लोग, ये उन्हें ही सोचने दो कि उन्हें क्या कहना है, आप मत सोचो बैठ करके कि उनको क्या कहना है, राइट। एंड अनूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, कभी जीने की आशा, कभी मन में निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छांव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। शुभ प्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत खूबसूरत लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखा है, जिंदगी का फलसफा आपने कुछ लाइंस में कंप्लीट कर दिया, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात आपको भी, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। इसके बाद ओके, तो हमने पूछा था कि आपके ज़िले की फेमस मिठाई कौन सी है, तो भैया लोगों ने हमको इसलिए नहीं बताया ताकि हम उनके ज़िले में आना जाएं। फिलहाल के लिए दो हमारे लिसनर्स ने बता दिया है कि उनके ज़िले की फेमस मिठाई कौन कौन सी है, यहाँ तक कि कह भी दिया है कि आप आइए हम आपको मीठा खिला भी देते हैं। ओके, तो भैया काजू कतली, वन ऑफ माई फेवरेट कतली, थैंक यू सो मच, अरविंद जी ने बताया है। एंड इसके बाद गुपचुप मिठाई गोंडा में फेमस है, गुपचुप। भाई आज तक तो गुपचुप हम खाली पानी बताशे को ही समझते थे, जिसको हम पानी बताशे, गोलगप्पे, पताशे, न जाने किन किन नामों से जानते हैं, उसका ही नाम था गुपचुप। लेकिन आज मुझे पता चला कि गोंडा में गुपचुप मिठाई फेमस है। आपको ये बात पता थी क्या लिसनर्स, कि आपके गोंडा शहर की जो सबसे फेमस मिठाई है वो गुपचुप है, लेकिन वो दिखती कैसे है, चैट बॉक्स में बताइएगा। एंड नागेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अरविंद जी ने लिखाया है, मेरा फेवरेट तो घेवर है। क्या बात है, राजस्थान का पॉपुलर घेवर। हालांकि इतनी मिठाइयों की बात हो गई है कि मेरा मुंह मीठा मीठा हो गया बिना खाए। एंड नागेश्वर धाकर जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। ओ आज नती मैम इतना बड़ा मुंह ना खोलिए, क्योंकि आज वेंसडे है और इतने वेंसडे में हम ही आते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, वन ऑफ माई फेवरेट है। एंड मेरे यहाँ काजू कतली फेमस है, लगता है काजू कतली हर ज़िले की सबसे पसंदीदा मिठाई बन चुकी है, क्योंकि हर कोई आकर काजू कतली के बारे में बात कर रहा है। फिलहाल हम नहीं कहेंगे आपसे कि हमारे ज़िले की फेमस काजू कतली है, क्योंकि हम तो हैं भैया बरेली की बर्फी वाले। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगले म्यूजिकल वाले ब्रेक की तरफ, उसके बाद आते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए अभी बाकी हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड।

0: छप्पन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12 गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हां जी, तो एक बार वापस से वेलकम है आप सभी का आपके अपने वाले मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूं आपकी अपनी आर श्रीमती और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और बात है आपके घरों की। आपको क्या लगता है कि इंडियंस धीरे धीरे अपना घर बनाना भूलते जा रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि जमीन कम पड़ रही है, इसलिए भी नहीं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, और इसलिए भी नहीं क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। इंडियंस घर बनाना भूल रहे हैं और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इंस्टाग्राम पर बाहर से खूबसूरत दिखने वाले घरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हर कोई चाहता है कि एक ऐसा घर बनाए जिसको पोस्ट करे तो लोगों की लाइक्स की लाइन लग जाए, लोग बहुत तारीफ करें, जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, जिसके रंग बहुत प्यारे हो, लेकिन उसके पीछे की जो असल साइंस है उस पर ध्यान कोई दे ही नहीं रहा। जहां हर कोई उसे पिक्चर परफेक्ट मानता है, पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हें जाने कितने पैसे लगा देते हैं, लोग करोड़ों तक पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले सीजन्स में कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं। और वहीं पर कुछ वक्त पहले तक जब हमारे एंसेस्टर्स घर बनाया करते थे तो हर एक चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक और

साइंस को लगाते थे। आज भी आप किसी भी जिले में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और किसी भी स्टेट में क्यों ना चले जाएं, हर राज्य की अपने तरीके के घर होते हैं, किसी के घर सेम नहीं होते। बट जैसे जैसे जनरेशन बदलती जा रही है, वैसे वैसे इन घरों का नक्शा, इन घरों की पिक्चर बदलती जा रही है। अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी और इसीलिए राजस्थान में जो हवेलियाँ बनती हैं उनमें छोटे छोटे झरोके होते हैं जो तेज़ गर्म हवा लू को रोकते हैं और ठंडी हवा को भेजते हैं। ये साइंस उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स लगा रहे थे। उन्हें पता था कि हमारे पास एसी नहीं है, उन्हें पता था कि कूलर, एसी, पंखा जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। वो जानते थे कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं और अपने घर का तापमान ठीक रखने के लिए ज़रूरत है नेचुरल चीज़ों की, यानी कि नेचुरल हवा, जो हवा चल रही है बस उससे ही काम होगा। और इसीलिए रेगिस्तान की ज़मीन पर बना वो हवेली, उसके अंदर भी ठंडक होती थी भले ही बाहर कितनी ही डिग्री की गर्मी क्यों ना पड़ रही हो। ये साइंस हम नहीं सोचते, लेकिन ये साइंस हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले सोचा हुआ था। ऐसे में ही बात कर ले अगर केरला की, तो नालूकुट्टो घर, ये कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि बीच में खुला आंगन होता है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करने और हवा के आने जाने के लिए परफेक्ट होता है। अब आपको भी पता है कि केरला में अच्छी खासी बारिश होती है, उस बारिश में उमस से निपटने के लिए इन डिज़ाइंस को तैयार किया गया था। एक खूबसूरत डिज़ाइन जो चारों तरफ से तो पैक है लेकिन बीच का जो आंगन है वो खुला हुआ है। बारिश होते ही जो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है वो उमस होती है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा उमस बढ़ जाती है, हर जगह पर गर्मी गर्मी, इवन कई लोग इसी गर्मी के कारण बेहोश तक हो जाते हैं जब भी बारिश होती है। और हम कहते हैं यार बारिश होने के बाद भी गर्मी नहीं जा रही, उसके पीछे की वजह कुछ इस तरह से है कि हम अपने घर को ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि ना हवा आ रही है ना ढंग से जा रही है, उमस बढ़ती जा रही है। वहीं हमारे पूर्वज सोचते थे कि अगर उमस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और घर को ठंडा बनाए रखने के लिए जो आंगन है उसको खोल दो, हवा आती रहेगी जाती रहेगी। भले ही बारिश में थोड़ा सा आंगन भीग जाता है लेकिन उसको भी हार्वेस्ट किया जाता था, रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं उसे। गुजरात में बनते हैं बुंगा घर। कच्छ के रण में आने वाले चक्रवात और भूकंप से बचने के लिए, स्पेशली आपको पता होगा कि गुजरात के कच्छ जिले में कई बार भूकंप आ चुके हैं और आया करते थे, और उनसे बचने के लिए ही वहाँ पर गोल दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं जो दिखने में एकदम सिलेंडर की तरह लगते हैं, नीचे से गोल और ऊपर से तिकोनी टोपी वाले। और इसके पीछे की रीज़न ये है कि ये हवा को आने जाने की जगह देते हैं, प्लस उन भूकंपों पे यानी कि जब अर्थक्वेक आता है वो हिलते नहीं हैं, वो परेशान नहीं करते हैं, वो यूं ही खड़े रहते हैं। जहां आजकल हल्का सा भी झटका लगने पर सुनाई पड़ता है कि बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, वहीं पर ये घर सालों पुराने आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे घर बनाने वालों ने दिमाग लगाकर ये सोचा था कि इस एरिया में जो अर्थक्वेक आ रहा है उसको झेलने के लिए कौन सी डिज़ाइन सबसे बेहतर है। घर सिर्फ एक ईंटों का दीवार नहीं होता, वो आपकी अपनी जगह है, आशियाना है, और आशियाना हर दफ़ा नहीं बनाया जा सकता। इसी को सोचकर हमारे एंसेस्टर्स घर की डिज़ाइन कुछ इस तरह से रखते थे। वहीं पर आपको स्टिल्ट हाउस मिलते हैं असम में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जंगली जानवर होते हैं, इसीलिए इन घरों को हमेशा ज़मीन से ऊपर रखा जाता है। इसके पीछे की वजह यही है ताकि जब बाढ़ का पानी आए तो घरों तक ना पहुंचे और घरों के मेंबर्स सुरक्षित रहें, वो ऊपर आराम से सूखे में बैठे रहें। अभी बीच में असम में बाढ़ आई थी और ये बहुत दुखद घटना हम सब ने देखी, लोगों ने मदद की, लेकिन इसके बाद भी हमने ये नहीं सोचा कि ये जो घरों में पानी भर रहा है इसके पीछे की वजह ये भी तो हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि असम में बाढ़ आएगी, पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, जंगली जानवर जंगल से निकलकर आएंगे, और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम ज़मीन से मिलता हुआ घर तो नहीं बना सकते, और इसीलिए उन्होंने ज़मीन से कुछ फिट ऊपर जाकर अपने घरों को डिज़ाइन करना शुरू किया था, और तब बनाया था उन्होंने स्टिल्ट हाउस। अब आप सोचिए कि वो पूर्वज जिन्हें हमें लगता है कि
इतने एडवांस नहीं थे, उन्हें इतनी साइंस नहीं पता थी, उन्हें इतना मैथ नहीं आता था, इसके बाद भी वो ये जानते थे कि हमारे क्षेत्र के लिए हमारे परफेक्ट आशियाने कैसे तैयार किए जाएंगे। वहीं आजकल हम सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक्स पिक्चर परफेक्ट घर बनाने में लगे पड़े हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और उस करोड़ रुपए के बाद भी घर के अंदर एसी कूलर का इंतजाम करते रहते हैं। हर एक कमरे के अंदर एसी होना मस्ट है, नहीं तो गर्मी में पागल हो जाते हैं। पंखे से हवा लगती ही नहीं, कूलर में परेशान, घरों में पेड़ पौधे लगते ही नहीं हैं। इवन कई लोग घरों से पेड़ पौधे हटा करके प्लास्टिक के फूल लगा लेते हैं, ये सोच कर कि सजावट तो खूबसूरत दिखेगी। सोचिए ज़रा कितनी गहरी बात है, हम घर बनाना भूल चुके हैं। फिलहाल आप बताइएगा आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखने वाले घर कौन से हैं। और आइए चलते एक छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा। मैं हूं आपकी अपनी आर्ज उन्नति और ये है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।

एक लाइन जो आपकी बचपन से आप सुनते आ रहे हो, लाइन है, दाल में कुछ तो काला है दया, दाल में कुछ तो काला है। और इस लाइन को हम लोगों ने कितनी मीम्स में इस्तेमाल किया है, इवन कितनी दफा हम लोगों ने ये कहा है। सीआरडी के न जाने कितने मीम्स को, कितने सीन्स को कट कर करके हम भेजते रहते हैं, कभी प्रद्युम्न साहब को भेजते हैं, कभी दया जी को भेजते हैं, कभी अवजीत साहब को भेज देते हैं अपने दोस्तों को डराने के लिए। राइट, जैसे ही कोई सस्पेंसफुल बात करता है ग्रुप चैट के अंदर, तो सबसे पहले हम एसीपी प्रद्युम्न साहब को भेजते हैं और दिखाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। गेट तोड़ने की बात आती है तो हमें दया याद आते हैं। बट क्या आपको पता है, जिस सीआईडी को आपने एक तरह से मीम बना रखा है, उसी के पास दुनिया का सबसे लंबा रिकॉर्डिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोडा विद राजश्री नदी, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली।

हां जी, तो चलिए बात कर लेते हैं आपके अपने बचपन की सबसे पुरानी और सबसे प्यारी याद की, जिसको आपने अक्सर टीवी पर देखकर गुजारा। सीआईडी, किसने इसको नहीं देखा है? आई थिंक सभी ने देखा होगा और सभी को पसंद भी आया होगा। मैंने भी अपने बचपन में सीआईडी बहुत दफ़ा देखा है और बहुत मज़ा आता था। जिस तरह की सस्पेंस स्टोरीज हुआ करती थी, जिस तरह से एक्शन होते थे, एंड उसमें जब सीन आता था कि दया और अभिजीत किसी की भी एक डेथ दिखा दी जाती थी और मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता था कि ऐसा नहीं हो सकता यार, इन दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी प्यारी है। उसको देखकर मुझे सीआईडी बनने का भूत चढ़ गया था। डॉक्टर सलूकी को देखकर मैंने फॉरेंसिक साइंस में अपना फॉर्म भी भर दिया था। वो अलग बात है कि कुछ बेसिक कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाई, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, अदरवाइज मैं अभी तक किसी ना किसी का पोस्टमार्टम कर रही होती बैठ के, क्योंकि मुझे डॉक्टर सलूकी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उनको देखते हुए और लगा था कि ये कुछ काम अलग है, कुछ हटकर है, मेरे घर में कोई नहीं करता, क्यों ना मैं ही कर लूँ। वो अलग बात है कि मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटे ना, तुम्हें कुछ और करना है, और शायद किस्मत को भी कुछ और मंजूर था। अदरवाइज सोचिए, अगर मैं फॉरेंसिक में होती तो यहाँ आपके साथ बकवास कौन करता फिलहाल। और अब बता देते हैं कि ये सीआईडी के पास कौन सा रिकॉर्ड है, जिसको आपने अभी तक देखते देखते बचपन गुजार दिया, उसी के पास दुनिया का सबसे लंबा रिकॉर्ड है कि एक बार में उन्होंने 111 मिनट की रिकॉर्डिंग की है। जी हाँ, सिंगल टेक शॉट बोलते हैं इसको। बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, टॉलीवुड में, जॉलीवुड में, हर एक तरह की आप फिल्में देख लीजिए, हर एक फिल्म को बनाने के लिए, हर एक सीरियल को बनाने के लिए उसमें मल्टीपल कट्स लिए जाते हैं, मल्टीपल शॉट्स लिए जाते हैं, और आपको भी पता है कि किस तरह से कैमरा घूमता है। इवन अगर आप 5 मिनट की रील बनाने जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं आप जाकर सोचते हैं कि कितनी दफ़ा कट लेना है, जे कट लेना है, लोअर कट लेना है, अपर कट लेना है, साइड कट लेना है, कौन कौन से कट लेने हैं, आप ये सोचा करते हैं, कौन कौन सा एंगल शूट करना है, क्या लोअर है, OTH है, शोल्डर कट है, आई पर है, POV शॉट है, ना जाने कितनी ही चीज़ों को हम जानते हैं, कितनी चीज़ों को हम सीखते हैं ताकि एक ज़बरदस्त रील तैयार कर सके, जो कि मुश्किल से 1.5 सेकंड की होती है, 1.5 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड की हमारी एक रील तैयार होती है। उस रील को बनाने के लिए 50 तरह के कट, 150 तरह के ट्रांजिशन जाते हैं, और तब हम सोचते हैं जाकर कि नाउ इट्स पिक्चर परफेक्ट। इसको सोशल मीडिया पे डालने के बाद अगर ये वायरल नहीं हुआ तो सर पे हाथ रख के बैठ जाते कि ओई माँ, कुछ तो गड़बड़ किया है हमने दया। और वहीं पर सीआईडी जैसा एक बड़ा और बहुत फेमस सीरियल लगातार 111 मिनट के लिए विदाउट कट शूट होता जा रहा था। 22 लोग थे और पूरी 6 दिन की प्रिपरेशन थी, यानी कि लगातार 6 दिन तक इसकी प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से सिंगल शॉट में पूरा का पूरा एक एपिसोड लिया जाएगा, 111 मिनट कवर किए जाएंगे। अब सोचिए कितनी बार एक्टर्स अपने डायलॉग्स भूलते हैं, कितनी बार वो रिएक्शन भूलते हैं, कितनी बार ये भूल जाते हैं कि मुझे किसके साथ क्या देखकर बात करनी है। वहीं पर ये 22 लोगों को अपने अपने डायलॉग ऑन द पॉइंट याद होना बहुत ज़रूरी था। अगर एक भी इंसान कागा की भी करता तो दोबारा से रीटेक लेना पड़ता। बट उस वक्त लगातार 6 दिन की प्लानिंग और 22 लोगों के साथ 111 मिनट का शूट ख़त्म करने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके इन्होंने बुक्स में अपना नाम दर्ज कर लिया है। चलिए अब आप बताइए कि आपका फेवरेट सीआईडी एपिसोड कौन सा है और वन ऑफ योर फेवरेट सीआईडी कैरेक्टर कौन है, एसीपी प्रद्युमन, दया या फिर मेरी तरह डॉक्टर सालुके। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान असली गुड मॉर्निंग कोंडा मेरे साथ, यानी कि अपनी आशीर्वादी के साथ। और ऑफ कोर्स वैसे तो डिमांडेड प्रोग्राम नहीं है, लेकिन क्योंकि राखी आ रही है और हमारे भाइयों के दिलों में थोड़ा सा हलचल मच चुकी है, तो ऑल राइट, आप लोगों के लिए आपके पसंद के 2 गाने जरूर से प्ले करते हैं। फिलहाल स्टे ट्यून्ड।

0: प्रिय तुम किसन हो मैं हूँ राधा।
1: अरे लिसनर आपसे मेरा है एक सवाल।
2: गाने का असर सीधे मेरे गले पे हो जाता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोडा विद राजू रति और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली गोडा शहर की धड़कन। और सवाल ये है कि एक बात है जो मुझे आपसे पूछनी है, कहनी है, समझनी है और जाननी भी है। डांस करने के लिए दो पैरों का होना जरूरी है क्या? बताइए, अगर आपको डांस करना है या आप नृत्य करना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, तो आपके हाथ पैरों का सही सलामत होना तो जरूरी होता है, राइट? अदरवाइज आप अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे, एक्सप्रेशंस नहीं दिखा पाएंगे, आप डांस कभी नहीं कर पाएंगे। एक फिल्म आई थी, नाम था ABCD, एनीबॉडी कैन डांस। सुना है कभी आपने? जी हाँ। और इस फिल्म का जो ये टाइटल है ना, इसको सच करने का क्रेडिट जाता है एक ऐसी लड़की के पास जिसका जन्म एक पैर के साथ हुआ था। एक पैर का मतलब नॉर्मल इंसानों के दो पांव होते हैं, दो पैर होते हैं, लेकिन जब उसका जन्म हुआ तो सिर्फ उसका एक पैर था, दूसरा पैर उसका कभी था ही नहीं। उस लड़की को सबने कहा कि तुम तो डिसेबल हो, यानी कि तुम्हारे अंदर तो कोई खूबी है ही नहीं, तुम तो नॉर्मल हो ही नहीं, तुम तो हम लोगों से बहुत अलग हो, तुम तो कुछ कर पाओगे नहीं। बट उसने कहा ऐसा नहीं। और जहां एक डिसेबल इंसान ये सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी तो अब खत्म है, तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, वहीं पर इस लड़की ने अपनी आज़ादी की तलाश की। और उसकी आज़ादी पता है कहाँ जाकर मिली? उसकी आज़ादी उसे मिली है डांस में, यानी कि नाचने पर। एक इंसान जिसको कहा जाता है कि अगर आपके दो पैर नहीं हुए तो आप डांस कभी कर नहीं सकते हो, वहीं पर एक ऐसी लड़की जो जन्म के साथ डिसेबल थी, स्पेशल थी, लोगों से अलग थी, जिसके पास दो पैर नहीं थे, तो शायद बैठकर उसके माँ बाप और वो अपनी किस्मत के लिए रो सकता था कि क्यों किया खुदा ने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया भगवान ने मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने कौन से कर्म खराब किए थे। या फिर ये भी सवाल उठ सकता था कि हो सकता है मेरे पिछले जन्मों का कोई कर्म रहा हो। अक्सर हम यही कहकर टाल देते हैं चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को बदल देते हैं ये सोचकर कि

क्या कर सकते हैं, अभी जैसा है वैसा ही है, अब मैं क्या ही करूं, मेरे हाथ में कुछ है तो नहीं। वहीं पर इस लड़की ने इस सारी बातों को साइड डाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी चुनी और आजादी उसे मिली जा करके नृत्य में, डांस में। एक पैर पर दिन रात उसने सिर्फ और सिर्फ डांस किया अपने फुल एक्सप्रेशंस के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत वो अपनी डांस में लगा सकती थी, जिस शिद्दत के साथ वो डांस कर सकती थी, उस लड़की ने डांस करना शुरू किया। बहुत बार जमीन पर गिरी, बहुत बार फर्श को उसने छुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अपनी हिम्मत से कभी हार नहीं मानता उसको कोई हरा भी नहीं सकता। ज़मीन पर गिरने के बाद, बार बार ठोकर खाने के बाद, न जाने कितनी बार बैलेंस बिगड़ने के बाद, जहाँ एक आम इंसान को 2 से 3 साल लग जाते हैं चलना सीखने में, वहीं इसको काफ़ी वक्त लगा था सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना सीखने के लिए। हज़ारों बार गिरने के बाद, घंटों की प्रैक्टिस, और तब जाकर न जाने कितने लोगों के डाउट से लड़के, कितने लोगों की बातों से झगड़ के कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे तो नहीं होगा, इस ताने को थोड़ा सा साइड करके उसने डांस में गोल्ड मेडल जीता।

जो शायद एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं छोड़ पाता, जो हमें लगते हैं कि जिनके दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों पांव हैं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, वो इंसान शायद अपनी पहचान इतिहास के पन्नों में नहीं बना पाता। वहीं पर ऐसे लोग जिनके पास कुछ ना कुछ तो खुदा ने कम दिया है, लेकिन हुनर इतना बखूबी दिया है, इतनी हिम्मत दी है कि वो उन सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाते हुए, पीछे छोड़ते हुए अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। इस लड़की का अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो चलिए बता देती हूँ, नाम है सोनाली। बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही प्यारा किरदार है, बहुत ही प्यारी लड़की, और ऑफ कोर्स उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है उसका जज्बा, उसकी हिम्मत। आप बचपन से ताने सुनते आते होगे, अगर आप पढ़ाई में भी वीक हो तो न जाने कितनी बार आपको ताने मिलते होंगे ये कह करके कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तेदार, घर वाले, टीचर्स, क्लासरूम में दोस्त, हर कोई यही कहता है वो उस बच्चे से जो ज़्यादा नंबर नहीं ला पाता कि यार तुमसे तो नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, तुम पढ़ाई के लिए हो ही नहीं, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में है ही नहीं, ऐसे ही इनको भी कहा जाता था। अब आपने सोचा होगा कि शायद इस लड़की ने दूसरा पाँव लगवाया होगा, ऑपरेशन से सर्जरी करवाई होगी या प्लास्टिक की मदद ली होगी, बट हम आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने कभी दूसरे पाँव की जिक्र तक नहीं किया, ये नाचती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एक पाँव पर, एक सिंगल लेग पर। जी हाँ, डांस कोई भी कर सकता है, और इसीलिए शायद वो जो फिल्म है जिसमें लिखा है कि एनीबॉडी कैन डांस, ये बात सच है। आइए लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आप बताइए आपके POVs, आपके थॉट, और हम मिलते हैं अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट में बहुत सारी इंस्पायरिंग कहानियां लेकर के। तो बने रहिए क्योंकि ये कहानियां आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए ज़रूर मजबूर भी करती हैं और बहुत इंस्पायर्ड भी करती हैं। जब आप इनकी कहानियां जानते हो तो आपको समझ में आता है कि जो आपकी सिचुएशन इस वक्त में है वो कुछ नहीं है अगर आप चाह लो तो। बने रहिए, सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: समझ हैं। हाँ
1: बढ़िया।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: हाँ जी भैया, तो इससे पहले कि हम अपनी अगली इंस्पायरिंग स्टोरी आपके सामने रखें, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस बात का जवाब दें मुझे कि आपको पता है भारत की पहली महिला लाइनमैन कौन है। चलिए दोबारा सवाल को सुन लीजिए ताकि आप जरा भी परेशान ना हो ये सोचने में कि हमने किसकी बात की। क्या आपको पता है भारत की पहली महिला लाइनमैन कौन है? अगर पता है तो चैट बॉक्स में बताइए और इस गाने को एंजॉय कीजिए। अगली इंस्पायरिंग स्टोरी बस कुछ ही पलों में मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मुझे भी तो पता चले कि हम कितनों के बारे में जानते हैं। सुनते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

चलिए आपकी मुलाकात करा देते हैं भारत की पहली महिला लाइनमैन से। अक्सर जब बिजली के काम याद आते हैं तो हमें याद आता है सिर्फ एक नाम, है कि नहीं, सिर्फ लड़कों के नाम। और हमें लगता है कि यार लाइट को ठीक करने का स्पेशली जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के कंधों पर है, ये जिम्मेदारी तो सिर्फ उनकी ही है। और जैसे ही लाइट जाती है हम तुरंत शुरू हो जाते हैं उन लोगों को कॉल करने के लिए कि भैया हमारे घर की लाइट चली गई है, हमारे मोहल्ले की लाइट चली गई है, आप कब आ रहे हैं, कब तक ठीक हो रही है, दो घंटे से नहीं आई है, भले ही आधे घंटे पहले ही गई हो लेकिन दो ही घंटे से नहीं आई है। परेशान कर देते हैं उस लाइन मैन को भी और ये ज़िंदगी को भी जोखिम में डाल देता है। कई बार जो लाइन मैन काम करने जाता है बारिश की वजह से, तार की वजह से, कई बार उन्हें करंट भी लग जाता है। बट इसकी फिक्र हम क्यों करें, हम तो इसकी फिक्र करेंगे कि दो घंटे से हमारे घर में लाइट ना ही आई है, कब तक आएंगे आप बताइए, कब ठीक करेंगे हमारी लाइन। फिलहाल इन सब के बीच में एक ऐसी भी महिला सामने निकल कर आती हैं जो कहती हैं कि काम चाहे कोई भी हो, काम में कभी जेंडर नहीं होता, कोई भी काम लड़का या लड़की देख कर नहीं होता। अगर लड़के खाना बना सकते हैं तो लड़कियां लाइनमैन भी बन सकती हैं, अगर लड़के पूरी की पूरी भंडारा संभाल सकते हैं तो क्यों ना हम भी थोड़े बहुत तारों को संभाल लें। फिलहाल आपको इनकी कहानी सुनाने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग ओना में। मैं हूँ आपकी अपनी आर्ष उन्नति और ये है रेडियो कैन 89.6 FM।

ये कहानी है तेलंगाना के सिद्धिपीठ जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन से मानना था कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको महिलाएं नहीं कर सकती और काम कभी भी जेंडर वाइज नहीं होता। ऐसा काम कोई है ही नहीं जो ये कहता हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़के करेंगे या मुझे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करेंगी। ये चीजें तो हमने आपस में बांट रखी और हमें लगता है कि किचन सिर्फ और सिर्फ लड़के यहाँ संभाल सकती हैं, बाहर के काम सिर्फ और सिर्फ लड़के देख सकते हैं, बट ऐसा उसका कभी भी मानना नहीं था। और इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना बिजली विभाग में काम किया जाए और उसमें अपना करियर बनाया जाए। ये फैसला उनके लिए बहुत बड़ा था। अब क्योंकि बिजली विभाग में लड़की का होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और बहुत अटपटी सी बात है, कुछ ऐसी बातें जो कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती किसी और को, ये वो वाली बात है। अपने सपने के बारे में जिक्र करना और ये कहना कि मुझे अपने घर से हटकर या फिर थोड़ा सा अलग हटकर सोचना है या कुछ करना है, तो सवाल तो लाजमी उठते हैं। और आपको समझाया जाता है कि देखो बिटिया रानी, ये सब काम नहीं करते क्योंकि ये करोगे तो ये नुकसान करेगा। कभी लड़कों को देखा है किचन संभालते या कभी लड़कियों को देखा है खंभों पे चढ़ते? कभी देखा है लड़कों को गुलाबी शर्ट पहनते या कभी देखा है आपने कि लड़कियां कार चला रही हो, कार से खेल रही हो? ये सारे सवाल बहुत लाजमी हो जाते हैं जब भी आप कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। और ये सवाल ऑफ कोर्स उनसे भी कई दफा कहा गया था, कई दफा उन्हें समझाया गया, बट क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ठाना हुआ था कि काम का कोई जेंडर नहीं होता, तो उन्होंने सोच भी लिया था कि अब मुझे बिजली विभाग के अंदर जाकर के ही अपना करियर सेट करना है। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेड में ITI की पढ़ाई पूरी की। साल 2020 में तेलंगाना के दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में उन्होंने जूनियर लाइनमैन के पदों के लिए जब भर्ती निकली तो उसमें अपना नाम डालने के लिए सोच लिया। वो लाइनमैन के लिए एकदम योग्य थी। जो जो चीज़ें डिमांड होती हैं, जो जो चीज़ें मांगी जाती हैं एक लाइनमैन बनने के लिए, उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी चीज़ें थी, हर एक पैमाना उनके लिए बराबर था। उनकी योग्यता उस पद के लिए एकदम सटीक बैठ रही थी और इसीलिए वो देश की सेवा करना चाहती थी। अब देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त आप बॉर्डर पे ही खड़े हो, कभी कभार अपने देश के अंदर कचरा ना फैलाना भी देश की एक सेवा ही होती है। अगर आप रास्ते पे चलते हुए डस्टबिन रखे जो रखे रहते हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, सड़क के कॉर्नर में कूड़ा नहीं फेंकते हैं, तो ये भी एक तरीके से आप अपने देश की सेवा ही करते हैं। बट जब भी बात आती है देश की सेवा करने की, तो लोगों को लगता है कि जो बॉर्डर पे जा रहे हैं, जो लड़ाई दंगे फसाद ले रहे हैं, बस वही हैं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वरना हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। बट ऐसा नहीं है। इवन अगर आप ट्रैफिक रूल्स भी नहीं तोड़ते हो, पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि भैया हेलमेट लगा लो और आप लगा कर चलते हो, आपसे कहा जाता है कि ट्रिपल राइडिंग मत करो तो आप नहीं करते हो, उन रूल्स को भी फॉलो करते हो, तो भी आप अपने देश की सेवा कर रहे हो ऑफ कोर्स। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी इस योग्यता को साबित करते हुए मैं देश की सेवा करूं लाइनमैन बनकर। लेकिन उनका सबसे बड़ी जो चैलेंज उनके सामने आ रहा था वो एग्ज़ाम नहीं था, बल्कि समाज के बहुत पुराने नियम और कानूनी अड़चने थी। उस समय नियमों के मुताबिक बिजली के खंभों पर चढ़ने वाले इस कठिन काम के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही बने हैं। लोगों का मानना था कि लड़कों के अलावा कोई और ये काम कर ही नहीं सकता। भाई क्यों, लड़कों की जान इतनी कीमती नहीं होती क्या? होती है, ऑफकोर्स होती है, बट क्योंकि लाइन्स हैं, वायर्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात है जो लोगों के अंदर डाउट आ जाता है कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ लड़के कर सकते हैं। इन्होंने इस फॉर्म के लिए आवेदन भर दिया, लेकिन जैसे ही ये बात इन्हें पता चली तो लोगों ने कानून लगाना शुरू कर दिया और इनको अनुमति ही नहीं दी, परमिशन ही नहीं दी। और कमाल की बात यह है कि आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए, अपनी जिंदगी में खुश होने के लिए दूसरों की अनुमति की जरूरत होती है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा, अगर आप अपना पसंदीदा कपड़ा भी पहनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं पहन सकती हूँ, क्या मैं ये पहन सकता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे नियम हैं जो रोक लगा देते हैं, जो ये कहते हैं कि मेकअप सिर्फ लड़कियों का होता है, पिंक कलर सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का इनसे कोई लेना देना नहीं। और अगर कोई लड़का आपको कभी मेकअप में दिख जाए
या उसने कभी अपने इयररिंग्स पहने हो तो उसको एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा क्यों है? ये सवाल मेरा हमेशा से रहता है कि हम अपनी खुशियों के लिए परमिशन दूसरों से क्यों मांगते हैं। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, इन्हें भी आवेदन करने के लिए अनुमति ही नहीं मिली। इन सारे भेदभावों के सामने इसके बाद भी इन्होंने घुटने नहीं टेके, अपने अधिकारों के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए ये पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया, उन्होंने अदालत में दलील दी कि अगर महिलाएं अंतरिक्ष में जा सकती हैं तो वो बिजली के खंभों पर क्यों नहीं चढ़ सकती। उनके इस हौसले और मजबूत इरादे को देखकर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया कि आप इस भर्ती में शामिल हो सकती हैं, और अगर आप में ये हुनर है कि आप एक लाइनमैन बन सकती हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अदालत की अनुमति मिलने के बाद उनकी असल परीक्षा शुरू होती है। लाइनमैन बनने के लिए उन्हें पोल क्लाइंबिंग टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि खंभों पे चढ़ने का टेस्ट देना पड़ता है कि आप क्लाइंब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये जो सीधे खंभे खड़े हुए हैं, पोल्स खड़े हैं, क्या आप इस पे क्लाइंब कर पाओगे? तो पोल क्लाइंबिंग टेस्ट देने के बाद उन्होंने इसको भी पास कर लिया था, और वहीं से इनका पहला, भारत की पहली महिला लाइनमैन बनने का सफर शुरू हो चुका था। लोगों का भरोसा शुरुआत में बहुत कम था, ये कह करके कि एक महिला क्या ही लाइन ठीक करेगी, महिला हमारे घर की बिजली क्या ही ठीक करेगी। इन सारे भेदभाव, इन सारी चुनौतियों से लड़ते हुए उन्होंने अपना नाम दर्ज किया भारत की पहली महिला लाइनमैन के नाम से। और अगर आप उनका नाम जानना चाहते हैं तो चलिए बता देती हूँ, तेलंगाना के सिद्धिपीठ जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, नाम बबूरी शीर्षा। ये एक ऐसा नाम है जो आपको ये याद जरूर दिलाएगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपने कभी ना की हो, आपने क्या, किसी ने भी ना की हो, बट वो आपकी बाउंड्री सेट नहीं कर सकती, ऑब्स्टिकल्स आपके सपनों के बीच में नहीं बन सकती। अगर आपको आपके सपनों की उड़ान के लिए कोई बीच में रोकता है तो लड़ जाइए। बहस करना तो बनती है, जब तक कोई सही तर्क ना दे पाए, जब तक आप के अंदर हिम्मत है और आपको लगता है कि आपका सपना सही है, तब तक बहस करना तो बनती है। फिलहाल ये तो एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आप बताइए आपको पता था इनका नाम, कि हमारी भारत की पहली महिला लाइनमैन बनने के लिए किसी ने कितनी मेहनत और कितनी लड़ाई लड़ी है, और उनका नाम बबूरी शीर्षा है। अगर पता है तो चैट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं पता है तो जानकर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो एक बार वापस से वेलकम करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और ये चल रहा है हमारा इंस्पायरिंग सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको बहुत मोटिवेट प्लस बहुत इंस्पायर्ड करती है। अभी तक हमने बात की थी भारत की पहली महिला लाइनमैन की, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेडिशन की जिसमें ऑफ कोर्स भालुओं को बहुत तकलीफ पहुंचा करती थी। हमारे भारत में सालों तक कलंदर जाति के लोगों ने भालुओं को रोड पर लाकर कई दफा नचाया था। आपको भी पता होगा, लोग कहते थे भालू नाचता है। इवन हिंदी की बुक में आपको पोयम भी मिलती होगी नाचते भालू की। आपने तस्वीर देखी होगी भालू को नाचते हुए, शायद आपने इस चीज को सामने से भी देखा हो अगर आप उस वक्त में थे जब भालू डांस किया करते थे, या ये मानना था हमारा कि भालू डांस किया करते थे। तो हो सकता है आपने तस्वीर अपनी आंखों से भी देखी हो और आपको लगता हो कि अरे वाह, भालू भी नाच सकता है, क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। बट असल में इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक कहानी थी जिसको दो लोगों ने मिलकर हमेशा के लिए खत्म कर दी। बात है उस वक्त की जब कलंदर जाति भालुओं को जंगल से पकड़ने का काम करती थी। भालू के छोटे छोटे बच्चों को जंगल से उठा लिया जाता था, और जो माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए भागती थी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकती, तो उसको वहीं पर हमेशा के लिए जान से मार कर फेंक दिया जाता था, बच्चों को उठाकर ले आया जाया करता था। इसके बाद शुरू होता था वो सबसे क्रूर चीज जिसके बाद आपको लगता था कि भालू नाचता है। बिना बेहोश किए गर्म सलाखों के साथ, गर्म सुइयों के साथ उसके नाक के अंदर छेद किया जाता था, और उसी दर्द में तड़पते हुए भालू के नाक के अंदर रस्सी बांधी जाती थी, और वो रस्सी उस इंसान के हाथ में होती थी जो ये दावा करता था कि भालू भी नाचते हैं। फिर वही भालू के बच्चे उठा करके सड़कों पर लाए जाते थे, और भालू कभी नाचता नहीं था। भालू की उस रस्सी को खींचा जाता था और उस रस्सी से भालू के अंदर बहुत तेज दर्द उठता था। उस दर्द से बचने के लिए वो अपने दो टांगों पर खड़ा होकर उछलने लग जाता था, ताकि रस्सी से उसकी नाक पर लगा वो जो छेद है जिसको तकलीफ दे रहा है वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए। और इंसानों को हमेशा लगता रहा कि भालू नाचता है, पर भालू कभी नहीं नाचा। भालू दर्द में तड़प रहा था और वो बस यही गुहार लगा रहा था कि रस्सी ढीली कर दो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं, सांस ले सकूं। उसे कोई शौक नहीं था उछलने का, इंसानों के लिए नाचने का, पैसे कमाने का। वो बस अपनी दर्द से बचने के लिए खड़े होकर उछल रहा था, और लोगों को लगा कि भालू तो नाचता है। लोगों ने अपने बच्चों को दिखाना शुरू किया कि वो देखो भालू नाच रहा है, वो देखो भालू नाच रहा है। किसी ने इस चीज पर गौर ही नहीं किया कि ये भालू नाच नहीं रहा, इसको तकलीफ हो रही है, ये इस दर्द से तड़प रहा है। और उसी दौरान दो ऐसे लोग सामने आते हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ SOS की स्थापना रखी। हम आपको बता दें, भारत की सबसे बड़े वन जीव संरक्षण संगठनों में से एक वाइल्ड लाइफ SOS के को फाउंडर्स, जिनका नाम था कार्तिक सत्यनारायण और गीता शेषमणि, ये सामने आती है। गीता शेषमणि जो कि बेजुबान जानवरों को सहारा देती थी, और कार्तिक सत्यनारायण जो कि जंगली जानवरों को बचाने का काम करते थे, वो लोगों को मारने नहीं देते थे। जब इन दोनों ने मिलकर देखा कि सड़कों पर तकलीफ को डांस बताया जा रहा है तो कितना बुरा लगता है। वो समझते थे कि ये जानवर बोल नहीं सकते और इन्हें मदद चाहिए, इसीलिए दोनों ने ये तय किया कि ये साथ में आएंगे और काम करेंगे। धीरे धीरे कर ये उन जातियों के पास जाने लगे जो भालू को नचाने का काम करते थे। जब उनके पास गए तो उनकी बातों से पता चला कि कलंदर जाति इनको नचाना नहीं चाहती, बट क्या करें, उनके पास कोई और रोजगार है भी नहीं। अगर वो भालुओं के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी, उनके खुद के बच्चे मारे जाएंगे। उस दौरान इन्होंने उन लोगों से वादा किया कि अगर तुम इन भालुओं को छोड़ देते हो तो हम तुम्हें नया रोजगार जरूर देंगे, प्लस तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे। शुरुआत में तो किसी ने भी इनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने इनकी बात मानना शुरू की। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और ऐसे कर करके संख्या बढ़ती गई और ये संख्या बढ़कर सीधे 3000 परिवारों तक पहुंची। कलंदर समुदाय के 3000 परिवारों ने भालुओं को रिहा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें रोजगार देने को तैयार हो, हमारी रोजी रोटी बचाने के लिए तैयार हो, तो हमें इन भालुओं को तकलीफ देने में, इन भालुओं को दर्द देने में कोई शौक नहीं है। 3000 परिवारों ने इन भालुओं को वापस में जंगल छोड़ने के लिए माना, अपना सर हिलाया और हां भर दी। इसके बाद क्या था, 600 से अधिक भालुओं को मुक्त कर दिया गया। उनके नाक पे पड़ी वो रस्सी निकाल दी गई, उस तकलीफ से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया और उन 3000 परिवारों को छोटी छोटी दुकानें खुलवाई गई, किसी के लिए सिलाई, किसी के लिए खेती, तो किसी के लिए पंचर, किसी के लिए बहुत सारी चीजें। इन 3000 परिवारों को रोजगार दिया गया और उनके बच्चों को स्कूल भेजा जाने लगा। हम आपको बता दें, इन दो लोगों ने मिलकर लगभग 17000 बच्चों की पढ़ाई करवाई, 17000 बच्चों को स्कूल भेजा, 3000 परिवारों को रोजगार दिया और 600 भालुओं की जान बचाई। आखिरी भालू जब उसका मालिक राजू खुद आया था उसको पकड़कर और उसकी रस्सी उन्होंने कार्तिक और गीता के हाथों में दे दी, ये कह करके कि मुझे नहीं नचाना इसे, आप इसे छोड़ दो, और उन्होंने खुद उस भालू को आजाद किया था। जो भालू कभी लोगों के लिए सड़कों पर नाच रहे थे, या कहूं मैं कि दर्द में तड़प रहे थे, वही भालू अब अपने हैबिटेट में वापस जा चुके थे, यानी अपने उस जंगल में वापस जा चुके थे जहां से वो पकड़े गए थे जबरदस्ती, जहां से उनकी माओं को मार दिया गया था। और अब वही 600 भालू खुली हवा में सांस लेते हैं, किसी के लिए नाचते नहीं है, दर्द में तड़पते नहीं है, जो दिल आता है करते हैं, खुले घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं और खुले धूप के नीचे आराम भी करते हैं। तो ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की, या फिर कहें दो ऐसे लोगों की, जिन्होंने सोचा कि क्यों ना इन बेजुबान जानवरों के साथ थोड़ा सा दया दिखाते हैं और उनकी जिंदगी बेहतर बनाते हैं। हमारा अक्सर सवाल होता है कि यार मैं अकेले क्या ही कर सकता हूँ, अकेले तो कुछ भी नहीं होगा, एक इंसान से थोड़ी कुछ होता है, दो इंसान से भी कुछ नहीं होता। बट वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संख्या में बहुत कम है, एक से दो हैं, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है, कितने लोगों की जानें बचाई हैं, कितने लोगों की रोजी रोटी बचाई है और कितनों को स्कूल भेजा है। अब आप बताइए आप क्या मानते हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए आप अपने फीडबैक में जरूर से बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का शो आपको कैसा लगा, और सबसे हार्ट टचिंग स्टोरी अगर आपको किसी की लगी है तो वो कौन सी थी। चैट बॉक्स में जरूर से अपना फीडबैक दीजिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, यानी कि छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, आपके चैट बॉक्स को पढ़ने के लिए, आपके मैसेजेस को पढ़ने के लिए। तो बने रहिए और अपने फीडबैक जरूर से भेजिए। स्टे ट्यून्ड।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Arjun Khan.
1: अभी तक आपने कितनी बार क्रिकेट के बारे में सुना होगा?

और इसी के साथ आइए चलते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजोन्नति, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। तो हमने जो आखिरी मैसेज पढ़ा था वो हमारे नागेश्वर धाकड़ जी का ही था, जिसमें उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा था। और इसके बाद उन्होंने लिखा है कि बच्चों की पहली पसंद काजू कतली मिठाई, ऑल राइट। एंड इसके बाद लिखा है हमें तो पता ही नहीं था कि मॉर्निंग में आप ड्यूटी देने लगी हैं। वैसे हमको भी नहीं पता था, वो तो तब पता चला जा करके जब मुझे मॉर्निंग शो का चस्का लग चुका है। और इसके बाद बहुत सारे इमोजीज हैं नागेश्वर धाकड़ जी की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आशुनति, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड नागेश्वर जी ने लिखा है इंडियन घर मजबूत नहीं बना रहे, सिर्फ बाहरी दिखावटी और सजावट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये करने से घर में इतना ठंडा नहीं रहता, जल्दी खोखला हो जाता है। हर घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए तो घर ठंडा रहेगा। जी हाँ, बेशक सही कहा आपने। आजकल जो हम अपने घरों का डिज़ाइन दे रहे हैं वो हमारे रीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अकॉर्डिंग है पिक्चर परफेक्ट के, जिसकी फ़ोटोज़ हम इंस्टाग्राम पे डाल सकें, जिसकी फ़ोटोज़ हम सोशल मीडिया पे डालकर लोगों से वाहवाही जीत सकें। बट घर का मतलब होता है, असल मतलब होता है वो घर जिसके अंदर आप सुरक्षित

नारियल के पत्तों और खपरेल से घर बनाया जाता है, बहुत ठंडा रहता है गर्मियों में। जी हाँ, केरल के जो घर होते हैं वो असल में ठंडे रहते हैं और उनको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से ही होता है, और स्पेशली उन्हें इस ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि गर्मी और बारिश के वक्त उमस ना हो। इसके बाद हमारे साथ सुजीत जी जुड़े थे जो लिख रहे थे, उन्नति जी आप कितना

0: रहे हैं आशुति मैम का मैं दीवाना हूँ और आकांक्षा मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपका ये मैसेज आई थिंक आई होप मैं आकांक्षा मैम तक पहुँचा पाऊँ. एंड इसके बाद लिखा है, मैं तो अभी भी देखता हूँ CID, मुझे तो बंद कमरे में खून, बैंक में लूटपाट, ऐसे एपिसोड बहुत अच्छे लगते हैं CID के. और ये लाइन लिखी है हमारे नागेश्वर धाकड़ जी ने, हालांकि मौका मिलता है तो हम भी आजकल देख ही लेते हैं CID, इसको कौन ही छोड़ता है. सस्पेंस वाली स्टोरीज बहुत बढ़िया होती हैं, स्पेशली आपको भी पता होगा जो नॉस्टैल्जिया फील होता है CID को देखने के बाद वो कितना कमाल का है. एंड क्यों हमने ये बात की थी ये भी आपको आई थिंक पता होगा. एंड इसके बाद मिस्टर ऑप्टिकल हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गुंडा एम डॉट डॉट डॉट ए डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट एम, यानी कि मैम बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू. कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गुंडा में. थैंक यू सो मच लिखा है नागेश्वर धाकड़ जी ने. थैंक्स लिखा है हमारे सुजीत जी ने भी और कहा था भैया उन्हें उम्मीद थी कि किशोर कुमार का गाना बजेगा लेकिन नहीं बजा. भैया आपने हमको सिंगर का नाम नहीं बताया था तो जो बेहतर लगा हमने आपके लिए प्ले किया. एंड इसके बाद है सुजीत जी का मैसेज कि फिल्म अभिनेत्री सुधा ने ये बहुत पहले ही कर दिखाया है, उसकी स्टोरी पढ़ लेना बहुत ही अच्छे, बहुत ही कमाल की डांसर हैं वो भी और उनके बारे में तो हर कोई जानता है लेकिन मैं सोनाली का नाम इसमें जिनका नाम शायद आप तक नहीं पहुंच पाता, जो अपनी जिंदगी के हीरो तो होते हैं बट उनका नाम हम अक्सर नहीं सुनते. तो ऐसे लोगों की कहानियां मैं आपके लिए इंस्पायरिंग सेगमेंट में लेकर आती हूं. एंड इसके बाद है नहीं पता है तो कहिए गूगल करके बता दे. जी नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि हमारी भारत की पहली महिला लाइनमैन कौन है जिनका नाम मैंने आज आपको बताया. आई होप आपको याद रहेगा. इसके बाद मिश्रा जी लिख रहे हैं कि कहानी अच्छी थी, भालू वाली अच्छी लगी. बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा. फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का. तो फिर मुलाकात होगी आज शाम यानी कि 3 से 4 आपके अपने कॉलर ट्यून गोना में, सुनना मत भूलिएगा. फिलहाल के लिए आपका अगला कार्यक्रम है गांव की गूंज, आपकी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए. आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन. अभी तक आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेडियो चौकी. फिलहाल अब चाहूंगी आपसे इजाजत. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: हम स्टूडियो आ रहे थे, तब हमने देखा ननकू भैया ने घर के सामने चेन से एक बाल्टी बांधी है, उसमें जानवरों के लिए पानी भरकर रखा है।
6: हमने मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी तो रखा है, पर सड़क के किनारे जानवरों के लिए तो सोचा ही नहीं कि ऐसा कर सकते हैं। पर उनको गर्मी में परेशान देखकर दुखी तो होते थे, आज हम भी ऐसा करेंगे।
7: अरे देखो तो, ग्रुप में डायरेक्टर सर का कितना अच्छा वीडियो आया है। वो अपने गाँव में हैंडपंप से पानी भर रहे हैं और कितने सारे लंगूर पानी पी रहे हैं। इनको तो डर भी नहीं लग रहा है। कैसे लाइन से एक एक लंगूर आ रहे हैं और पानी पीते जा रहे हैं। कितने प्यासे हैं ये लंगूर।
8: श्वेता का फोन आया था, वो अपनी फ्रेंड के गांव बरहा पारा गई हैं और बोल रही थी कि वहाँ उतनी गर्मी नहीं हो रही जितनी हमारे यहाँ शहर में होती है, और कह रही थी कि अगर गाँव की गूंज की टीम आ जाए तो गाँव के लोग अपने जानवरों को लेकर बहुत परेशान है कि गर्मी से कैसे बचे।
5: चलो हम सबको चलना चाहिए। गोदली में जो पशु विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने हम लोगों को कितनी बातें बताई, वह हम लोग गांव वालों को बताते हैं।
6: अब की साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम लोग इतना परेशान हैं, तो इन बेजुबान जानवरों को कितनी परेशानी हो रही होगी।
7: अरे कृष्ण कुमार भैया गाड़ी लेकर आ गए। हमने ढोलक और हारमोनियम तो रख लिया है, क्योंकि बिना लोकगीत के तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला।
6: सही कहा सिम्मी, पर आज तुम लोगों को भी गाना पड़ेगा।

बरहा पारा गांव इटिया थोक में ही आता है और हमारे ड्राइवर साहब को सारे रास्ते पता है। अभी गांव आने में थोड़ा टाइम है किरण दीदी, तो एक एक गाना और हो जाए। देखिए मैं भी गा रहा था।

0: कृष्ण कुमार भैया उधर ले चलिए, देखिए श्वेता खड़ी है कुछ लोगों के साथ। श्वेता क्या कर रही हो?
1: थैंक यू सभी का कि आप लोग आ गए। ये एक छोटा सा तालाब था पर बिल्कुल सूख गया है, उसमें पानी भरा जा रहा है। बोरिंग यहाँ से बहुत दूर है पर सभी गांव के लोगों ने पाइप जोड़ जोड़ कर यहाँ तक पानी आखिर पहुँचा ही दिया। दोस्तों
2: देखो कितना कम पानी भरा है, पर कितनी भैंसे आ गई अभी से। जितने भी लोग हम लोगों का प्रोग्राम सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है, आपके गांव में कोई गड्ढा हो, तालाब हो, एक दूसरे के सहयोग से उसमें पानी अवश्य भरें।
3: जो पालतू जानवर हैं, उनको तो पानी मिलेगा, और जो जंगली जानवर हैं, जैसे कि सियार, नीलगाय, लोमड़ी, सड़क के कुत्ते, छुट्टे जानवरों को भी पानी मिलेगा। आप लोग कितना बड़ा पुण्य का काम करेंगे।
4: शहर से यहाँ के तापमान में करीब 2-3 डिग्री का तो अंतर जरूर है, शायद पेड़ के कारण यहाँ की हवा ठंडी है।
1: चलिए हेमा के घर, वहाँ सब लोग बैठे आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। किरण दीदी का तो सब बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सभी भाभियों को ननद वाले गाने जो सुनने हैं। गर्मी की छुट्टी है और ननद भाभी घर पे आई हैं, तो बस सभी के बीच मस्ती वाली नोक झोंक चल रही है।

0: किरण दी सबको कितना मजा आ रहा है लोक गीत सुनकर। लो झुमकी सबके लिए भुट्टे और लहसुन की चटनी ले आई है और साथ में सत्तू का घोल। काकी बोल रही है कि इससे लू भी नहीं लगती है।
1: इसमें टेस्ट मत ढूंढना, बस पी जाओ। सत्तू शरीर को बहुत ठंडा रखता है और गर्मी में ये तो बहुत उपयोगी होता है।
2: देखो सब कितना मुंह बना रहे हैं, पर कुछ चीजों में तो बड़े बूढ़ों की बात मान ही लेनी चाहिए। गर्मी में वही चीजें खानी चाहिए जो शरीर को ठंडक पहुंचाए, और तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, इसी बात का ध्यान अपने जानवरों के लिए भी रखना है। उनको समय समय पर पानी देते रहना है और उन्हें ठंडे स्थान पर बांध कर रखना है, और तो और डायरेक्ट खुली हवा से भी बचाना है।
4: पशु चिकित्सा जब ज्ञानस्थली रेडियो आए थे तब उन्होंने बताया था कि जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ पर पंखे कूलर की व्यवस्था हो और टाट के पर्दे से लगातार पानी से गीला करते रहें।
0: किरण दी सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग हम लोगों को जानवरों के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, पर किरण दीदी के लोकगीत भी सुनवाते रहिए।

0: ये मिट्टी की बनी झोपड़ी कितनी ठंडी है, पंखे की हवा भी यहाँ गर्म नहीं लग रही। नहीं तो हम अपने घर तो पंखा चलाते हैं तो इतनी गर्म हवा फेंकता है कि जिसका जवाब ही नहीं है।
1: सही कह रही हो श्वेता, और आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, जानवरों को हवादार जगह पर रात में बांधिए, दाना खाने में कम दीजिए और हरा चारा अधिक दीजिए, आहार में संतुलन के लिए एजोला घास का उपयोग कीजिए।
2: अपने जानवरों को दिन में 2 बार जरूर नहलाइए, खासकर भैंस को तो कोशिश कीजिए 2 से 3 बार नहलाने की।
3: एक बात का तो विशेष ध्यान रखिए कि जानवरों को अगर आपको चराने ले जाना है तो दोपहर के समय तो बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आपको चराने ले जाना है तो सुबह या शाम के समय ले जाइए, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो बीमार पड़ जाएंगे।
4: चिलचिलाती धूप में परेशानी सभी को होती है, पर किसानों के लिए ये परेशानी और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अपने साथ साथ अपने जानवरों को भी बीमार पड़ने से बचाना होता है।
2: गांव की गूंज की टीम की पूरी कोशिश है कि हम आपकी इसमें मदद कर सकें, और जो जानकारी हम लोगों के पास है वो आपको देते रहें और साथ ही में आप लोगों का मनोरंजन भी करते रहें।

0: अगर आप लोग के पास कई जानवर हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उन्हें आप दूर दूर बांधिएगा, जिससे उन्हें उठने बैठने की अच्छे से जगह मिल सके।
1: यहाँ तो देख रहे हैं कि ज्यादातर छप्पर के नीचे ही जानवर बांधे जाते हैं और नीचे जमीन भी कच्ची रहती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जमीन की साफ सफाई करते रहें या नहीं कि गोबर में ही जानवर हमेशा पड़े रहते हैं। स्थान को समय समय पर साफ करें और पानी से धोकर सूखा जरूर लें।
2: जो भी ऊपर टिन शेड लगवाते हैं उनकी ऊंचाई 12 फीट से भी ज्यादा हो। 45 डिग्री पर टिन शेड लगवाएं, जिससे सूर्य की गर्मी ज्यादा न हो,
0: पर रोशनदान भी हो ताकि सूरज की किरणें पड़ती रहें और कीटाणु मर जाएं।
3: अगर फर्श पक्की हो तो गर्मी में रबड़ की शीट डाल दें, नहीं तो फर्श बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है।
4: लोकगीत तो हम तभी सुनाएंगे जब आप लोग वादा करें कि अपने अपने जानवरों का टीकाकरण जरूर कराएंगी।
3: हम सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का नंबर लिखकर जा रहे हैं, उनसे जानकारी ले लें कि कौन से टीके लगाने हैं।

0: जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ पर साफ और ठंडा पानी भरकर जरूर रखें और समय समय पर बदलते भी रहें।
1: पशुओं को 100 किलोग्राम पर 5 लीटर पानी की जरूरत होती है। अपने अपने जानवरों के वजन को अंदाज लीजिए और उसी अनुसार पानी दीजिए। गर्मी में पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, नहीं तो दूध में कमी आ जाएगी
2: और क्वालिटी भी दूध की घट जाती है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोग आपको ज्ञान असली रेडियो का नंबर भी देते जाते हैं। कोई जरूरत होगी तो पशु चिकित्सक से आपकी हम बात करा देंगे।
3: गर्मी के मौसम में मनका, लोबिया, चरी और ज्वार को जरूर लगाइए, ताकि आपके जानवरों को हरा चारा मिल जाए। और हरे चारे में पानी होता है, जो पशुओं में पानी की कमी को पूरा करता है।
4: एक और जरूरी जानकारी देनी है, प्रत्येक पशु को 25 से 30 ग्राम नमक जरूर खिलाइए। ये बहुत जरूरी है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा।
0: गांव की गूंज की टीम आप सबके साथ हमेशा है। गांव हमारे देश की आत्मा है, और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होगी तो ना हमें अन्न मिलेगा और ना ही दूध दही, इसलिए खूब ध्यान रखिएगा अपना।
4: अच्छा, कोई भी जरूरत हो तो हमें जरूर याद करिएगा। जल्दी फिर कोई नई जानकारी के साथ गांव की गूंज की टीम फिर आपके बीच होगी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्च

0: शिक्षा सेवा आयोग प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9470931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
9: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
8: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
9: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
8: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
10: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
11: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
10: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
11: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
10: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

पल पल तुमसे दिले होके दीवाना, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी प्यारे सा सॉन्ग के साथ में हो गया है टाइम आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो का, जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो भाई आ चुके हैं हम और करने वाले हैं आगाज़, लेकिन उससे पहले कि आगाज़ हो और हम आपको बताएं कि हमारे पास क्या कुछ है आपसे बातें करने के लिए, उससे पहले वेलकम वेलकम वेलकम वॉर्म वेलकम, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने वाले शो में। जो भी हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो भी हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत बहुत वेलकम है, और जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं उनका भी। सो फटाफट से कहना चाहूँगी कि मैं तो आ गई हूँ, लेकिन लेकिन लेकिन आप सभी का आना भी है बाकी, तो फटाफट से आ जाइए, क्योंकि आज का ये दिन बहुत ही प्यारा सा दिन है। क्या खास है, क्यों प्यारा है, ये सब हम आपको बताएंगे और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि आपसे ढेर सारी बातें करने और आपको इन्फॉर्मेशन देने ही तो हम आए हैं। भाई जब हम आए हैं तो कुछ आपके लिए फ़न, कुछ आपके लिए मस्ती, कुछ आपके लिए मोटिवेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर नहीं लाए हैं तो फिर फ़ायदा ही क्या। कुछ ना कुछ तो हमें आपके लिए लाना ही है, और बिल्कुल आज भी लाए हैं जैसे कि हमेशा लाते हैं। लेकिन आज का दिन तो है बहुत ही खास, और वो खास क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज है 26 अगस्त 26 अगस्त है आज, और आज के दिन ना, आज के दिन को जो सेलिब्रेट किया जाता है उसके दो कारण हैं। दो वजहों से आज का दिन बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है, तो उसे हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी किसी चीज़ को हम मनाते हैं या किसी वजह से कोई दिन खास होता है तो उसके अपने मायने होते हैं। तो आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज है विमेंस इक्वालिटी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सामान्यता दिवस। आज के दिन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को समान अधिकार व अवसर दिलाने की प्रगति को ये दिन दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से आज के दिन ही अमेरिका में 19वें संविधान में संशोधन कर 1920 की जो याद से शुरू हुआ था, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। यानी कि आज ही के दिन 1920 में अमेरिका के में 19वें संविधान में संशोधन कर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इसलिए आज का दिन मनाया जाता है विमेंस इक्वालिटी डे, यानी कि महिलाओं का जो अधिकार है वो समान है। कहीं ना कहीं इक्वालिटी होती है कि सामान्यता, मतलब हर चीज, हर इंसान समान है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे मानने से चीज़ें कई बार नहीं होती हैं, चीज़ें होती हैं अपने हिसाब से। कहने का सेंस ये है कि कौन कम है, कौन ज़्यादा है, ये कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आज के दिन महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया था, इसीलिए आज के दिन को विमेंस इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को समान अधिकार मिलना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि समानता जो होती है वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू आपको दी जा सकती है, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए ज़रूरत है तो सोच को बरकरार रखने की। जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आप चीज़ों को सोचेंगे, जैसे समझेंगे, वैसे ही चीज़ें होने भी लगती हैं। इसलिए समानता का अधिकार महिलाओं को देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो तभी पूरे तरीके से मिल सकती है जब हम सोच से भी समान हो। कहने का मतलब ये है कि अपनी सोच में भी समानता लानी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से सोच अगर इक्वल रखेंगे, दोनों के लिए एक ही नज़रिया रखेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तभी कहीं ना कहीं जा कर के चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। सो विमेंस इक्वालिटी डे। और आज एक चीज़ और भी खास है, वो भी बता देती हूँ आपको, जो कि आज है अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस। यानी कि आज के दिन उन सभी बेघर पशुओं को, डॉग्स को जो है वो संरक्षण दिया जाता है, उनके प्रति प्यार, उनके प्रति लगाव किया जाता है। और ये जो आज का दिन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस, ये उनके उनको लेकर के कहीं ना कहीं सब में संवेदनशीलता हो और उनके प्रति जागरूकता हो, इसलिए भी मनाया जाता है। कहीं ना कहीं हम सभी देखते हैं ना लिसनर्स, आए दिन अपने गली मोहल्लों में आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो डॉग्स होते हैं वो बस यूं ही मोहल्ले में, गलियों में खुले घूम रहे होते हैं। ये उन्हीं के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ज़रूरत है एक अच्छे माहौल की, एक अच्छी जगह की, जहाँ वो रह सकें और
पशुओं के प्रति आप देखते हैं ना कि हम सिर्फ डॉग्स की नहीं, अगर गाय की भी बात करें, किसी भी पशु की बात करें, तो उसके प्रति लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आज कोई भी डॉग आकर के हमारे गेट के सामने या कहीं भी बैठ जाता है तो आपने देखा होगा कोई सर्दियों में लोग पानी डाल देते हैं, मार देते हैं उन्हें डंडे से, या फिर उन्हें परेशान करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों के प्रति जागरूकता लाने के लिए, और इसलिए भी ताकि ऐसे डॉग्स के प्रति और पशुओं के प्रति, जैसे कि ये पशु में अगर हम बात करें तो पशुओं में हमारी गाय माता जो होती है, जिन्हें हम माता कहते हैं, उनके प्रति, इन सभी के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपके घर में बैठे हुए हैं, तो उन्हें बैठे रहने दीजिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो आपको एक रोटी उन्हें खाने के लिए देनी चाहिए, न कि मारना पीटना चाहिए, और उनसे बुरा व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बस इसी चीज़ को ये दिन दर्शाता है, इस दिन को मनाने का एक जो हमारा मोटिव है वो यही है कि लोगों में उनके प्रति कहीं ना कहीं संवेदनाएँ हों, और वो समझें कि उनके अंदर भी वो भी एक जीव है, इसलिए उन्हें भी बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। सो आइए लिसनर्स, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, तो वापस आऊँगी मैं एक बहुत ही प्यारे से, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, जो कि हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो, जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम बैक मिस्टर, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और फिर से लेकर के आ गई हूं आपका अपना वाला शो। सो हर दिन कुछ खास, क्योंकि हर दिन होता है एक नया आगाज। बिल्कुल, हर दिन होता है खास, हर दिन होता है नया आगाज। कहने का मतलब ये कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कुछ बहुत अच्छा होता रहता है। बस हमें उसे देखने की ज़रूरत होती है कि हमारे आसपास अच्छा क्या हो रहा है। अगर सुबह हुई है, सूरज उगा है, आज का ये दिन है, तो इसमें अच्छा क्या है, वो हमें ढूंढना होता है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन वो किनके बारे में है, क्या है, ये सब बताऊंगी। पर उससे पहले आपको ये प्यारी सी चार लाइनें सुनाना चाहती हूँ, और इनके थ्रू बताना चाहती हूँ कि आज हम अब किसकी बात करने वाले हैं। सो लाइंस कुछ इस तरीके से हैं। महलों का आराम त्यागा उस कांटों भरे उस महलों का आराम त्याग कर उसने कांटों भरे सफ़र को चुना। झुग्गी झोपड़ी के आंगन में मानवता का एक ख्वाब बना। न कोई जात धर्म देखा, बस रोते अश्क पोष डाले। गले लगाया उन सब को जो दुनिया में थे दुत्कारे। नीली साड़ी का वो आंचल हर दुखिया का सहारा था। नफरत की इस आंधी में वो करुणा का एक तारा था। छोटे छोटे कार्यों में भी असीम प्यार भर जाती थी बनकर मसीहा बेबसों का वो जीना हमें सिखाती थी बिल्कुल वो हमें जीना सिखाती थी। और कहीं ना कहीं उनसे सीखना भी चाहिए कि ज़िंदगी जो होती है वो कभी हारती नहीं, बस एक जज्बा होना चाहिए। सो किसकी कर रहे हैं हम बात? तो आज हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा, जिनकी कि आज जयंती है, यानी कि आज 26 अगस्त के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। और उनकी इस जयंती को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकें, जान सकें कि आखिर मदर टेरेसा थी कौन। आज के दिन को मनाने का एक मोटिवेशन और है कि आज के दिन भारत और विश्व में नोबल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा की जयंती के रूप में याद किया जाता है। और आज के दिन उनकी जयंती इसलिए भी मनाई जाती है ताकि कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि जो संवेदनाएं होती हैं, जो प्यार होता है, जो केयर होती है, जो आज कहीं ना कहीं इंसान में धुंधली पड़ती जा रही है, वो आज के दिन हम मदर टेरेसा की जयंती को मनाकर याद करते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं, और इसी के साथ याद करते हैं कि उन्होंने कितना कुछ किया है, हमारे भारत देश के लिए, हमारे समाज के लिए। कहीं ना कहीं हमें समझना होगा, सोचना होगा उनकी लाइफ के। कुछ आज हम आपको छोटे छोटे पार्ट्स बताएंगे जिनसे कि हम बहुत कुछ अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और अगर हम बात करें यूथ्स की, जैसे कि ज्ञानसली लाइव हमारा जो शो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए और यूथ्स के लिए है। सो स्टूडेंट्स के लिए तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ ये भी सिखाती है कि किस तरीके से एक डेडिकेशन सिखाती है। तो स्टूडेंट्स को तो ज़रूर सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने सिर्फ अभी अपनी लाइफ शुरू ही की है। आगे शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको वो सब कुछ डील करना है। वो सब कैसे आप डील कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये सब आपको अगर आप ये सुनेंगे तो समझ आएगा। तो आइए बताते हैं सबसे पहले उनकी लाइफ की एक किस्से के बारे में कि आज के जो यूथ्स होते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है ना कि रील स्क्रॉल करना, बिस्तर पर लेटे लेटे सपने देखना सभी को पसंद होता है। लेकिन मदर टेरेसा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना घर, परिवार और देश हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोचिए, बिना गूगल मैप, बिना इंस्टाग्राम के, तब एक अनजान देश में, भारत में आकर सिर्फ सेवा करने का उन्होंने फैसला लिया। और ये उनका जो एक कदम था, ये था कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की जिद पकड़ी हुई थी। उनका मानना था कि मैं मेरे देश में नहीं, दूसरे देश में जाऊंगी और वहाँ करूंगी। अगर कुछ बड़ा करना है, अगर हमें कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो मदर टेरेसा हमेशा ये मानती रहीं कि अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ता है अगर आपको कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, कुछ बहुत बड़ा पाना है, अपनी लाइफ को एक मुकाम देना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलें।
इसलिए कहते हैं कि जो लोग आज भी कहीं ना कहीं बस यही सोचते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, अपने घरों से बाहर निकलें, तभी आपको कहीं ना कहीं एक पूरी लाइफ मिलेगी। कहते हैं ना कि आराम करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप में शक्ति है, सोच है, हिम्मत है, तो बाहर निकलें, दुनिया का सामना करें, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन, मजबूत से और मजबूत बनाइए। और फिर आज का जहां तो हम पा ही सकते हैं, जैसा कि हमें मदर टेरेसा जी की रियल लाइफ स्टोरी सिखाती भी है। उनकी लाइफ का एक किस्सा और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पार्ट जो कि है वो ये है, वह कोलकाता में एक कॉन्वेंट स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। बढ़िया नौकरी, इज्जत और आराम था उनके पास, लेकिन एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें अंदर से एक ऐसा झटका लगा कि उन्होंने स्कूल की नौकरी को बाय बाय बोला और सीधे झुग्गी झोपड़ियों के बीच जा पहुंची। आज की भाषा में कहें तो उन्होंने कॉरपोरेट की सेफ जॉब को छोड़कर फुल टाइम सोशल स्टार्टअप शुरू कर दिया, जो भी बिना किसी फंडिंग के उनसे मिलने आता था और उसे कहीं ना कहीं ज़रूरत होती थी कि वो उनकी मदद करें, तो वो उनकी मदद करती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी जॉब थी उनके पास, लेकिन उन्होंने वो सब छोड़कर झुग्गी झोपड़े में रहने वाले गरीब और बेबस लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की कसम खाई, और उन्होंने निस्वार्थ सेवा की भी। उनकी कहीं ना कहीं बताया भी कि किस तरीके से हम ये कहें कि उनकी छोटी छोटी कोशिशों ने एक बड़ा आयाम आज तैयार कर दिया। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब तक अगर पैसे नहीं हैं तो हम भलाई कैसे करेंगे, पैसों से ही हम मदद कर सकते हैं, लेकिन मदर टेरेसा जी का कहना था कि बड़े काम हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन छोटे काम बहुत बड़े लोग प्यार से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपने शरीर से, अपने मन से सेवा कर सकते हैं। वो सड़क पर पड़े जख्मों को अपनी साड़ी से साफ किया करती थी। अच्छे अच्छे देखकर जिन जख्मों को ये सोचते थे कि कैसे ठीक होगा, उन्हें वो ठीक कर दिया करती थी। आजकल के यूथ की हम बात करें, या हम बात करें कहीं ना कहीं खुद की भी, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर, या अगर बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो हमारा एक रिज़ल्ट अगर कुछ नंबर भी कम आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उसे देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन मदर टेरेसा जी हमेशा कहती थी कि जब तक उम्मीद है, जब तक इंसान के अंदर सांस है, तब तक आस है। यानी कि अगर उनके पास ऐसे ऐसे लोग भी आते थे जो पूरी तरह ज़ख्मी होते थे, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि जब तक उसकी सांस चल रही है, तब तक ये उम्मीद है कि हम उसे बचा सकें। और उन्होंने ऐसे बहुतों को बचाया जिनके की बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ज़रूरी ये नहीं है कि हमारे पास हम किसी को फाइनेंशली ही हेल्प करें, हम किसी को सेवा करके, उसकी मदद करके, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाकर भी हेल्प कर सकते हैं। वो हमेशा कहती थी कि अपने आसपास रहने वाले लोगों, पड़ोसियों, या किसी, अगर कोई आपका दोस्त भी है ना जो दुखी है, परेशान है, तो अगर आप उसके चेहरे पर एक स्माइल भी ले आएंगे ना, तो इसका मतलब है कि वही बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि किसी को बहुत सारी चीज़ों के साथ हेल्प की जाए, बस आप उसकी फेस पर एक स्माइल ले आइए, वही कहीं ना कहीं आपके उसकी सबसे बड़ी मदद होती है जो आप करते हैं। सो उनका जीवन, उनकी लाइफ जो है वो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी, सिखाती रहेगी कि किस तरीके से अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, एक सेपरेट जॉब को छोड़कर, उन्होंने ही निसहाय निर्बल लोगों की मदद की हमेशा, और हमें भी सीख देती है कि हमें ऐसे लोगों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। सो आइए लिसनर्स, आज के दिन उन्हें याद करते हुए और उन्हीं की बातें करते हुए चलते हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

की धड़कन और धड़कन का दिल धड़काने के लिए फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, लेकर के आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जो कि है ज्ञान असली लाइफ। तो आइए लिसनर्स आगे बात करते हैं, और आगे अब हम जो बातें करने वाले हैं, भाई अभी तक हमने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, ये बताया कि आज का दिन, आज का ये जो दिन है ये खास क्यों है। वैसे तो हर दिन ही खास होता है अगर हम बनाना चाहें तो, अगर हर दिन में आप कुछ ढूंढना चाहें ना तो कुछ बेहतर से बेहतरीन बहुत अच्छा मिल जाता ही है हमें, बिल्कुल। तो आज का दिन तो हमने आपको बता दिया कि क्यों खास है। अब आते हैं कुछ हमारी हेल्थ की तरफ, और थोड़ा सा होता है ना काम की तरफ, अभी तक भी हमने काम की बातें की, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो बात है ये बहुत ही काम की बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि समय जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बट आज के टाइम में क्या हो गया है ना कि आज के टाइम में हमारे हाथ में ये जो आ गई है स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन की बात करें तो फ़ोन, कहीं ना कहीं वैसे तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, बिना इसके हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट काम कहीं ना कहीं फ़ोन से बस यूं ही हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको टाइम से यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि इसकी टाइम लिमिट नहीं रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी एक दुश्मन नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है। सो आज हम बात करने वाले हैं आज की टाइम में बढ़ते हुए स्क्रीन एडिक्शन की, जो कि बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमारे सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हर उम्र के लोग इस स्क्रीन एडिक्शन के शिकार हैं, जो कि अगर एक बार हाथ में फ़ोन आ गया तो फिर आ ही गया, फिर तो मतलब ये है कि कुछ भी नहीं हो सकता, ना कुछ चेंज हो सकता है, ना कुछ समझा जा सकता है। एक बार फ़ोन हाथ में आया तो फिर फ़ोन चलाना ही चलाना है, और फिर हम घंटों बस लेटे लेटे फ़ोन चलाते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, और इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता, ये एक तरीके का एडिक्शन होता है, और इसके चलते हम अपने ज़रूरी कामों को टालते हैं, मतलब जो हमें बहुत ज़रूरी लगते हैं काम, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हम उन्हें भी टाल देते हैं कि अरे नहीं नहीं मम्मी रहने दो, अभी बाद में करेंगे यार, अभी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं फ़ोन पे कुछ इम्पॉर्टेंट देख रही हूँ। फिर चाहे आप कुछ भी इम्पॉर्टेंट ना देख रहे हो, लेकिन मुँह से यही निकलता है मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अभी ये इधर उधर हो जाएगी और आप जाओ मैं बाद में काम करूँगी। तो कहीं ना कहीं इस स्क्रीन एडिक्शन की वजह से ही होता है कि हम चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं। सो आज हम इस पे कुछ आपको टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे जिसकी वजह से आप इस एडिक्शन से निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस एडिक्शन से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, किसी किसी को आपने देखा होगा कि वो दिन में सिर्फ 2 कप लेते हैं, तो किसी किसी को देखा होगा कि वो दिन में 4 कप 5 कप 6 कप पी जाते हैं, और कहते हैं ना कि चाय की भी आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है आपको, अगर आपको डेली पीने की आदत है तो धीरे धीरे हम एडिक्टेड हो जाते हैं कि बिना पिए चाय हमसे रही नहीं जाता, हमें आदत हो जाती है चाय पीने की, इसीलिए कहते हैं कि चाय कम से कम पीनी चाहिए। आजकल मोबाइल स्क्रीन का जो हाल है, यानी कि हमारे फ़ोन का जो हाल है, वो भी कुछ इसी तरीके से है कि एक टाइम को बिना खाए रहा जा सकता है, लेकिन फ़ोन चलाए बिना तो कतई नहीं रहा जा सकता। तो आज इसी के लिए हम कुछ टाइम मैनेजमेंट बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जो मैं ट्रिक आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास जो भी काम है उनके लिए बिना फ़ोन के आप 2 घंटे तय करें। कहने का मतलब ये है कि हम इसे कहते हैं टाइम ब्लिंकिंग टेक्निक। टाइम ब्लिंकिंग टेक्निक का मतलब होता है दिन में सबसे ज़रूरी कामों के लिए आपको 2 घंटे निकालने हैं, और उन 2 घंटों में आपके हाथ में फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो 2 घंटे का टाइम जो है वो आपको ब्लॉक करके तय करना है कि मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं लूँगी, और मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट काम है मैं इन 2 घंटों में, बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मेरे दिन के, कि बिना किए हम रह ही नहीं सकते हैं, तो हमें इन दो घंटों में वो काम कर लेने हैं। दूसरी बात आती है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन या दिन के कुछ घंटे सोशल मीडिया ऐप से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। इसे डिटॉक्स कहते हैं, पता है इसे मेंटली डिटॉक्स होना कहते हैं, डिजिटल डिटॉक्स होना कहते हैं, कि जब वीक में एक बार कम से कम कुछ घंटों के लिए आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम औरों से मिल पाते हैं, बातें कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, और इससे आपका माइंड
डिटॉक्स भी होता है, क्योंकि हम फ़ोन में जो कुछ भी देखते हैं, रील्स देखते हैं या जो भी वीडियोस देखते हैं, उनके थ्रू जो बातें हमारे मन में होती हैं वो हमारे मन में चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन को में वो बातें चलते चलते कई बार हम कुछ ऐसा भी देख लेते हैं ना जो हमारे मन को दुख पहुँचाता है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो आपके मन में चलती रहती हैं, आप सोचते रहते हैं, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भारी सा कर देता है। कई बार हमें फील होता है, हम कहते हैं ना मम्मी सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और दिन भर हम फ़ोन देखते हैं, इस वजह से भी ऐसा होता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ आती है कि रील्स शॉर्ट्स की बजाय किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनने की आदत डालना और चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फोकस बढ़ता है। बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रील और शॉर्ट्स की बजाय आप किताबें पढ़ें। आपकी कोई भी एक फेवरेट, कोई भी एक फेवरेट बुक हो सकती है ना जो आप हमेशा से पढ़ते हो, आप किताबों को पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, पेंटिंग करिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ़ोन से अलग रहकर भी कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दिन भर फ़ोन यूज़ ही ना करें और बिल्कुल फ़ोन ही ना चलाएं, बस ये कहा जा रहा है कि वीक में कुछ घंटे, एक वीक में एक दिन आप कुछ घंटे फ़ोन से दूर रहें, इससे आपका माइंड भी डिटॉक्स होता है और इसी के साथ साथ धीरे धीरे करते करते हमें जो एक ये कह लें कि ये एडिक्शन हो जाता है, स्क्रीन एडिक्शन, इसे छोड़ने में भी बहुत मदद मिलती है। सो ये थी आज की बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कह लें, या मुझे लगता है कि टिप्स जो थी वो बहुत ही बढ़िया सी टिप्स थी हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे फेस कर रहे हैं और हम सभी सोचते हैं कि यार इतना फ़ोन ना चलाएं, कैसे ये आदत हमारी जो है वो छूट जाए। तो इसके लिए आज ये टिप्स थी और इन्हीं टिप्स के साथ, ब्यूटीफुल टिप्स के साथ, आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं प्यारा सा सॉन्ग, बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जो कि है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन

बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइफ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलते हैं अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली हमारी प्यारी सी मोटिवेशनल वाली स्टोरी की तरफ, जो कि आज किसकी है चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि आज है कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे निखिल कामत की, जिनका कि मन कभी की स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगा। उन्हें शतरंज खेलने का बहुत शौक था, जिससे उनके दिमाग में जो स्ट्रैटेजी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वो जो भी स्ट्रैटेजी बनाते थे वो सक्सेस हो जाती थी। पढ़ाई में मन न लगने की वजह से 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू किया, जिससे उनकी माँ ने कुछ टाइम बाद बंद करवा दिया। इसके बाद 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉल सेंटर में 8,000 रुपये प्रति माह पे जॉब कर ली जॉब की। नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपने भाई नितिन कामत के साथ मिलकर शेयर मार्केट को समझना और उसमें छोटा मोटा निवेश करना भी शुरू कर दिया। चूंकि वे स्कूल ड्रॉप आउट थे, इसलिए कोई बड़ी कंपनी उन्हें नौकरी नहीं देती, लेकिन निखिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव को अपनी ताकत के साथ समझा और इसी के साथ साल 2010 में अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर जीरोधा नाम की एक ट्रेंडिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने जो पारंपरिक ब्रोकरेज ख़त्म करके युवाओं के लिए निवेश करना बेहद आसान बना दिया, मतलब बहुत ही आसानी से उन्होंने ये रास्ता खोल दिया जिसकी वजह से यूथ आसानी से निवेश कर सके। उन्होंने पारंपरिक ब्रोकरेज को ख़त्म किया और युवाओं के लिए निवेश करना बेहद आसान कर दिया। बिना किसी बाहरी फंडिंग यानी कि बिना किसी से पैसा लिए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर जोरोधा को भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बना दिया। आज निखिल कामत की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा है आज उनकी जो कंपनी है, उसका टर्नओवर कहीं ना कहीं 25 करोड़ से भी ज़्यादा है और वह भारत के सबसे ज़्यादा यंगेस्ट और कहीं ना कहीं सक्सेस बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। ये माना जाता है कि वो सबसे यूथ भी हैं और यूथ होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं, और उनका सक्सेसफुल होना जो कि है वो बताते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जब अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम किए तो मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे घर के लोग थे, मेरे रिश्तेदार, बाकी सभी जो थे वो बहुत निराश थे। उन्हें यही लग रहा था कि ये क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी। लेकिन जो कि उन्हें चेस खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो उसकी वजह से धीरे धीरे उनको ये समझ में आया कि किस चीज़ के लिए हमें किस तरीके से कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उस स्किल का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे स्ट्रेटजी बनाते हुए अपनी एक कंपनी बनाई, शेयर मार्केट को समझा कि शेयर मार्केट में क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसी चीज़ें की जाती हैं, और फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी को खोला और आज वो बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हैं। सो कहीं ना कहीं हमें भी समझना चाहिए कि हर बार ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कि किताबी ज्ञान यानी कि बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन कई बार होता है ना कि हमने अगर किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी उतने काम नहीं आती है जितना कि आपके काम तब आता है जब उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपने समझी हो, उसे अपनी लाइफ में उतारा हो, उससे कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हुए हो, तब जाकर के लाइफ एक बेहतर मुकाम पर जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपके पास आसपास चीज़ें हो रही हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हें समझने की कोशिश करें, समझें कि आखिर है क्या। कई बार होता है ना कि देखते तो हम बहुत कुछ हैं, पढ़ते भी बहुत कुछ हैं और बहुत हाईएस्ट हमारे मार्क्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कहीं ना कहीं उसकी कमी हमारे पास रह जाती है। इसीलिए कई बार होता है कि बहुत अच्छी डिग्री के बावजूद, बहुत अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर स्किल्स नहीं होती हैं तो हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं, और ऐसी कई सारी सॉफ्ट स्किल की कमी हम में हो जाती है, जिसके बावजूद डिग्रियां तो बहुत होती हैं लेकिन जॉब जो होती है वो हमें आसानी से नहीं मिलती। और सिर्फ जॉब ही नहीं, कई बार हम अपनी लाइफ में भी ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि जहां आप किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं

उनसे जो भी नॉलेज है उन्हें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ले रहे हैं, उसी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज को भी लीजिए और चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश भी करिए। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, उसे सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, और बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है ज्ञानस्ती लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और इसी सॉन्ग के बीच में आऊँगी आपसे बाय करने के लिए। तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें।

ऑटो पिया और मुझे लगा कि भाई आज हमने फ़ोन को लेकर के, स्क्रीन्स को लेकर के इतनी सारी बातें की, और सेल्फी लेना आजकल जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद होता है और सभी को कहीं ना कहीं पसंद होता है। तो जाते जाते आज हम आपको इस प्यारे से सॉन्ग के साथ इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि खींचो फोटो ये तो ज़रूरी है, फ़ोन के साथ टाइम बिताना भी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में। इसी प्यारे से मैसेज के साथ छोड़े चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए लिसनर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हाँ, रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलूंगी आपसे आपके लिए अपने बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे अदनान। श्रोताओं, कहते हैं ना कि घर की असली खुशी तभी होती है, यानी घर की असली खुशहाली तब आती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हों। लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण सिर्फ बच्चे के शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि उसके दिमाग के विकास पर भी बहुत असर डालता है। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी टीकन भाभी, क्योंकि भाभी हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती हैं। भाभी, बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी आखिर कैसे पहचान सकते हैं और इसे समझना जरूरी आखिर क्यों है?
3: देखिए, बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए कुछ संकेत साफ दिखते हैं। पहला संकेत है बच्चे का वजन। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन बढ़ नहीं रहा है तो ये पहली चेतावनी है। और दूसरा है सुस्ती। कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं। तीसरा लक्षण है बाल और त्वचा। कुपोषित बच्चों के बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हैं, त्वचा भी रूखी सी दिखती है। चौथा है भूख नहीं लगना। बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है। और पांचवा है बीमारियां। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण के शिकार होते हैं।
1: अच्छा, तो भाभी हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण तो जान लिए, अब जरा इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी बताइए।
3: देखिए, कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होता है। इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखें। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फलों का गूदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल, सब्जी, फल, अनाज और दूध दही जैसे पोषक खाना दें। साफ सफाई भी जरूरी है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना बहुत जरूरी है। समय पर टीकाकरण और स्वस्थ जांच भी जरूरी है। डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बीमारियों से बचाता है। परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है। परिवार को खाना बनाने, दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद करनी चाहिए।
1: तो भाभी, क्या बच्चे के दिमागी विकास में भी पोषण का असर होता है?
3: हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इस मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडीज देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा, उसका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होगा।
1: तो भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है?
3: जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना, मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व तो नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देते हैं, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है। फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले, ताकि वो स्वस्थ हो।
1: भाभी, एक और जरूरी बात बताइए कि परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है?
3: देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादी, दादा, पापा खाना बनाने में थोड़ा हाथ बटाएं, तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत को मजबूत बनाता है।
1: तो भाभी, मुझे ये बताइए कि गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
3: गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। साफ पानी पीना भी जरूरी है।
1: भाभी, अक्सर डॉक्टर्स गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं। ये गोलियां खाना क्या जरूरी होता है?
3: जब महिला गर्भवती होती है तो उसके खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगता है। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो जाता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है।
1: तो भाभी, मेरा एक और सवाल है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए?
3: माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुड़ भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध दही जरूर खाना चाहिए। गेहूँ, चावल, बाजरा जैसे मोटे अनाज भी ताकत देते हैं।
1: तो भाभी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियाँ और दूध दही आखिर क्यों जरूरी होता है?
3: हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि उसके शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती है। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी कैल्शियम देते हैं, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है।
1: भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस, मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ना खाया जाए तो फिर उसके लिए एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है?
3: माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत पोषण की होती है। अगर घर में मांसाहार होता है और माँ उसे खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस, मछली और अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती है। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो भी उसे भरपूर ताकत और सेहत मिल सकता है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध दही, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियाँ और सूखे मेवे, ये सब खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है, दाल और पनीर से प्रोटीन की कमी पूरी होती है और दूध दही से हड्डियाँ मजबूत रहती है। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा।
1: So, दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। कुपोषण का मतलब कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही। इससे उसका वजन कम रह जाता है, अक्सर बीमार पड़ने लगता है और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चे को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण हो और साफ सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाए तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत होगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ का पोषण बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियाँ, फल, दूध दही जैसी चीजें माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो याद रखिएगा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे
4: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोडा शहर की धड़कन।
5: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मेनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे समता
7: और मैं हूं आरजे अंशिका।
6: भाई आ गए हैं फिर से आप सबसे मिलने के लिए और बहुत ही ज्यादा बेताबी से, क्योंकि वाकई में कल मैं नहीं आई थी और बार बार पूछा जा रहा था, मैंने मैसेजेस भी देखे और मैंने थोड़ी देर शो भी सुना था, बट नहीं आ पाई। कोई बहुत ही मेजर काम था, इस वजह से नहीं आ पाई थी, माफी चाहती हूँ। लेकिन आज फिर से अपने काम पर लौट आई हूँ, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है सुन सहेली। और इस प्यारी सी दोपहर में, जिसमें बहुत सारी गर्मी है, बहुत सारा पसीना है, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारा जैसे पानी पियो तो मुंह सूख रहा है और बहुत सारी बीमारी, मतलब सबको कुछ ना कुछ इस समय है, कहीं वायरल फैला है तो कहीं पेट खराब है तो कहीं कुछ है, तो इस दोपहर को तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस दोपहर में अगर आपको काम हो तो ही आप काम करें, अदरवाइज आराम करें। ये कौन सा काम था?
7: वाह,
6: ये कोई
7: क्या लाइन बनाई है?
6: लाइन तो अच्छी थी, लेकिन अगर जिन्होंने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जिन्होंने अपने काम पे जाना है, तो आप वो काम भी करें, लेकिन साथ ही साथ में आराम भी जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में वायरल फीवर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो आप बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें और आइए इस दोपहर को एक साथ विश कर देते हैं, एक साथ दोनों एक ही फ्रेम में। शुभ दोपहरिया।
7: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मौसम है जबरदस्त और हम भी हैं बहुत मस्त, लेकिन जैसे कि अभी कहा गया, हिदायत दी गई कि अपना रखें ख्याल, वरना हो सकते हैं थोड़े बेहाल, क्योंकि मौसम कुछ यही कह रहा है कि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हम आपको बेहाल करने में कोई कमी नहीं रखेंगे,
6: कोई कसर नहीं छोड़ेंगे,
7: कोई कसर नहीं, क्योंकि हर एक घर में इस टाइम एक ना एक इंसान तो बीमार है ही।
6: बिल्कुल,
7: और कुछ ऐसे भी हैं जो बीमार भी हैं और काम पे भी हैं,
6: क्या कर सकते, जैसे हम लोग,
7: जैसे हम
6: तो बीमार भी हैं लेकिन काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, काम और हमारे लिए काम ही पूजा है। तो भाई इस पूजा को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन काम को अपना एक अगर गुरु मान लें, अगर काम को अपना एक सब कुछ सर्वस्व मान लें, तो उस काम से प्यार हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है।
7: यस मैम, और कहीं ना कहीं हमें भी प्यार हो गया है।
6: किस से?
7: काम से।
6: अच्छा, हमें लगा आज हमको तुम बताओगी कि मैम आप कल नहीं आई थी तो इतनी 24 घंटे में मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो मैं वो आप कल नहीं आई थी तो इतनी 24 घंटे में मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन है।
7: वो पता नहीं कब होगा मैम, और कब मैं आपको बताऊंगी। होगा भी या नहीं पता नहीं।
6: वो तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना कि किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लव अरेंज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अरेंज को लव करते हैं। तो आई थिंक हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं।
7: नहीं, मैं अपने लिए लेती हूँ।
6: नहीं, हम यहाँ दोनों बैठे हैं, पूरी बात सुना करो, कब बोला करो। हम दोनों यहाँ बैठे हैं तो एक लव को अरेंज करने का जिम्मा उठाता है और एक अरेंज को लव करने का है। बिना सोचे समझे हाँ हूँ मत किया, क्योंकि आधी बात जो होती है वो खतरनाक ही होती है। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज वेडनेसडे यानी कि महिलाओं का दिन। हम वैसे भी रोज सुन सहेली प्रोग्राम का मतलब ही है कि हम महिलाओं को समर्पित करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन खासम खास हम शुरू करते हैं आज के दिन को, महिलाओं को समर्पित करते हैं। तो महिलाओं को समर्पित करते हुए एक बहुत ही प्यारी सी पोयम जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो शुरू करें।
7: शुरू करते हैं,
6: चलो।
7: इतनी आसानी से तो नहीं शुरू करेंगे मैम, मुझे पता है, क्योंकि उनको अभी क्लियर आउट एक चाहिए, रास्ता चाहिए, तो रास्ता दे देते हैं। और कल भी
6: टेक ऑफ करने के लिए अभी सही पर वो नहीं है, पिच नहीं मिली है मुझे,
7: तो कल भी हमने याद किया था, और जो कल कहा था वही आज दोहराऊंगी, क्योंकि हो सकता है कल मैम ने न सुना हो, तो आज सुना देते हैं। कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे मैम, तो हमने कहा था कि आज आप नहीं थी, तो इसलिए मैंने बोला कि आज मुझे रास्ता देने के लिए मैम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा था जो पोएट्री वही मैं आज भी कहूँगी, कि आ रही है उनकी याद और दिल कर रहा है फरियाद, आ रही है उनकी याद, दिल कर रहा है फरियाद, और है उन्हीं का इंतजार भी, और उन्हीं के लिए है दिल बेकरार भी। तो आइए इसी बेकरार दिल के साथ करते हैं शुरुआत, आप ही अपनी आरजे समता के साथ।
6: ओफो वाओ, तो मतलब तुमने कल मुझे याद किया था।
7: यस, मैंने कल आपको याद किया था।
6: थैंक यू सो मच। तो चलिए फटाफट शुरू करें आज की पोयम।
7: जी।
6: नारी को तुम कम न समझो, वह भी छुए गगन के पार। नारी को तुम कम न समझो, या भी छुए गगन के पार। समानता का अधिकार मिले तो, समानता का अधिकार मिले तो, बदल दे वह संसार। कदम कदम पर साथ चले वो, मुश्किल को करे आसान। भेदभाव की दीवारें तोड़कर पाए अपना उच्च मुकाम। सदियों से जो सहती आई अब न वह है लाचार। शिक्षा और सम्मान ही उसका असली अब अधिकार। घर की चौखट लांघ चुकी है, छूती है सब आसमान। बेटे जैसा हक पाए वह, तभी बढ़ेगा देश महान। नारी शक्ति जग की जननी, उनका भी सम्मान करो। आधी आबादी को तुम अब पूरा पूरा मान दो। अवसर और तरक्की में वह किसी से पीछे नहीं। समान अधिकार मिले जहां, पद्धति ही सबसे सही। रूढ़ियों की जंजीरें टूटी, नई सुबह अब आई है। कंधे से कंधा मिलाकर उसने अपनी राह बनाई है। समानता ही लक्ष्य हमारा, यही देश का नारा हो। हर महिला का जीवन अब खुशियों में उजियारा।
7: वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे कहते हैं ना कि महिलाओं की जब बात करते हैं हम, तो शब्द भी बिल्कुल वैसे प्यारे से होने चाहिए, और बहुत ही खूबसूरत पोयम थी मैम, बहुत अच्छी लगी।
6: तो चलिए इस पोयम के साथ साथ फटाफट शुरू कर देते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि कल मैंने बहुत मिस किया था रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ को भी। मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने ऑन ही थोड़ी देर से ही किया था, तो मैंने पोयम मेरे से मिस हो गई थी, और जो आगे का सेगमेंट था वो भी मिस हो गया था। चलो तो कोई नहीं, अब हम सुनते हैं आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
7: समानता व्यवहार से नहीं होती, अगर किसी को समान समझना है तो वो सोच से होती है। कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं ना कि लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है, वो आपकी सोच से होता है। क्या आप वैसा सोचते भी हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सोच पे अमल करने की बात आती है तो फिर लगता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बस कह दिया हमने, यही होता है। जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़, यहाँ हम सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि पुरुष और महिला में, अगर आप अपने रिश्तों को भी समझ

0: समझते हैं, रिश्तों में भी लोगों को समझते हैं, तो वो दिल से होगा, सोच से होगा। सोच बदलनी है, कहते हैं ना सोच बदलो तो दुनिया बदल जाती है। सोचने का तरीका बदलिए तो नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव बदलती
1: है। कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नजारे बदलेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हमारी सोच बहुत बड़ी, बहुत बड़ा काम करती है। अगर हमने सोच को सही रख लिया ना, तो एग्जैक्टली हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो केवल सोच के कारण से होती है,
0: सोच के कारण से होती है, इसलिए उन्हें बदलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी एक दोहा कह लें या कहावत है कि चंदन विश्वव्यापत नहीं, ऐसे कुछ करके है, मुझे वो प्रॉपर नहीं याद आ रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि चंदन के पेड़ में सांप जरूर लिपटे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद
1: उसकी शीतलता जो है वो सांप नहीं ले पाता है, और सांप में जो एक विष होता है वो चंदन नहीं ले पाता।
0: तो
1: इस दोहे का जो एग्जैक्टली अर्थ है वो यही है।
0: तो वैसे ही इंसान को भी होना चाहिए कि बाहरी माहौल कितना भी आपकी सोच पर असर डाले, लेकिन आप अपनी सोच को कैसा रखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम तो भी बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, कल भी मैंने बहुत अच्छा अच्छा सोचा था और आज भी मैं अच्छा अच्छा ही सोचूंगी, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और फालतू चीजें नहीं सोचनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल। तो जो हम सोचेंगे वैसा हमारी बॉडी पे भी होने लगता है, वैसे हमारी मानसिक स्थिति भी होने लगती है, और वैसे हम दिखने भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब बहुत सारे दिमाग में ख्याली चीज़ें होती रहती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए इसी के साथ में हम शुरू करते हैं आज का पहला सॉन्ग जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, साथ ही साथ में उसके बाद आज बहुत ही बढ़िया से टॉपिक्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले
0: तो आइए लिसनर्स चलते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं। बस यू गए यू आए स्टेडियम।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आइए, आपका इंतजार था। जी हाँ, आपका इंतजार था कि मेरा इंतजार था और शो शुरू हो चुका है, आपका पसंदीदा शो। मैं हूँ आपकी RJ समता
6: और मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्यों पे बात करने के लिए जो कि हर एक लड़की के जीवन में शादी के बाद ऐसा होता ही होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट पेज भी है और इस इम्पोर्टेंट पेज को आई थिंक कि सभी लोगों को फेस करना पड़ता है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने मैम।
5: इतनी खुशी क्यों?
6: नहीं, खुशी नहीं थी, जैसे स्माइल आ गई, कुछ सोच लिया मैंने। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा मैम ने कि ये एक जो स्टेज होती है वो हर लड़की को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है और वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी होती है जब वो एक कहते हैं ना कि एक जान को अपने अंदर महसूस करती है, तो बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है और बिल्कुल लगता है ना कि लाइफ की एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन इस स्टेज के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो कि कहीं ना कहीं हम अगर ये कहें कि वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती हैं, तो दोनों तरीकों से सही ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ये कहा जाता है ना मैम कि जो खाना है जैसे खाना है और जितना खाना है तुम खाना। और आप क्योंकि ये होता है ना कि हमें दो दो जान का सवाल है, जब आप कम खाते हो तो आपकी सास, आपकी नंदे या फिर आपके घर में सभी कहते हैं ना अब ज़्यादा खाया करो, अब तुम्हें दो दो जान के लिए खाना है, अपने लिए भी और बेबी के लिए भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खाना चाहिए। मेन इम्पॉर्टेंट तो यही है। ऐसा देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हमें ज़्यादातर इस स्टेज में यानी कि प्रेगनेंसी में आपको मन करता है चटपटा खाने का, हमेशा मैक्सिमम लोगों को चटपटा ही खाने का मन करता है। और आपको पता है मैम, कुछ लोगों को तो बड़ी अजीब अजीब क्रेविंग होती है।
5: तुम्हें ये बताओ, तुम इतनी श्योरिटी से कैसे जानते हो, तुम्हें बड़ी जानकारी है।

0: मतलब मतलब भाभियां मेरे घर दो दो, तुम्हें ना भाभियां हैं, ना तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड की शादी हुई है, ना तुम्हारी खुद की शादी हुई है, तुम्हें इतनी डीप नॉलेज कैसे है?
1: नहीं ऐसा नहीं है, हाँ मेरी शादी नहीं हुई है और मैंने अभी तक मतलब वो स्टेज नहीं देखी है, लेकिन मेरी फ्रेंड है, मेरी बुआ लोग हैं और भी दीदी
0: वो
1: लोग
0: तुम्हें बताती
1: हैं, वो उनकी मतलब शादियाँ हो गई हैं और उनको बेबी है तो वो मुझे
0: बताती हैं कि तुम अलर्ट रहना। चलो आगे नेक्स्ट।
1: यस लिसनर्स, तो कहने का सेंस ये है कि इस तरीके की चीजें होती हैं और हमें लगता है कि जो मतलब मम्मी मतलब होने वाली माँ को जो भी पसंद हो वो हमें देना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम कुछ भी खा लें। जैसे नॉर्मल स्टेज में आप चाइनीज भी खा सकते हैं, आप चाउमीन भी खा सकते हैं, आप बाहर जाके समोसे भी खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल वे में तो हम कहते हैं ना कि हमारी हेल्थ को नुकसान करता है, लेकिन जब आपके पेट में बेबी है तो वो आपको डबल नुकसान करता है। आप सोचिए कि आपके एक जान है आपके साथ और आप उसमें जाइए बाहर के बाहर का कुछ भी खा लीजिए तो कितना नुकसान होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं मन है तो मतलब मन को पूरा करना है तो मतलब लाओ दे दो और जो भी मर्जी हो वो खिला दो खा ले। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसी चीजें देनी चाहिए जो बेबी को भी प्रोटीन दे और बेबी की मम्मी को भी प्रोटीन दे, क्योंकि उसमें ज्यादातर प्रोटीन की ही जरूरत होती है। क्या आपको पता है कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसे चार मतलब कहते हैं कि चार लोगों जितना प्रोटीन उसको चाहिए होता है, उसकी बॉडी को चार लोगों जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा वो चीजें देनी चाहिए जो फायदेमंद हो। तो इतना सारा बताने का जो मतलब था वो सिर्फ यही था कि आज हम बात करेंगे कि जो क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी टाइम में वो क्यों होती है और कैसे उसे मैनेज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों होती है ये मैं बताऊंगी और क्या उसके निवारण है और क्या आपको सावधानी
0: कैसे रखनी चाहिए? कैसे सावधानियां हैं, निवारण वो मैं आपको बताऊंगी।
1: यस, वो मैम आपको बताएंगी। तो आइए बताते हैं कि ये क्यों होती है। सो सबसे पहला कारण है जो कहीं ना कहीं हर लड़की के साथ होता है, हार्मोनल चेंजेस। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इस तरह की क्रेविंग अचानक होती है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कभी कभी हमें इमोशनल ईटिंग होती है, कोई गुस्से में बहुत ज्यादा खाता है, कोई स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाता है, होता है ना। मेरे साथ ये तब होता है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, बहुत ज्यादा खुश होती हूँ,
0: खुशी में ज्यादा खाती हूँ,
1: ज्यादा खाती हूँ, बहुत ज्यादा खाती हूँ, और खाने की भी अजीब अजीब चीजों का मन होगा। मम्मी तहरी बना दो, तहरी थोड़ी सी खाई तो अरे नहीं मम्मी मजा नहीं आ रहा है, जा रहे हैं जलेबी खा। अजीब अजीब चीजों की क्रेविंग होती है जब मैं बहुत खुश होती हूँ, कभी कभी होता है लेकिन हाँ मन करता है। ठीक इसी तरीके से ये तब होता है जब हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सबसे तेज होता है,
0: इंक्रीज होते हैं,
1: तब आपका खाने का मन करता है। वही है बस उसका थोड़ा सा एक हम कह लें कि ऑरा चेंज होता है कि आपको क्रेविंग होती है जब आपको बच्चे मतलब टमी में बेबी होता है तब हमें क्रेविंग होती है। किसी को किसी भी चीज की क्रेविंग हो सकती है, मतलब आधी रात को
0: जी
1: हाँ तो क्रेविंग होती है। दूसरा कारण होता है कि कई बार शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से भी हमें भूख ज्यादा लगती है और हम उसे क्रेविंग समझ लेते हैं कि अगर जैसे रात को अचानक भूख लग रही है या सुबह लग रही है तो इसका मतलब है आपको खाने की क्रेविंग हो रही है। तीसरा होता है कि कई बार कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पे खाने का मन होता है, इसलिए भी क्रेविंग्स होती हैं।
0: जी
1: अब आते हैं कि अगर आपको जैसे चाइनीज नहीं देना है, अभी हमने कहा ना कि प्रोटीन युक्त चीजें देनी चाहिए, तो अगर चाइनीज नहीं देना है और आइसक्रीम नहीं देना चाहिए, ठंडा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भी नुकसान करता है, तो क्या ऐसी हेल्दी चीजें हैं जो हम दे सकते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दूं कि उबले हुए काले चने जरूर देने चाहिए। उबले हुए जो काले वाले चने होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं, वो जरूर देने चाहिए और हेल्दी भी होते हैं।
0: हाँ, उसमें कहा जाता है कि कैल्शियम एंड प्रोटीन भर भर के होता है।
1: जी मैम, और अगर आप काले चने खिलाएंगे ना तो इससे दो फायदे आपको होंगे। पहले तो उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, और दूसरा कि धीरे धीरे उनकी क्रेविंग कम हो जाएगी,
0: कम होती जाएगी,
1: क्योंकि कैल्शियम की जो बॉडी में जितना कैल्शियम चाहिए उतना काले चने से वो कंप्लीट हो जाता है।
0: काले चने या जो भुने वाले चने आते हैं पैकेट में,
1: जी
0: जब भी भूख लगे तो एक फाकी मतलब एक मुट्ठी आप उसको मतलब मतलब वो तो कोई भी खा सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो चाहे कोई भी हो, तो कहा जाता है कि हमेशा से अपने बैग में एक जो मतलब कोई भी है, जैसे जो लड़कियां जॉब में जाती हैं, विमेन जॉब में जाती हैं, या घर में भी आपको वो भुनने वाले चने हमेशा अपने पास रखना चाहिए।
1: दूसरा आता है कि मूंगफली के दाने, मूंगफली के दाने जैसे कहते हैं ना
0: विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत,
1: वो आप दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज्यादा तेल में भुने हुए ना हो, हल्के ऐसे बस रोस्ट किए हुए हो, वो आप दे दीजिए, वो आराम से खाएं, उससे न्यूट्रिशन भी होगा और धीरे धीरे बॉडी में प्रोटीन भी मिलेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि मखाना सबसे अच्छा होता है। मखाने में आप चाहें तो उसको थोड़ा टेस्टी करने के लिए
0: उसको रोस्ट कर सकते हैं, हल्के से घी में रोस्ट कर सकते हैं। क्या मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने तो हम लोग ऐसे करते हैं उसको, घी में नहीं, ऐसे ही अगर आप कढ़ाई में डाल के रोस्ट करके रख देंगे ना, तब भी वो कुरकुरे हो जाते हैं, और ऊपर से काला नमक आप हल्का सा उसमें डाल दें, मस्त चाय के साथ तो मस्त मजा आता है।
1: सुन के ही मन कर रहा है।
0: मूंगफली और मखाना, मतलब अगर आप सिर्फ नीट मखाना खा रहे हैं ना, तो कहा जाता है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, नसों की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए विटामिन B12 की जिनको कमी होती है, उनको तो मखाना जरूर खाना चाहिए।
1: बिल्कुल। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि सबसे अच्छे होते हैं पनीर के टुकड़े।
0: हाँ।
1: पनीर के टुकड़े कैल्शियम भी पूरा करते हैं और साथ ही साथ में आपके बोन्स को स्ट्रांग भी बनाते हैं। एक बात और बता दूं कि जिन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन होता है, उन्हें पनीर के टुकड़े जरूर खाने चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड में जब पेन कब होता है, जब उसमें
0: गैप हो जाता है,
1: गैप हो जाता है, तो धीरे धीरे वो उसे मेंटेन करती है। पनीर के टुकड़े आप चाहें तो उसमें हल्का उसको जैसे रोस्ट कर लीजिए और फिर खाइए।
0: और मुझे तो पता है कैसा मुझे खाना कैसा अच्छा लगता है पनीर।
1: कैसे?
0: जैसे आप पनीर आप ले आओ और पनीर को उसको बड़े बड़े पीसेस कट कर लो, मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं, जितना हाँ अच्छा लगे शेप टाइप में कट करके, और उसको तवे पे हल्का सा घी कर लो। अगर नॉनस्टिक पैन है तो बहुत ही अच्छी बात है, बस थोड़ा सा 2-3 बूंद आपने घी लगा देना है और उसमें उसको बिल्कुल ब्राउन होने तक उसको ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद से हल्का काला नमक एंड काला मिर्च, जो काली मिर्च आती है, उसको ऊपर से मतलब उसमें से छिड़क करके और उसको तब खाइए आप चम्मच से या फिर स्टिक की मदद से। इतना टेस्टी लगता है अंशिका कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये ऐसा वाला पनीर।
1: यस।
0: और मुझे पनीर की सब्जी भी, तला हुआ पनीर की सब्जी मुझे ज्यादा पसंद है, कच्चा नहीं।
1: कच्चा नहीं। तो मैम ने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आप पनीर को टेस्टी बना के ले सकते हैं अपनी डाइट में, तो इसे जरूर लीजिए और यही चीजें खाइए, बाहर की चीजों से थोड़ा सा परहेज करिए।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, आएंगे इस सॉन्ग के उस पार आपको बताने के लिए कि क्या होना चाहिए इस बहुत ही
0: इस क्रेविंग से, किस तरीके से आप उसको शांत कर सकते हैं और उसका निवारण।
1: यस। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
3: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
2: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, जो कि अभी एक टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था अंशिका, उसका निवारण फिर मैं बताऊंगी।
3: वो टॉपिक हमारा ये था कि किस तरीके से जो प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं वो क्यों होती हैं, और क्या हमें प्रोटीन युक्त चीजें लेनी चाहिए ताकि हमारी क्रेविंग जो है वो भी शांत हो जाए और हमारी बॉडी को भी नुकसान ना।
2: एग्जैक्टली तो चलिए फटाफट पहले हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो बाहर के खाने से बचना चाहिए, जैसे कि चाट। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप उसको घर में बना करके खा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बाहर वाला स्वाद वो घर पे नहीं मिलता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक्चुअली घर में हम लोग सफाई से बनाते हैं, बाहर वो थोड़ा तो अपना मिला देते हैं ना कुछ ऐसा वाला। तो इस वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि सड़क किनारे जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो खुला हुआ खाना मतलब ऐसे रख देते हैं, और उसी में कई बार धूल मिट्टी ये वो हो जाती है, और इसी के कारण से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए बाहर की जो भी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें बाहर के स्ट्रीट फूड से तो बिल्कुल आपको अपने आप को बचाना चाहिए। दूसरा है कि घर पर तैयार आपको करना है, यानी अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है चटपटा खाने का तो आप अपने घर पर बनाएं, और अपने जैसे कहते हैं ना शुद्ध चीज़ वो आप घर पर खा सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि आप समय पर अपना खाना मतलब खाइए, सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है वो अनहेल्दी क्रेविंग आपको इसीलिए होती है क्योंकि जब आप समय पे नहीं खाते हैं, कई बार होता है ना अंशिका।
3: जी मैम, कहीं ना कहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि टाइम बहुत जरूरी होता है। हमारे डेली रूटीन में अगर हम कभी मैम टाइम से नहीं खाते हैं तो हमें कहीं गले में जलन, और कहीं फिर जैसे बेटाइम खाओ तो मन ही नहीं करता है खाना खाने का।
2: बिल्कुल,
3: तो जब
2: हाँ
3: उस टाइम हो सकता है तो ये कंडीशन तो थोड़ी और ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं संवेदनशील ज्यादा होती है।
2: एग्जैक्टली और इसके लिए ना कुछ ऐसे टिप्स हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आपने मतलब ये जो क्रेविंग हो रही है उठपटांग खाने की वो इसलिए होती है क्योंकि अगर आपने भरपेट नहीं खाया, और मैं इसके लिए मतलब मैं क्या बता दूं क्योंकि मुझे तो वो कंडीशन में मैंने कभी सफ़र नहीं किया है, बट मैंने देखा है अपने घरों में और अपने कुछ खास रिलेटिव में भी देखा है, तो उनसे बात होती है, वो लोग बताती हैं कि हम लोग जैसे एक बार थाली भरकर नहीं खाते हैं, तो मेरी दो भाभियाँ हैं, उनमें से भी जो बड़ी वाली भाभी है उनके साथ भी जब बच्चे हुए तो हमेशा से मैंने देखा था कि वो कभी एक बार बैठ के नहीं खाया उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि एक एक घंटे में डेढ़ डेढ़ घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाया ताकि बाहर के खाने की जो क्रेविंग होती है वो ना हो। सबसे अच्छा
3: छोटे छोटे बैच
2: में। हाँ, छोटे छोटे बैच में खाइए। आपने नाश्ता खाया तो आपने एक साथ बैठ करके दो ढाई तीन एक साथ बैठ करके परोठे नहीं खाने, एक खा लिया आपको मन कर रहा है, आप आधे घंटे के बाद एक घंटे के बाद आपने फिर खा लिया, ऐसे वाला आप रूटीन बना सकती हैं। साथ ही साथ में बता दूं कि संतुलित आहार आपको लेना है ताकि आपकी बॉडी में ऊर्जा बनी रहे, हाइड्रेट रहें, दिन भर में इतना पानी पी लेना है और नारियल पानी, ताकि आपकी जो प्यास है वो प्यास आपकी कभी भी मुंह ना सूखे। और आपके ऐसा कहा जाता है कि जब हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो साथ ही साथ में भूख मर जाती है, तो आपको अगर समय समय पर आप पानी पी रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आप पानी प्रचुर मात्रा में पी रहे हैं तो भूख भी आपको उसी हिसाब से लगेगी। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपने हेल्दी आपको जो भी अगर आपको लेना है कोई भी ऑप्शन लेना है तो आपको हेल्दी चुनना है। हेल्दी मतलब जो आपके घर पे बना हुआ हो, या अगर आप किसी ऐसी शॉप से मंगवा रहे हैं जहां आपको लगे कि हाँ ये हेल्दी हमको मिलेगा, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं।
3: राइट, हमेशा हेल्दी खाना चाहिए, अनहेल्दी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ें जितना हमें नुकसान पहुंचाती हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन और प्रोटीन को खींचती
2: है। और आजकल तो YouTube पे इतनी सारी चीज़ें क्या कहते हैं बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, यहाँ तक कि बताशे तक घर में बनते हैं। मतलब मैं क्या बता दूँ, मतलब मेरा मैं खुद इतना क्या कहते हैं बताशे वगैरह नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग घर पे बना लेंगे ना पानी और बताशे, तो आराम से घर में बैठ करके हम उसका मतलब उसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल हम लोग नहीं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि प्रेग्नेंट लेडी हैं तो वो उनके लिए बनाए कौन भाई? घर के और मेंबर्स अगर होंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो उनसे कहा जाए कि अब आप प्रेग्नेंट भी हैं, अब आप अपने लिए घर पे बताशे बनाओ, तो उसका एक ऑप्शन और हो सकता है कि आपने मार्केट से बताशे मंगवा लेने हैं सूखे वाले, पानी और मटर आपने घर में बना लेना है, और फिर आपने अपने आप से वो चाट वाला जो ठेला होता है ना जो भैया जी बताशे खिलाते वैसा बन जाना है, और खुद ही आपको भी खाना है, अपने हस्बैंड को खिलाइए, जो आपके बाकी मेंबर्स हैं आप उन्हें भी खिलाइए। ये अच्छी टेक्निक थी कि नहीं थी?
3: बहुत अच्छी टेक्निक थी, और ये बहुत अच्छी टेक्निक सुन करके ना मेरा चाट खाने का मन हो गया।
2: तो ठीक है, तुम बताशे ले आना और पानी और मटर जो है वो भी घर पे बना लेना, कम पैसे में ज्यादा बन के तैयार हो जाएगा, खुद भी खाओ मोहल्ले में भी खाओ बटो।
3: बिल्कुल मैम, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी जो थोड़ी सी तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज है, तो वो बिल्कुल बेहतर हो जाए फिर उसके बाद मैं ये कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी खा लिया तो फिर हो सकता है कि और प्रॉब्लम हो जाए।
2: जी सचिन शुक्ला एंड प्रीति जी एंड आशु जी आ गई हैं, तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। एंड महेंद्र जी, नागेश्वर जी, और मुझे कोई नहीं दिख रहा है अभी, अनिल वर्मा जी और नाजिया। तो भाई सभी लिसनर्स आ जाइए फटाफट, क्योंकि आपका पसंदीदा शो अब बिल्कुल मिड लाइन पे आ चुका है, तो आइए चलते हैं।
3: तो चलिए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है हमारे आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को।
4: नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि महिलाएं सबसे ज्यादा क्या करती हैं? सोचिए,
3: बताओ
4: क्या करती हैं सबसे ज्यादा?
3: शॉपिंग?
4: नहीं।
3: सोती हैं? खाती हैं?
4: नहीं।
3: बोलती हैं?
4: नहीं।
3: इसके अलावा क्या करती हैं महिलाएं?
4: सबसे ज्यादा सोचती हैं।
3: सोचती हैं, अच्छा।
4: ये काम है जो खाने, सोने और शॉपिंग से भी आजकल स्पेशली बहुत ज्यादा करती है। मतलब
3: हाँ, मैं भी बहुत सोचती हूँ।
4: हाँ। जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि क्यों राई का पहाड़ बना है?
3: हाँ।
4: लेकिन हमारी सोच में राई का पहाड़ हमेशा बन जाता है। मतलब छोटी से छोटी चीज भी अगर होना तो उस पे हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई पुरानी कुर्ती रखी हुई थी और बहुत टाइम बाद निकाल के आपने ट्राई की और जरा सी टाइट हो गई या जरा सी मान लीजिए लूज हो गई, तो हम तुरंत सोचते हैं अगर टाइट हो गई तो पहला सवाल आएगा लगता है मेरा वजन बढ़ गया। अगर ढीली मतलब हल्की लूज हो जाएगी तो आएगा हाँ लगता है मैं पतली हो।
3: हाँ मेरे साथ भी यही है। और पता है मैं पुराने पुराने कपड़े निकाल के पहनने लगी हूँ आजकल।
4: yes,
3: पर मुझे बड़ी खुशी होती है जब फिट होते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ मतलब मेरा वेट अभी ठीक है, ठीक है, मैं बहुत मोटी नहीं हुई हूँ, ठीक है।
4: यही होती है ओवरथिंकिंग, ये बिन चीजों वाली बातों पे आप।
3: और सबसे ज्यादा अंशिका मेरी इस बात का निवारण, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है, सोचा है, ऐसा होता है कि कुछ भी अगर बॉडी में सेंसेशन हुआ, एक मामूली सी एसिडिटी भी हुई ना, तो लगता है कि यार मुझे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, और उस सोच में पूरा दिन बर्बाद चला जाता है।
4: यस मैम। और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीजों को लेकर हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग अपनी स्किन और अपने फेस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं।
3: Exactly.
4: कि एक दाना भी निकला तो पूरा घर सर पे उठा लिया।
3: हाँ।
4: कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने कुछ चीजों को लेकर हम सेंसिटिव होते हैं। और जिन्हें लेकर आप सेंसिटिव हैं उन्हीं को लेकर के आपको ओवरथिंकिंग होगी।
3: बिल्कुल।
4: से अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर सेंसिटिव नहीं हूं, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर मुझे कोई मैं कुर्ती निकालूंगी और मुझे लूज हो जाएगी तो मुझे बहुत मैं सोचने लगूंगी कि अरे मैं दुबली हो गई हूँ, अरे मैं मोटी हो गई। नहीं, मेरे अंदर वो नहीं है। मेरी तबीयत खराब भी रहेगी तो मैं दवाई खाऊंगी, रेस्ट करूंगी और अपना काम करती रहूंगी। मुझे इतना कोई उससे खास वो नहीं पड़ता। हाँ कुछ बहुत सीरियस हो जाता है या कुछ अचानक हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी डर जाती हूँ कि ऐसा तो नहीं मुझे कुछ सीरियस हो गया।
3: और पता है मैं तो बीमार क्यों पड़ती हूँ, मेरे साथ सिर्फ एक ही कारण है, सोच से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे लगता है कि अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है, और बस वो होने लगता है बॉडी में।
4: जी मैम,
3: तो इसीलिए कहते हैं नेगेटिव जो सोचते हैं ना लोग, उसको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए।
4: राइट कई बार ये हमारी लाइफ में कुछ लोगों को लेकर के भी होता है, जैसे जिनके साथ बहुत सारी नेगेटिव यादें कभी पहले जुड़ी हुई हों आपकी, उनके बारे में आप जब भी सोचेंगे आप लिख कर रख लीजिए, कभी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप पहले उनके साथ नेगेटिव काफी कुछ हो चुका है आपका, तो हमेशा नेगेटिव ही उनके बारे में आता है। ऐसे लोगों के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि सबसे पहले तो मेंटली आपको स्ट्रेस होता है, दिमाग पे दबाव पड़ता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि मेरे फोरहेड में पेन होता है और बहुत जबरदस्त होता है। उसका सबसे बड़ा
3: जबरदस्त नहीं जबरदस्त
4: जबरदस्त सॉरी तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा सोचते हैं, और फिर जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो धीमी हो जाती है गति, जिसकी वजह से फोरहेड में पेन होता है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए मैम एक बहुत अच्छी सी लाइन बोलती है, वो वही आपको करना है,
3: गो टू हेल।
4: यस
3: एग्जैक्टली, ऐसे लोगों को कहना चाहिए गो टू हेल, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव थॉट्स को भी बोलना चाहिए गो टू हेल।
4: और उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ एक टेक्निक बहुत काम आती है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई हुई है ये टेक्निक, आज दोबारा बता देती हूँ। एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा कोई भी आपके पास पेन हो वो उठाइए, अच्छा सा कोई कागज हो या कोई आपके पास रफ ही पड़ी हो वो उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, और तब तक लिखते रहिए जब तक आपको ये ना लगे कि आपका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है। पूरी तरह दिमाग के खाली होने का मतलब होता है ये नहीं है कि मतलब ये होता है कि हमारे मन में सारे जितने नेगेटिव पॉइंट्स, जो भी गुस्सा था, जो भी था वो सब निकल गया है, या वो थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे थे वो आपने पेपर पे लिख दिए। और बहुत तेज तेज लिखना चाहिए, जब हमारा माइंड जितनी तेजी से चले अगर हमारा हाथ भी उतनी तेजी से चलता है तो वो सारी नेगेटिविटी हमारे माइंड से निकल जाती है। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन होता है, आपको उन पेजेस को ना संभाल के रखना है और ना उन्हें दोबारा पढ़ना है,
3: उसको तुरंत थ्रो आउट कर देना है डस्टबिन।
4: राइट, फाड़ के फेंकिएगा। ये भी होता है कि ऐसे नहीं कि हम बस ऐसे गए और हमने उसको वैसे ही डाल दिए, कभी ना कभी शायद हो सकता है आपके सामने आ जाए, फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंकना है,
3: टुकड़े टुकड़े कर देना है,
4: टुकड़े टुकड़े कर
3: देना, सबसे से जला देना है।
4: नहीं,
3: सबसे ऑप्शन पहला जला देना है,
4: जला भी सकते
3: हाँ, क्योंकि अरे तो उसकी राख क्या, उसको हम लोग सर पे लगाएंगे क्या?
4: नहीं,
3: ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे कहीं क्या हो जाएगा। सबसे अच्छा तो उन पे आप लिखें और आराम से उन कागजों को जला दें।
4: यस, इन शॉर्ट कि वो दोबारा हमारे सामने नहीं होने चाहिए,
3: हमारे जिंदगी में ना आए।
4: बिल्कुल, क्योंकि इससे दो चीजें होती हैं, पहला होगा आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, और दूसरा होगा कि जो बातें हम पेज पे लिख देते हैं उन्हें हमारा दिमाग सेफ मान लेता है।
3: बिल्कुल,
4: इसलिए वो पॉइंट्स, वो थॉट्स हमें कभी दोबारा नहीं आते और आपको आगे लाइफ को स्पेंड करने में मदद मिलती है। क्योंकि कई बार होता है ना कि ऐसी कई सारी चीजें हो जाती हैं जो हमें बहुत स्ट्रेस देती हैं, और अगर वो लेके आप चलेंगे तो फिर तो मुझे लगता है एक दिन भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये टेक्निक जरूर यूज करिए। दूसरा पॉइंट आता है, ये थोड़ा अच्छा वाला पॉइंट है, ये करने में आपको मजा भी आएगा।
3: क्या
4: क्या ये बहुत मस्ती वाली चीज होती है,
3: जैसे
4: आपको करना ही है कि कई बार आपने देखा होगा ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो पिलो फाइट करते हैं।
3: ओके,
4: जब कभी होते हैं,
3: अभी भी करते हैं हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग क्या, हम लोगों के दिल में भी बच्चा है, ऐसी बात नहीं है।
4: जी मैम, तो अगर कभी जैसे हम कहते हैं ना नेगेटिविटी निकलेगी कहाँ, तो किसी किसी को आपने देखा होगा कि जो जब हम मसाला, अब तो मिक्सी में पीसा जाता है लेकिन पहले जब सिल पे पीसे जाते थे, सिलबट्टे पे, तो क्या होता था कि मम्मी जब आप पे बहुत गुस्सा होती थी तो घर में जितने मसाले होते थे सारे पीस लेती थी, और वो सारा गुस्सा सिल पे और उस पे सिलबट्टे पे निकल जाता था। ठीक वैसा ही हमारा पिलो फाइट भी होती है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूसरा पिलो साइड में या दीवार पे या कहीं भी ऐसे कॉर्नर पे रख देना है कि वो गिरे ना, और उस पे मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है।
3: ये बकवास नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग आपस में करते हैं पिलो फाइट। मतलब एक जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, हम कहते हैं एक तुम पिलो ले लो, एक मैं ले लेती हूँ, और बस आपस में फिर मारपीट करके वो फ्रस्ट्रेशन पूरी निकल जाती है। ऐसा नहीं दीवार पे नहीं मारना है और किसी उस पे नहीं मारना है, और उस बच्चे को थोड़े बताने हैं कि हम पिलो फाइट क्यों कर रहे हैं, कि मतलब right. किस कारण से कर रहे हैं।
4: ये दो ऐसे
3: दोनों ऑप्शंस हैं, आप जो भी अपनाना चाहें।
4: यस, ये दो ऐसे हैं जिनसे आपकी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी और 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपको एकदम हल्का लगेगा। ऐसे लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ये करती हूँ पेज वाला तो मैं
3: जरूर। और या तो एक और फनी कर सकते हैं, आप आटा गूंदने जाएं तुरंत किचन में और उसको पटक पटक के गूंदे जितनी भी आपको, या तो अदरक कूटिए, अदरक इतनी कूटिए कि उसको कूट कूट के उसका भरता बना दीजिए, अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दीजिए
4: और उस इंसान के बारे में जरूर सोचिए जिसका भरता
3: बनाना आप कूट रहे हैं।
4: या आटा, पता है मुझे, मतलब एक इंसान है मेरी लाइफ में जिसपे मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव है भी, तो जब मुझे कभी उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है तो मैं आटा जब गूंथती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसे गूंद रही हूँ और फिर मेरा आटा अच्छा, उस दिन बहुत मुलायम रोटी अभी बनती है तो मम्मी मेरी कभी कभी कहती है क्या बात है आज तुमने बड़ी मुलायम रोटी बनाई है, तो मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी कुछ राज
3: है, मैंने किसी
4: कुछ राज है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी,
3: मैंने कूटा है किसी को,
4: आज कुछ अच्छा हो गया इसलिए अच्छी बनी। तो ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि फनी भी है और फायदेमंद भी।
3: जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे अभी पता नहीं क्या आपस की बातें आप लोग क्या क्या कर देते हैं, महेंद्र जी एंड नाजिया जी, मतलब वन मोर मैसेज ना तो मैं सच्ची में आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगी, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज्यादा फालतू के मैसेजेस आप लोग आपस में करने लगते हैं। चलिए
4: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की

0: धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: दोस्तों आ गई आपकी आज समता। तो आइए फटाफट चलते हैं एक छोटी सी मॉरल स्टोरी, मतलब एक दो लाइन की जो मॉरल निकलता है हम जल्द से सुन लेते हैं।
4: तो आज हमारी दो लाइन की स्टोरी जो है मॉरल स्टोरी वो ये है कि आज के दिन हम आपको बताने वाले हैं अवनीश चतुर्वेदी की स्टोरी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से निकल करके सीधा भारतीय वायुसेना यानी कि IAF में वो शामिल हुई और आज वो करती हैं हवा से बातें यानी कि उड़ाती हैं भारतीय वायुसेना का विमान।
3: वाह।
4: तो आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज महिला
3: मतलब जो महिला सशक्तिकरण पे कि नारी कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है।
4: बिल्कुल, शक्ति का नाम ही नारी है और ये कहीं ना कहीं अवनी ने साबित भी किया है। सो आज इन्हीं की बातों के साथ और कुछ बहुत प्यारी प्यारी यादों के साथ मुझे लगता है कि हमारा समय भी हो गया है।
3: हाँ, आज तो पता ही नहीं चला ना, बल्कि हम लोगों ने सॉन्ग्स भी ज्यादा नहीं चलाए थे। बट चलो कोई नहीं, हम लेते हैं आपसे अब विदा। कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए आप हमारे शोज को सुनते रहें, बाकी शोज को भी सुनते रहें और हम एक साथ करते हैं आज दोनों एक ही साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाटा, टेक केयर, बाय बाय।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हां जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार आदाब। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अपनी आर्जुनति मौजूद हैं आप सभी के साथ, और घड़ी में वक्त हो चला है 3:02 बाय स्टूडियो क्लॉक, यानी कि वक्त है आपकी अपने फरमाइशों के कार्यक्रम का, यानी कि कॉल ट्यून गोंडा का, जिसमें आप अपनी फरमाइशें हमें भेजते हैं कॉल करके, और हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। तो लगातार अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, क्योंकि आज का कॉल ट्यून गोंडा होने वाला है आपके लिए बेहद स्पेशल, क्योंकि आपकी डिमांड होती है, आपके डेडिकेटेड मैसेजेस होते हैं, आपके डेडिकेटेड सॉन्ग्स होते हैं किसी स्पेशल वन के लिए। तो अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपने मैसेजेस भेजते रहिए, और आइए चलते हैं हमारे पहले गाने की तरफ, जो ऑफकोर्स हमने अपनी रेनू जी से वादा किया था कि हम पूछ के बताते हैं साजना क्या करते थे। तो सुनने में आया है कि साजना आपको याद करते थे। फिलहाल आप इंजॉय करते रहिए रेनू तिवारी जी की फरमाइश, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहकर। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए आप अपने मैसेजेस आप अपने चैट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, प्लस अपनी फरमाइशें लगातार भेजते रहिए।

हाँ जी, तो भैया मुझे जवाब मिल गया है कि क्या करते थे साजना, तुमको ही मांगा करते थे दुआओं में, इबादत में, रब से, खुदा से, और क्या चाहिए। फिलहाल के लिए आप सुन रहे हैं रेनु तिवारी जी की फरमाइश, आपकी अपने कॉल ट्यून गोंडा में, क्या करते थे साजना, लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से, अनुराधा पॉटवाल मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आनंद का संगीत। फिलहाल आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स में और उसके बाद हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो हमारे साथ जो जुड़ गए हैं वो हैं सबलू जी, जिनका स्वागत कर लेते हैं। अरविंद फ्रॉम मनकापुर जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं, हेलो आरजे मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, चंगी, मस्त, बिंदास, झक्कास, आप बताइए आप कैसे हैं? एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस आप सभी को, हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। और मैं राखी लेकर आ रही हूँ आपके घर, तो मुझे अपना एड्रेस बताइए और देखिए तोहफे तैयार रखिएगा, राखी हम लेकर आते हैं। एंड इसके बाद लिखा है, खुशियों भरी इस दुनिया में सबसे अनमोल तोहफा है बहन, जिसके होने से हर गम आधा, हर खुशी दुगनी हो जाती है। क्या बात है, रक्षाबंधन आते ही अपने बहनों के लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें याद आती हैं ना। और वैसे जब रक्षाबंधन नहीं होता है तो यही भाई बहन घर पे कैसे लड़ते हैं। फिलहाल मेरी मम्मी तो कहती है, तुम लोग तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो, ऐसे कुत्ते बिल्ली भी नहीं लड़ते होंगे, तुम लोग को तो आधी रात में ही महाभारत सूझती है, रात के 2 बज चुके हैं, तुम लोग की महाभारत ही शांत नहीं हो रही है। और वैसे जैसे रक्षाबंधन आता है, हमारे अंदर इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी कद्र एक दूसरे के लिए हो जाती है कि ओए होए होए, हमसे ज़्यादा हमारे भाई को कोई चाह ही नहीं सकता और ना हमारे भाई से ज़्यादा हमको मोहब्बत दे सकता है। तो ये जो खट्टा मीठा रिश्ता है ना भाई बहनों का, ये इतना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा होता है कि भाई जो इसको मिस कर रहे हैं ना, ये जो भी मेरी बातें सुन रहे होंगे फिलहाल यहाँ बैठकर या फिर कहीं और किसी शहर में बैठे और उनकी बहनें कहीं और हैं, तो उन्हें ज़रूर याद आ रहा होगा कि भाई बचपन में किस तरह से बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे से लड़ाई की है। और अब वो स्पेशल वाले जो मोमेंट्स हैं जब लगता था ये बहन नहीं, ये भाई नहीं, मेरा जानी दुश्मन है, इसको तो आज ख़त्म कर ही देंगे, यहाँ पर मम्मी पीछे से डंडा लेकर आ रही है कि सुधर जाओ तुम दोनों, और हम कहते हैं कि नहीं, सुधरने को तैयार नहीं, आप मुझे ही क्यों मारते हो, आप इसको भी तो डांटो, इसने भी तो कुछ किया है, आप अपने इसी से प्यार करते रहते हो। और ताने तो बेचारी हर मम्मी को सुनना पड़ता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आप बड़े वाले को ही प्यार करते हो, आप छोटे वाले को ही प्यार करते हो। मम्मी यही साबित करने में पागल हो चुकी होती है कि हम मोहब्बत की सबसे ज्यादा किससे कर रहे होते हैं। फिलहाल ऐसी खट्टी मीठी यादें बनाते रहिए क्योंकि रक्षाबंधन वापस आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ। आई होप, आई विश कि आपका ये रक्षाबंधन बहुत प्यारा गुजरे। फिलहाल इसी के साथ आइए चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। और अगला मैसेज जो आया वो हमारे नाजिया अंसारी जी का आया, जो लिख रहे हैं, गुड इवनिंग रॉकिंग उलदी मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड आपको कैसे पता था कि हम रॉकिंग शॉकिंग कर रहे होंगे इसके पीछे अभी भी है? आपने कहीं कैमरा तो नहीं लगाया? हालांकि ऊपर वाला सब देखता है बट इतनी जल्दी देख ले क्या, ये नहीं पता था। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा नाम दिया। इसके बाद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, नमस्कार उन्नति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, नमस्कार, कैसे हैं आप? और इसके बाद आपकी हंसी ठिठोली चालू है। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ क्योंकि अगला सॉन्ग हमारे पास आया है ब्रज रेडियो मथुरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति जी की तरफ से। तो आइए इंजॉय करते हैं बादल पे चल के। आप इसे बादल पे चल के नहीं जाऊँगी, बादल धुआं धुआं होता है, मैं चलूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, इसीलिए ऐसा करते हैं बादल पे पाँव हैं और इमेजिन कर लेते हैं, जस्ट अज्यूम कीजिए कि आप बादल पे चल सकते हैं। हमने कोशिश की थी एक बार चलने की, बादल के मैं पार हो गई, बादल मेरे नीचे आ गया। और उस दिन मैंने सोचा था कि किस तरह से लोग कहते हैं कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोना, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

शारदा प्रसाद प्रजापति की फरमाइश थी हमारे पास ब्रज रेडियो मथुरा से, और वो सुनना चाह रहे थे बादल पे चल के। आज ऑफ कोर्स हमने अभी तक प्ले किया लता जी की आवाज़, सुरेश वाडकर की आवाज़, शिव हरि का म्यूज़िक और निदा फाजली साहब के लिखे गए प्यारे प्यारे से बोला। आपने इंजॉय किया है बहुत ही खूबसूरत गाना, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सॉन्ग की तरफ। आज आर्ट बॉक्स में हमारे दिलों को टूटना यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है आज दिल जुड़ेगा नहीं सबका टूटेगा। कॉलर टून गोंडा में फिलहाल हमारे लिसनर्स इंजॉय करते रहिए, और जिनके मैसेजेस जिनके फरमाइश हम तक नहीं आई है वो इंतजार ना करो बाबूजान, क्योंकि 3 से 4 एक ही घंटा होता है, एक घंटे में ही आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, इसके बाद हम कर देते हैं आपसे चला बाय बाय। तो इंतजार नॉट, बिकॉज यहाँ पर सब्र का फल एक्चुअल में गाने होते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन विद योर आज उन्नति। एंड ऑफ कोर्स ये फरमाइश है हमारी सबलू जी की, आइए एंजॉय करते हैं।

बबलू जी की फरमाइश आप एंजॉय कर रहे थे जब तुम आ जाते हो सामने। सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आपने एंजॉय किया इस बेहतरीन से नगमे को, और वक्त है अगली फरमाइश को ट्यून करने का, जो किसी और की नहीं, हमारे बड़े ही चहीते लिसनर सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश है। और हम आपको बता दें कि महेंद्र जी लिख रहे ओ सॉन्ग ब्लास्ट यानी कि गाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया है, एंड वैसे गाना अच्छा चल रहा है। थैंक यू नती मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसका क्रेडिट मुझे नहीं, इसका क्रेडिट जाता है हमारे सबलू जी को। तो आइए एंजॉय करते हैं सुनील जी की फरमाइश, मिलते हैं अगले गाने पर। अलका जी और उदित की आवाज में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि ये है आपका अपना क्वालिटी उन गोंडा।

हां जी, एंजॉय कर रहे हैं आप अलका जी और उदय जी की आवाज में जिंदगी बन गए हो तुम, इतना खूबसूरत गाना। और ऑफ कोर्स बोल लिखे हैं इसके हमारे समीर साहब ने, नदीम सैफी साहब ने इसके म्यूजिक दिया है और श्रवण राठौर ने इसको संगीत से सजाया है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगले सॉन्ग को ट्यून करने। और अगला सॉन्ग कैन यू इमेजिन क्या हो सकता है? नहीं, आप नहीं कर सकते इमेजिन, क्योंकि अगला गाना है बहुत ही तड़कता भड़कता। रईस साहब ने अपनी ही फिल्म से फरमाइश कर दी है गाने की, लैला में लैला। तो आइए इंजॉय करते हैं और मिलते हैं इस गाने के उस पार आपकी अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

क्या बात है, एक थड़कता भड़कता गाना आपने अभी अभी एंजॉय किया है। रईस साहब की फरमाइश और कमाल की बात है, मूवी का नाम भी रईस ही है। एंड ऑफ कोर्स जावेद अख्तर के इसमें कुछ लिरिक्स हैं, इंदीवर ने इसके कंप्लीट लिरिक्स लिखे हैं, यानी कि इंदीवर साहब और जावेद अख्तर ने मिलकर इस गाने को बोल दिए हुए हैं। और पावनी पांडे की आवाज़ में आपने इस एनर्जेटिक हाई बीट गाने को एंजॉय किया है और ऑफ कोर्स आपको आई होप मज़ा तो ज़रूर आया होगा। इसके बाद है उन्नति मैम, हमारा गाना बजा दो। अरे बजा दी थे, काहे चिंता कर रहे हो, जब हम हैं तो काहे बात का गम है आपको इतना ज्यादा है। फिलहाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑप्टिकल गोंडा ऑफ कोर्स, लिखा है रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आने लगी हैं और हम भी उन्हीं में से एक थे जो स्कूल लाइफ में पहले से एक हफ्ते पहले से राखी लेके घूम रहे होते थे कि कोई मिले राखी बांधे और भैया से गिफ्ट ले जाए। वो अलग बात है कि भैया लोग भाग जाते थे ये सोचकर कि तोहफा देना पड़ेगा, मैम पकड़ के लेके आती चलो राखी बंधवाओ और बहन को तोहफा ला के दो। और I was like, wow, ma'am, you are so sweet. And इसके बाद लिखा है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा की ओर से, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, भाई बहन के अटूट प्रेम विश्वास और स्नेह का ये पवित्र रिश्ता हमारा यूं ही बना रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हर भाई बहन के जीवन में खुशियां समृद्धि प्यार सदैव बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और ये शुभकामनाएं हमने सभी तक पहुँचा दी हैं। इसके बाद मैसेज आया है हमारा गाना बजा दियो, बिल्कुल बजा देंगे तनिक इंतज़ार तो करो। एंड गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। मिश्रा जी कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं। और इसके बाद लगातार आपके अपने चैट्स, आपकी अपनी मैसेजेस चालू हैं, ऐसे ही बातचीत करते रहिए। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं समरीन जी की फरमाइश सांसों की माला पे। बिल्कुल एंजॉय करिए, कॉल ट्यून गोना, अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि ये है आपके अपने डिमांडेड प्रोग्राम, डिमांडेड सॉन्ग वाला प्रोग्राम, डेडिकेटेड मैसेजेस वाला प्रोग्राम विद योर आर्जे उन्नति।

और भैया ये गाना था हमारी समरीन जी का। भाई ये चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि ये है डेडिकेटेड बहुत सारे लोगों को। भगवान सिंह जी ने हमें अपना मैसेज भेज दिया है और गाने की फरमाइश आई है, इसे समझो ना रेशम का डोर भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तो आइए एंजॉय करें। और ये डेडिकेट किया गया है अनु पांडे जी को, राकेश जी को, तनुश्री बिटिया को और पूनम दीदी को। तो आइए भैया आप सभी को डेडिकेटेड इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय कीजिए, जो कि आपके अपने भगवान सिंह जी ने किया है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो अगेन एक डेडिकेटेड सॉन्ग है, लेकिन किसके लिए वो आपको हम इस गाने के बाद बताएंगे।

और भाई इस गाने को यहीं पे रोकना पड़ेगा, भाई बहनों से माफी चाहेंगे क्योंकि अगली फरमाइश की तरफ जो बढ़ना है हमें। नाजिया अंसारी जी की फरमाइश आ गई है हमारे पास और वो सुनना चाहती हैं सनी पाजी वाला गाना, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी या रहेगा, क्योंकि इस वक्त हो चुका है रहेगा, बिकॉज हमारी नाजिया जी ने इस गाने को डेडिकेट किया है अरविंद जी को। तो मैं रहेगा तो नहीं बोलूंगी, मैं रहेगा बोलूंगी। फिलहाल इंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश को लेकर के, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगली फरमाइश राजू फरमानी जी की होने वाली है एंड इसके बाद तरुश्री फ्रॉम महाराष्ट्र, और उन्होंने डेडिकेटेड किए हैं बहुत सारे लोगों को। लगता है आज मेरे पास रक्षाबंधन की डेडिकेशन तो ज्यादा ही आ चुकी है और इन्हीं मैसेजेस को लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते रहिए।

और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। हमारे राजू सलवानी जी का गाना आ चुका है, चौधरी का चांद हो, और एंजॉय करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि भाई तनुश्री की है, जानवी जी की है, अविनाश जी की है, एंड महेंद्र जी की है, सोनम जी की है, राकेश जी की है। राकेश जी ने भैया सभी लिसनर को डेडिकेट किया है एक सॉन्ग, बताते हैं लेकिन इस गाने के उस पार।

जीत। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, क्योंकि वक्त होता जा रहा है धीरे धीरे आपसे विदा लेने का। तो अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है तनुश्री की महाराष्ट्र से, और डेडिकेट किया है इन्होंने अविनाश जी को, राकेश जी को, अनु पांडे को और आप सभी लिसनर्स को। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी माया है। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अरविंद जी रोइएगा नहीं, अगर वक्त रहेगा तो आपका गाना जरूर से प्ले हो जाएगा।

अंजी, तो आपने एंजॉय किया तनुश्री जी की फरमाइश महाराष्ट्र से, और वक्त है अगली फरमाइश को ट्यून करने का, जो हमारे अविनाश जी का है। कहाँ गए ममता भरे ये दिन, भैया कहीं नहीं गए हैं, यहीं हैं। वो अलग बात है कि हमारी मम्मी का नजरिया बदल गया है ममता देने का। पहले मेरी मम्मी मुझे डांट के ममता दिया करती थी, और अब मुझे फटकार की ममता दिया करती है। तो तरीका बदला है, ममता वही है, मतलब रिश्ते वही, सोच नहीं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड आप भैंस चरा कर आइए, भैंस को चारा डाल कर आइए महेंद्र जी, तब तक हम आपका गाना प्ले करते हैं।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, जो कि महेंद्र जी की है। महेंद्र जी सुनना चाहते हैं तेरा पल्लू सरका जाए, और ऑफ कोर्स ये गाना फिल्माया गया है आपके अपने पसंदीदा एक्टर सलमान खान और करिश्मा कपूर के ऊपर। 90s का बहुत ही जबरदस्त गाना दुल्हन हम लेकर जाएंगे। एंजॉय करते रहिए अलका जी और सोनू जी की आवाज में।

हाँ जी, तो भैया ये थे हमारी महेंद्र जी की फरमाइश, और आइए चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारी सोनम मौर्य जी की आई है। तो थोड़ी देर और ठहर जाओ। अगर मैं थोड़ी देर और ठहर जाऊंगी तो फिर अगला प्रोग्राम कौन प्ले करेगा? एंड हमारे साथ मुस्तफा जी जुड़ गए हैं फ्रॉम सऊदी, लिख रहे हैं देर से आए हैं, हाजिरी लगा दीजिएगा। बिल्कुल लगा देंगे आपकी हाजिरी, आप देर से आए, दुरुस्त आए, यही काफी है। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं सोनम मौर्य जी की फरमाइश, तू थोड़ी देर और ठहर जा। फिलहाल ये गाना हमने बीच में ही रोक दिया। सोनम मौर्य जी सोच रही होंगी कि मैंने कहा था ठहरने को और बता ही दिया। बहुत ही प्यारा सा गाना था, फरहान सईद साहब की आवाज और साथ में श्रेया जी की आवाज। फरहान सईद साहब ने ही इसके बोल भी लिखे हैं, म्यूजिक दिया है, और कुमार साहब ने इसके बोल लिखे हैं। लाला ये जल्दी हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। राकेश जी जो सुन रहे हैं मैं शिमला से, और उन्होंने फरमाइश की है रक्षाबंधन पर कोई स्पेशल गाना। मिश्रा जी की तरफ से भी आया है राकेश स्पेशल सॉन्ग, तो क्यों ना अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपके रक्षाबंधन को थोड़ा और खास बना दें। रक्षाबंधन को हम सही इंजॉय करते रहिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में धागों से बांधा। और इसके बाद मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश लेकर के, जो कि आप ही की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं।

आइए चलते हैं हमारी मुमताज अंसारी जी की फरमाइश की ओर, और इसको सुनने के बाद हम चलेंगे हमारी आखिरी फरमाइश और हमारी अरविंद जी की है, जो हमें अभी अभी मिल चुकी है, किसी कंफ्यूजन की वजह से हम नहीं जान पाए थे। एंड ऑफ कोर्स जानवी जी, आपका सॉन्ग प्ले हो चुका है, सो एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुमताज अंसारी जी की फरमाइश मुझे तुमसे।

नहीं, पिक्चर की टिकट ना मंगवाएं क्योंकि वक्त हो गया है बाप से विदा लेने का। तो आखिरी फरमाइश के साथ जो कि हमारी अरविंद जी की है, आइए उसको प्ले कर देते हैं। बंधन का टाइटल सॉन्ग है, आप एंजॉय कर रहे हैं और इसी गाने के साथ अब चाहूंगी आपसे इजाजत। ये गाना डेडिकेटेड है आप सभी को, रक्षाबंधन स्पेशल सॉन्ग, जिन्होंने अभी आज हमें अपनी फरमाइशें नहीं भेजी हैं, राहुल जी एंड मुस्तफ़ा जी जो बहुत लेट आए थे जिसकी वजह से उनकी फरमाइश हम तक नहीं आई। तो ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड है, सभी लिसनर्स को जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, एप्लीकेशन से सुन रहे हैं या हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से। इसी के साथ अब चाहूंगी आपसे इजाज़त, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद राजुनति और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस 89.6 FM, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। अगला कार्यक्रम है आपका ज्ञानस्थली बीट, सुनना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट टाइम।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891414 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9216 9876 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

Yeah.

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शाम का शो शुरू हो गया है, हाथ में आपके ऑफकोर्स चाय की प्याली है, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसमें गोंडा की पर्सनैलिटीज आती हैं। जी हाँ, गोधूली। गोधूली में आज जिन मेहमान को हमने बुलाया है, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है, बजाहिर है हम उनको पहले से भी अच्छे से जानते हैं, और गोंडा में ना जाने कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनसे पढ़ाई की है, एंड ऑफकोर्स आज कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है गोंडा का। जी हाँ, आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं कॉमर्स के थॉमसन इंटर कॉलेज में। सर, सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू अदनान जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
1: थैंक यू सो मच टू यू। एंड ऑफकोर्स आपने जैसा कि नाम सुना है, हाँ वही कॉमर्स वाले डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, जिनके आपने बहुत सारे बोर्ड्स देखे हैं, और ऑफ कोर्स काफी सारे आप भीड़ भी देखते थे जब सर कोचिंग पढ़ाया करते थे। काफी बड़ा नाम है सर का। तो आइए सबसे पहले तो आपके बारे में जाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट हैं आज, और आज हम उन पहलुओं पे भी नजर डालेंगे जो शायद ही आपको नहीं पता होगा। आपको इतना तो पता है कि भाई सर जो पढ़ाते हैं कॉमर्स में, वो हमेशा आपको याद रहता है, और एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। तो सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दें।
2: मैं मूल रूप से सिद्धार्थनगर जिले के हिटमा तहसील के सेमरी गांव का रहने वाला हूं। पिताजी पढ़ाई को लेकर के कि हम लोगों की अच्छी शिक्षा हो सके, इसके लिए जब हम लोग क्लास 8 तक की जो पढ़ाई रही वो सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर हिटमा जनपद सिद्धार्थनगर में हुई। उसके बाद की शिक्षा के लिए वो गोंडा लेकर हम लोगों को चले आए। फिर 10th हमने मारवा इंटर कॉलेज से किया, 12th थॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा से किया, बीकॉम और एमकॉम दोनों LBSPG कॉलेज से किया। उसके बाद कॉमर्स में ही डॉक्टरेट की डिग्री 2015 में मिली मुझे। UGC नेट क्वालिफाई किया, और करंट टाइम में 1 दिसंबर 2020 से थॉमसन इंटर कॉलेज में एज अ असिस्टेंट टीचर कॉमर्स का ज्वाइन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में वो दौर कोरोना का था, और 2020 में वैकेंसीज आई थी यूपी गवर्नमेंट की TGT और PGT की।
1: जी,
2: उस दौर में एक आपदा था ही, ये सच है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लोग पैनिक थे, सारी ये प्रॉब्लम्स थी। लेकिन कहते हैं कि आपदा को जो अवसर में बदलता है वो वाकई में कहीं ना कहीं अपने नाम को बहुत आगे ले जाता है, और अपने अपनों के लिए भी बहुत कुछ करता है।
1: बेशक,
2: उस दौर में एक तो मैं जरूर कहूँगा कि मेरे लिए मेरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है, और स्पेशली मेरे छोटे भाई सुमित श्रीवास्तव जी का, जिनका मैं हमेशा आभारी रहता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक अचीवमेंट्स में मतलब उनका पूरा पूरा साथ रहा। चाहे वो छोटे जरूर हैं एज में, बट गाइडेड जिस तरह से वो करते हैं, वो शायद कोई बड़ा वैसे गाइड करेगा मुझे।
1: ओके,
2: तो मतलब पापा मम्मी माय लाइफ पार्टनर हर किसी का, सिस्टर्स का, सबका सपोर्ट बहुत रहा। तो उस टाइम पे ये हुआ कि कोचिंग मैं 2010 से 2020 तक पढ़ाता रहा, और जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ा नाम था, धीरे धीरे हम आपसे बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट से हम अटैच इतना हुए, और उस जर्नी को 10 ईयर्स की जर्नी कैसे सक्सेसफुल हम लोगों ने बिताई।
1: बेशक,
2: लेकिन 2020 में जब कोरोना का टाइम आया तो ये हुआ कि क्यों ना कुछ और अच्छा किया जाए। तो फिर वैकेंसीज आई और मैंने तैयारी की, और मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आपदा को अवसर में हर किसी को बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बदल सकता हूँ या आप बदल सकते हैं। जो कहीं ना कहीं हार्डवर्क ईमानदारी से करता है वो हर कोई बदल सकता है। उस समय मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी के यहीं गोंडा में रहकर ही प्रिपरेशंस किया। मैं स्पेशली ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे लोगों का कहना होता है ना कि आप छोटे शहर से हैं तो आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट के जब टीजीटी और पीजीटी के पेपर हुए तो मेरी पूरी एजुकेशन इस गोंडा डिस्ट्रिक्ट से ही रही
1: जी।
2: और मेरे साथ उस टाइम पेपर देने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे भी साथ में बैठे हुए थे। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी पीजीटी में 90,000 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें रिटन में 180 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, उसमें से फाइनल सिलेक्शन 45 का हुआ था। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी, क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट से होने के नाते कहीं ना कहीं ज्यादा खुशी आपको भी होगी
1: जी,
2: कि मैंने उस पेपर में पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक हासिल किया।
1: वाह क्या बात है।
2: और टीजीटी में भी मैंने रैंक होल्डर रहा उसमें भी। अब मेरे पास उस समय दो दो ऑप्शंस थे कि मैं लेक्चरर में ज्वाइन करूं कि असिस्टेंट टीचर में। तो मुझे एक चीज ये लगा कि लेक्चरर में मुझे सीतापुर मिला, क्योंकि यूपी में 15 सीट्स केवल थी, और टीजीटी में असिस्टेंट टीचर में मुझे वो कॉलेज मिला जहां से मैंने खुद 11th 12th किया था,
1: यानी टॉमसन
2: इंटर कॉलेज।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे ये लगा कि अगर आप उस कॉलेज के बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, जिस कॉलेज ने आपको यहां तक पहुंचाया है, जिसने आपको इतना कुछ दिया है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और इसके पीछे मेरी फैमिली भी पूरी इस बात के सपोर्ट में थी कि अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो एक तो अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं छूटेगी, ना अपने लोग छूटेंगे, और सबसे बड़ी चीज तो आप उस कॉलेज में आज पढ़ाने जा रहे हैं जिस कॉलेज से कभी आप पढ़ के निकले हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपनी लाइफ का अभी तक मानता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ की एक जर्नी है अभी, मतलब अभी तो जहाँ मुझे जाना है वो बहुत आगे है।
1: ये तो अभी आगाज हुआ है
2: जी।
1: अंजाम है अभी आगे।
2: अंजाम भी बाकी है। और मैं ये चीज कहूंगा कि टीचिंग फील्ड में होने के नाते कि एक टीचर कोई भी हो उसे हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, और खासकर डिजिटल जो लाइफ हो रही है उससे हर एक चीज का चेंज हो रहा है। तो अगर हम ये सोचें कि जो चीजें आज के हमने कुछ साल पहले पढ़ी थी या पढ़ाई थी वही चीजें आज भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और बच्चों का फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने के लिए, उन्हें अच्छा बताने के लिए जरूरी है कि खुद भी बहुत अपने आप को नई नई चीजों से आप अपडेट करते रहें, जिससे कि आप बच्चों में नए नए अवेयरनेस ला सकते हैं, नई नई चीजें आप कर सकते।
1: क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने जिस तरह से अपनी लाइफ के बारे में बताया बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, और मुझे लगता है कि इसको भी थोड़ा और करीब से जानना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मेरा वापस से आपको बचपन में एक बार फिर से ले चलते हैं। और सिद्धार्थ नगर के इटवा पे आपने बताया कि वो एरिया था जहां आपका जन्म हुआ, वहां पैतृक आपका निवास है। मैं जानना चाहूंगा बचपन कैसा बीता, किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं आप, बाकी बच्चों की तरह शरारती थे या बहुत चुप चुप रहते थे, कैसे थे आप
2: बचपन में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक बिलो द एवरेज में था। जैसे मैंने आपसे अभी बताया ना कि 10th से लेकर के और PhD तक की इस लाइफ को पूरा करने में जहाँ तक मुझे लगता है, और ये सच भी है, कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी पढ़ाई अपने सही से किया यानी सिंसियर होके किया वो क्लास 10th से किया।
1: ओके।
2: मैं आपको इसका एक वाक्य छोटा सा बताना चाहता हूँ।
1: जी जी जरूर।
2: स्टार्टिंग में मैं फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं
1: जी,
2: कि मैं दो भाई दो बहन हूँ।
1: ओके।
2: और मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ।
1: ओके।
2: और ये सच है कि स्टार्टिंग से ही मैं नहीं जानता क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे, लेकिन मेरा पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन बहुत कम लगता था। इस बात को लेके मेरे पापा मम्मी बहुत ज्यादा, उनको ये लगता था कि बड़े हो और नहीं पढ़ोगे तो बाकी छोटे भाई बहन कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, उनके लोगों को लेकर के ये चीजें थी। लेकिन अब नहीं लगता था मन, तो नहीं लगता था,
1: नहीं लगता था, सही बात है।
2: फिर जब मैं ऐसे एक एवरेज स्टूडेंट की तरीके से पढ़ता गया, और मुझे याद है कि मैं और मेरी सिस्टर नीति श्रीवास्तव जो 2014 के बैच की PCS ऑफिसर है
1: जी,
2: इस समय लखनऊ में वो पोस्टेड है, तो मैं दोनों एक क्लास में पढ़ा करते थे और मुझे रोज क्लास में टीचर मारा करते थे।
1: ओके।
2: मेरी सिस्टर आके मम्मी पापा से यही कहती, मम्मी मैं कल से नहीं जाऊंगा क्योंकि भैया रोज मार खाता, मेरी बेइज्जती होती है।
1: ओके।
2: जर्नी ऐसे चलती रही। फिर हम लोग नाइन्थ से अलग अलग कॉलेजों में हो गए, वो गर्ल्स कॉलेज में, मैं बॉयज कॉलेज में चला गया, एट्थ तक को कॉलेज में थे हम लोग।
1: ओके,
2: टेंथ में मैं फेल हो गया
1: फर्स्ट टाइम। ओके,
2: और मेरी सिस्टर पास हो गई। फैमिली में बड़ा था उस समय, मेरे फैमिली मेंबर्स में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि आप लड़के पे ध्यान नहीं देते, मेरे पापा मम्मी को, कि तो कैसे पढ़ेंगे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो उस क्लास टेंथ का फेल होना था।
1: ओके,
2: मुझे लगता है कि अगर मैं उस समय फेल ना हुआ होता तो आज मेरी लाइफ भी एक एवरेज लाइफ होती।
1: ओके,
2: अगर आज आपने स्टार्टिंग में कहा आपने इतने लोगों को पढ़ाया, लोग जानते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट्स मुझे ना मिला होता। तो उस क्लास टेंथ में फर्स्ट टाइम फेल होना, फिर मैं आपको बताऊं कि वो टर्निंग पॉइंट था और जिससे मैंने अपनी लाइफ में फिर आगे आज तक मैं कह सकता हूं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। फिर मैंने हार्डवर्क अपना स्टार्ट किया टेंथ में। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पास हुआ तो मेरे 39% टोटल मार्क्स हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अब और हार्डवर्क करना चाहिए। 12th में 58.80 था, बीकॉम में मुझे लगा कि और अच्छे, तो बीकॉम और एमकॉम दोनों में एलबीएस पीजी कॉलेज का टॉपर रहा।
1: क्या बात है।
2: फिर मैंने पीएचडी की, एमबीए मेरा फाइनेंस में है, यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाइड किया।
1: वाओ।
2: तो लाइफ में आपका पास्ट कैसा था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप, मैं किसी आज ऐसे पर्सन की स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनका पढ़ा है, मैं वो स्टोरी बता रहा हूँ जो मैंने खुद फेस किया है और
1: जो मैंने जिया है।
2: वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ तक अचीवमेंट किया। तो मैं उन बच्चों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ जबकि मैं बिलो द एवरेज था, तो आप सारे तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए लाइफ में कभी मैं देखिए आपका पास्ट कैसा था, जो बीत गया वो आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला कल है उसमें आप बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपका डेडिकेशन और आपका हार्डवर्क किसी चीज को पाने के लिए होना चाहिए।
1: बेशक, बिल्कुल सही बात आपने कही। और कितना ज्यादा हम इसको जोड़ के देख पा रहे हैं, मतलब मेरा भी कुछ ऐसे ही रहा है कि मैं भी एवरेज स्टूडेंट से पीछे रहा हूँ, लेकिन करते करते कहीं ना कहीं चीजें चेंज हुई। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिन से आप ठान लेते हैं, एक ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट हमेशा एक फेलियर होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: तो मुझे, मैं तो सर खुश नसीब हूँ और खुश नसीबी इस बात को मानता हूँ कि मेरी लाइफ में भी फेलियर आए ना, आते तो मैं जाग ही ना पाता और मैं भी वहीं का वहीं रह जाता। जो आपने कहा वही मेरे साथ भी है और मैं भी इस चीज को बहुत रियलाइज कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा बात हम करते हैं कि आपका एम्बिशन स्टार्टिंग से क्या था। बच्चों का होता है, अक्सर बताया जाता है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फिर आईएएस पीसीएस। आपके साथ आपका कोई खुद का एम्बिशन था या फैमिली मेंबर्स में आपके फादर आपको कुछ बताते थे कि आपको ये बनना है, क्या था आपका?
2: नहीं, स्टार्टिंग से ही पापा का कोई ऐसा फोर्स नहीं था कि आपको यही चीज करना है, बट हाँ पढ़ाई को लेकर के मम्मी पापा दोनों लोगों का हमेशा ये रहा कि नहीं, आप जो है जिस भी ट्रैक में या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मैं क्लास 8th था, मुझे पता भी नहीं था इंजीनियर होता क्या है, तो मुझे लगता था कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्लास 8th की मैं बता रहा हूँ,
1: सुन सुन के
2: लगता था कि हाँ मुझे भी इंजीनियर बनना है, बट मुझे इंजीनियर के बारे में उसका ई और आई भी नहीं पता था, ये रियलिटी थी। बट मैं पढ़ाई में रियली बहुत वीक था, 8th का बहुत ज्यादा वीक था मैं। तो जब हम लोग अपने गांव से बलरामपुर में, हम लोगों ने एक दो साल रहे वहां पे, 9th हमने वहीं से किया और 10th जब फेल हुए तो बलरामपुर में ही मैं फेल हुआ।
1: ओके,
2: तो एक पास के मेरे भैया थे, तो उन्होंने कहा कि पापा से मेरे कि इनका कॉमर्स में एडमिशन करा दीजिए। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कॉमर्स दिलाया क्यों जा रहा है, मैं ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: अब मुझे लगता है कि उन्होंने कॉमर्स दिलाया और मेरी फैमिली उस चीज पे एग्री हुई, तो शायद ऊपर वाला कुछ अच्छा सोच रहा था मेरे लिए। क्योंकि अगर हम उस समय कॉमर्स ना लिए होते तो हम अपनी लाइफ को आज तक यहाँ ना लाए होते। तो मिशन उस समय रही बात। फिर उसके बाद मैं फिर टीचिंग फील्ड में जब धीरे धीरे आ गया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचर आप का मतलब बनना। उसका रीजन ये है कि मुझे लोगों से कनेक्ट होना या लोगों से अपने आप को रिलेट करते रहना, ये कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा लगता रहा। और टीचिंग मुझे लगता है कि आप दूसरे को अगर कुछ सिखाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा आप सीखते हैं, ये चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगती।
1: वाह क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा और मुझे भी इस बात का अंदाजा है क्योंकि स्टार्टिंग मैंने भी अपने करियर की ट्यूशन्स पढ़ा के की थी, होम ट्यूशन के लिए। एंड उस दौरान मुझे नॉलेज तब ज्यादा हुई जब मैं पढ़ाने लग गया, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अगले को समझाना, आप तो उसके लिए पहले खुद समझना
2: होगा। खुद पढ़ने के लिए उन चीजों को छोड़ देते हैं कि ये टॉपिक छोड़ दिया जाए, नहीं आएगा पेपर में या हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब आपको पढ़ाना होता है तो आपको लगता है नहीं, ये भी पढ़ा जाए, हो सकता है पेपर में बच्चे के आ जाए, तो पहले आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है, तो फिर आप जाकर के उन चीजों को भी, इसलिए आप कहीं ना कहीं ज्यादा सीखते हैं जब आप पढ़ाते हैं।
1: एग्जैक्टली। सो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, जो कि कॉमर्स के टीचर हैं, और ऑफ कोर्स आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम है ICS, आपने भी नाम सुना होगा। 10 साल तक सर ने बताया कि कोचिंग चलाई और सफलतापूर्वक चलाई। ऑफ कोर्स ये कोचिंग का सफर, ये कोचिंग तक कैसे पहुंचे, कोचिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, किस तरह बच्चे आए, इसकी शुरुआत हुई कैसा का कुछ रहा, ये सारी चीजें जानेंगे, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, यानी वक्त हो गया है एक गाना सुनने का, एक म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बात बहुत अहम है। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं अपना गोंडा वाला FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे साथ आपके स्पेशल प्रोग्राम गोधुली में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं कॉमर्स के और थॉमस इंटर कॉलेज में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जाने से पहले सर, हमने अपने श्रोताओं से कहा कि आने के बाद आपसे हम पूछने वाले हैं कि भाई इतना ज्यादा आपका नाम कोचिंग से हुआ है, वो कोचिंग जहां पे लोग कहते थे जब निकलते थे कि भाई साइकिल्स की भरमार है, और जो अनजान लोग होते थे कहते थे यहाँ चलता क्या है, यहाँ होता क्या है। मतलब मैं तो कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ निकलता था तो इस तरह की बातें होती थी कि भाई कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 100+ साइकिल्स हैं, 200 है। तो इतना फेम आपको कोचिंग से मिला, ऑफ कोर्स ऐसी क्वालिटी जरूर होगी, कुछ तो आपका ऐसा टीचिंग मेथड होगा, कुछ तो आपका ऐसे बच्चों से कनेक्शन होगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये कोचिंग का आइडिया आपको कहां से आया, किसी ने एडवाइस किया था या आपने खुद सोचा, कैसे क्या रहा?
2: कोचिंग में गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जब मैंने 2008 में M.Com अपना क्वालिफाई किया
1: जी,
2: फिर उसके बाद कुछ फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी जिससे मुझे कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना था।
1: ओके।
2: उसके पहले भी मैं होम ट्यूशन एक दो ऐसे छोटे छोटे पढ़ाता था, और फिर मुझे ये लगा कि अगर हम कॉमर्स की फील्ड में, खासकर इस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से मैंने बहुत कुछ मिला है, जहाँ कुछ मैंने बहुत कुछ पाया है, जहाँ से सब कुछ सीखा है मैंने, अगर आने वाली जनरेशन को अगर हम कुछ दे सकें तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। और इतने दिनों मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए, या जब मैं खुद स्टूडेंट था तो क्या चीज़ें मुझे नहीं मिली, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं उस चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करता हूँ तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का भी फायदा होगा, और एक सेकेंडरी तो मेरा जो है वो होगा ही होगा। फिर हमने 21 जून 2010 में कॉमर्स क्लासेस के नाम से मैंने कोचिंग ओपन की।
1: ओके।
2: और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपने बोला कि टीचिंग मेथड्स आपका डिफरेंट होने के नाते ये भीड़ती रही, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका रीजन मुझे ये लगता है कि बच्चों से जो कनेक्ट होने का था वो ये था कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास आता था तो उस समय उसे लगता था कि मैं टीचर के पास जा रहा हूँ, मुझे लगता था मेरे पास स्टूडेंट आया है। लेकिन एक से दो दिन के बाद में वो बच्चा मेरे से इतना मिक्सअप हो जाता था हम दोनों लोगों के बीच में, ये नहीं होता था कि टीचर और स्टूडेंट्स वाला कोई रिलेशनशिप हम नहीं रखते थे, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि अगर आप बच्चे से टीचर और स्टूडेंट्स मान के चलेंगे तो वो एक गैप मेंटेन होगा, और उस गैप में बच्चा अपने क्वेश्चंस आपसे पुट नहीं कर पाएगा, वो आपसे नहीं पूछ पाएगा, जिससे क्या होगा कि वो वहां पर एक जो गैप है वो फिल हो जाएगा और वो गैप डे टू डे बढ़ता जाएगा। फिर होगा ये कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, फिर उन चीजों को वो गैप करने लगेगा, क्लास छोड़ने लगेगा, बंक करने लगेगा, उसको इंटरेस्ट अराइज नहीं होगा। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास ये था क्योंकि हम कॉमर्स स्ट्रीम में थे, बच्चा 12th तक साइंस या मैथ्स और आर्ट्स से आता है, उसको एक बैग कॉमर्स मिलता है तो फिर उसको लगता है कि यार हमारे लिए सब कुछ नया है, मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायो है, ना इंग्लिश है, ना मैथ्स है, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अलग था। तो मुझे ये लगा कि अगर बच्चों से आप पर्सनली कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा क्वेश्चन अराइज करेगा और उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अराइज होगा, और जिससे दोनों के फायदे होंगे। तो जैसे कि आपने स्ट्रेंथ की बात की कि इतने स्ट्रेंथ होने का क्या रीजन था, तो मैं आज आपको बता दूं कि इतनी स्ट्रेंथ होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि बॉयज और गर्ल्स कोई भी हो, उसने उनको कभी ये नहीं लगता था कि विवेक सर मेरे साथ नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता था कि मैं कभी बच्चों के साथ नहीं खड़ा हूं। मतलब ये मैं आपको बताऊं कि जब बच्चों के पेपर्स आते थे तो मैं उन लोगों को अपना मेरा मोबाइल नंबर उनके पास होता था, और तब मैं व्हाट्सएप या इन चीजों को या एंड्रॉइड सेट्स को यूज भी नहीं करता था, वो छोटे वाले सेट कीपैड वाले सेट होते थे, मैं उनको उसी पर क्वेश्चंस के मैसेज के रिप्लाई करना, उनको फोन करना, उनके विशेष मतलब पेपर में उनको सेंड करना। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन ना, जिससे एक 10 ईयर्स की जो जर्नी थी मतलब उस कोचिंग की, वो हमने एक दूसरे को कनेक्ट करके रखा।
5: क्या बात है।
2: इसी दौर मुझे ये भी लगा कि कंप्यूटर आज की जो डिमांड है, यानी कंप्यूटर का नॉलेज होना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2012 में मैं आपको बताऊं कि 5 कंप्यूटर से हमने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, जिसको शॉर्ट में आज ICS के नाम से जिला ही नहीं पूरा मंडल जानता है, 2012 में हमने ओपन किया, और अब तो उसकी जर्नी के 12 ईयर्स कंप्लीट हो गया। जब मैं कॉमर्स स्ट्रीम में था, यानी कोचिंग में था, तो 2020 में कोरोना का टाइम आया, कोचिंग उस समय बंद कर दिया। 2021 में गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिया, तो फिर कोचिंग पढ़ाने का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, फिर कॉलेज में ही पूरी तरीके से डेडिकेट हूँ। लेकिन कंप्यूटर सेंटर 5 कंप्यूटर के सेट से मैंने स्टार्ट किया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस सेंटर को पूरा पूरा आगे ले जाने का जो काम है वो मेरे भाई साहब सुमित श्रीवास्तव ने, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली उसको रन करा रहे हैं, आज 200 कंप्यूटर सेट के साथ जो है कई गवर्नमेंट एफिलेशंस, जैसा कि ओ लेवल का नाम आपने सुना होगा, CCC का आपने नाम सुना होगा, टैली है, तो ये सारे कोर्सेस हम लोग रन कराते हैं, और सारा कुछ छोटे भाई साहब उसको देखते हैं, बाकी टीचिंग फैकल्टी है उसमें देखती है, और जितने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो CCC के हों, ओ लेवल के हों, या प्रमोशनल्स पेपर्स हों अदर डिपार्टमेंट्स के, या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हों, आज ICS उन पेपर को कंडक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराता है इतने ईयर्स में, और उस ऑर्गेनाइजेशन के भी सक्सेसफुल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं मानता हूँ कि जो फैकल्टी मेंबर्स है वो उनका हार्डवर्क बहुत अच्छा है, और उससे जितने यहाँ के ऐसे बच्चे जो जिनको कंप्यूटर के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है, वो सेंटर पे आने के बाद में 3 से 4-5 महीने सीखने के बाद में उनको ये लगता है कि एक तो उनको ऐसी डिग्री मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 100%
5: जो है होती है, क्राइटेरिया में होती,
2: उनके क्राइटेरिया में होती है
5: जी।
2: दूसरी चीज ये भी रहता है कि वो बच्चे जिसको कुछ भी नहीं आता वो 3 से 4 महीने कोर्स करने के बाद बहुत कुछ सीख के जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट ने हमको बहुत कुछ दिया है, आज में जो भी नेम फेम है वो यहाँ की ही देन है। अगर मैं यहाँ के लिए कुछ भी कर पाता हूँ, उनके लोगों के लिए कुछ भी कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत छोटा सा इफर्ट्स अपनी तरफ से किया है उस देने का। तो इसीलिए कंप्यूटर सेंटर, जैसा कि आपने बोला कि ICS के नाम से, तो उसको ओपन करने के पीछे भी हमारा रीजन यही रहा कि लोगों को नॉलेज, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि कंप्यूटर तो हर किसी के लिए आज के लिए नीड हो चुकी, और खासकर आज के टाइम में जब इंटरनेट ही सब कुछ हो चुका है, तो कंप्यूटर के नॉलेज होना हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
5: बेशक। और जैसा कि आपने बताया कि 2010 में आपने कोचिंग की शुरुआत की, 2012 में आपने ICS के लिए एक इसकी फाउंडेशन डाल दी, तो आपको क्या उन 2 सालों में ऐसा महसूस हुआ कि कॉमर्स के लिए तो एक अच्छा काम आप कर ही रहे हैं, लोगों को, चूंकि उस वक्त मैं मुझे जहां तक पता है बहुत सारे सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे कि सीख लें। जैसे आजकल तो बहुत लोग बहुत सारी वीडियोस के जरिए बहुत सारी चीजें सीखा करते हैं, लेकिन उस दौरान सेंटर्स का होना बड़ा रेयर होता था। तो किस तरह से आपने जब स्टार्टिंग की तो क्या चेंज आपने देखा, लोगों ने उस टाइम किस तरह से एक्सेप्ट किया इस सेंटर को, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस और भी रही होगी। आज तो बहुत ज्यादा अवेयर है 12 साल बाद, लेकिन अगर हम 12 साल पीछे जाते हैं तो क्या सिनारियो था उस टाइम?
2: उस टाइम मुझे पता है कि गोंडा में 2-3 सेंटर्स हुआ करते थे। एक तो ये था कि हो सकता है कि उस टाइम में मुझे ज्यादा लगता है कि बच्चे वहां की फीस कुछ शायद एक्सपेंसिव रही होगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मुझे ये लगा कि मिनिमम फी पर उनको एक अच्छी नॉलेज दी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ये लगा 12 साल पहले ही कि आने वाला टाइम कंप्यूटर का ही है। अगर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आज आप खुद देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम के बाद से जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ, आज आपको बैंकों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।
5: बिल्कुल,
2: आज आपको पैसे जमा भी करने हैं तो आप ATM के थ्रू जमा कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं,
5: बिजली का बिल
2: आप घर से भर सकते हैं, मोबाइल का बिल घर से दे सकते हैं, मतलब इवन आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप तो ये हो गया कि अगर आपको अकाउंट भी ओपन कराना है
5: वो भी घर बैठे
2: आपका अकाउंट ओपन हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप ये सारे फंक्शंस अच्छे से आप कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंक्शंस आपके मोबाइल पे ही आज ऑपरेट हो रहे हैं। उस समय तो आपको भी पता होगा कि मोबाइल भी इतने एडवांस नहीं हुआ कर सकते थे ना, नेट की फैसिलिटीज इतनी हुआ करती
5: नहीं हुआ करती
2: नहीं हुआ। तो आज के टाइम में तो मुझे ये लगा कि कंप्यूटर से कहीं ना कहीं लोगों की एक तो अर्निंग आप बढ़ा सकते हैं। जैसे गोंडा जैसे छोटे शहर में अगर जनरली अगर फीमेल्स की बात करें तो उस टाइम में, आज के टाइम में मान लीजिए किसी की फैमिली बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करती, या मेल्स कैंडिडेट्स के लिए वो नहीं जा सकते, फैमिली के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, तो अगर वो कोई भी कोर्स कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के या हार्डवेयर के, तो उससे कहीं ना कहीं वो अपनी इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो ये सोच के साथ हमने ICS को इस्टेब्लिश किया, और नो डाउट इस 12 सालों में इस मंडल में ICS एक अच्छा नाम रखता है, और उसका रीजन है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंट में ICS ने अपनी ओन बिल्डिंग मीन्स अपनी खुद की बिल्डिंग को बना लिया है, और अब जून यानी कुछ ही दिन बचे हुए हैं जब ICS अब अपनी बिल्डिंग में होगा। अभी तक तो रेंट की बिल्डिंग पे ICS चलता था, अब तो अपनी बिल्डिंग में होगा, और ये बिल्डिंग विवेकानंद इंटर कॉलेज के ठीक पीछे ये पूरा कैंपस 3 फ्लोर्स के बने हुए हैं, तो उसमें पूरे का पूरा वो सेटअप और जितनी मॉडर्न एमिनिटीज हो सकती हैं उसके साथ एक नए उसमें ICS आपको देखने को मिलेगा।
5: क्या बात है, सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको।
2: धन्यवाद आपको नंद जी,
5: क्योंकि इतने साल का जो सफरनामा आपने बताया, मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा जो भी आपने जर्नी बताई, और इस तरह इतना बड़ा सेटअप लेकर के आ रहे हैं, मतलब ये सच में कहीं ना कहीं आपके उस विजन को दर्शाता है जिसको आप फ्यूचर की चीजों को अभी देख रहे हैं। दूसरी बात, गोंडा से आपके लगाव को दर्शाता है कि भाई गोंडा ने अगर आपको दिया है तो आपका भी ये कहीं ना कहीं ये आप खुद मान के चल रहे हैं कि आपका फर्ज है, जितना कुछ आप गोंडा के लिए कर सकते हैं ऑफकोर्स कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, करना भी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस शहर से आप बने हुए हैं, जिस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसको अगर आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत छोटा सा एफर्ट्स होगा, बहुत ज्यादा तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि जितना इंसान पाता है उसका बहुत छोटा सा ही दे पाता है।
5: बेशक बेशक, सही बात है। सर आपने अभी कोचिंग की बात की, जिक्र किया, इतना लंबा सफर रहा, इतने ज्यादा बड़े बड़े बैच आपके यहाँ होते थे, इवन जो नए स्टूडेंट्स होते थे वो एक बार को सोचते थे कि कैसे जाए सर तक, इतने पीछे से इतनी भीड़ है, कैसे बात करें, बड़ी शर्म आती है। कईयों ने तो बताया कि भाई पहली बार तो किसी को माइक का इस्तेमाल करते हुए, स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए देखा है कोचिंग में, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के बीच में। सो ऑफकोर्स आपने बहुत अच्छे से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इवन आप खुद भी नहीं गिन पाएंगे कि कहां कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि कुछ तो ऐसी स्पेशलिटी आपके टीचिंग मेथड में, एक तो आपने कहा कि बॉन्डिंग, आप स्टूडेंट के बीच में ऐसी बॉन्डिंग बनाते हैं कि वो गैप नहीं रहता है, वो फ्रेंडली कहीं ना कहीं गैप जो है वो मेंटेन हो जाता है। और क्या क्या चीजें हैं जिसके जरिए आपको लगता है एक टीचर में होनी चाहिए, और आपने उन चीजों को अपनाया और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखा, उसका इम्पैक्ट देखा कि काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्लीज बताइए।
2: मेरा अपना मानना है कि पहली चीज तो अगर वो टीचर है तो उसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स बेसिक्स क्या हो सकती है उसे ये समझना बहुत जरूरी है।
5: ओके,
2: जैसे आपने कहा कि इतने बैच में बच्चे पीछे बैठते थे, 100-150 में आप कैसे जान जाते थे, या कॉलेज में 30-40-50 लोग बैठते हैं आप कैसे जान जाते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको ये सोचना चाहिए कि आज जो स्टूडेंट्स आया है, पहले आप भी कभी स्टूडेंट्स थे।
5: बेशक बेशक,
2: आज आप टीचर हैं तो कभी आप स्टूडेंट्स थे, तो आपने भी तो वो प्रॉब्लम फेस की होगी अपने टीचर से कि आप क्वेश्चंस नहीं अराइज कर पा रहे थे किसी भी रीजन से, या तो टीचर का आपको डर था, या तो आपको लगता था कि हम पूछेंगे तो लोग हंसने लगेंगे
5: राइट।
2: तो आप चाहे स्कूल की टीचिंग करते हो या कोचिंग की टीचिंग करते हो, आप एक एक बच्चों से अपने आप को कनेक्ट करिए। जितने भी टीचर्स हैं, मैं किसी की एडवाइस तो नहीं दे सकता, बट मैं अपना जो व्यू है वो रख रहा हूँ
5: जी, जी, जी, जी।
2: कि आप एक एक बच्चों से खुद को कनेक्ट करिए, फिर आप देखिए कैसे वो बच्चा आपके लिए फॉरएवर का हो जाता है। मतलब वो आपके यहाँ से सारे, मतलब ग्रेजुएशन भी करके चला जाएगा, 12th भी करके चला जाएगा, फिर भी वो कहेगा कि कहीं ना कहीं जहां भी रहेगा वो आपको मिस ही करता रहेगा। दूसरी चीज ये कि आप जब जो भी चीज टॉपिक पढ़ाएं उसमें आपने सोचे कि ये मत सोचिए कि ये चीज बच्चे को आती होगी। ये नहीं कि जैसे आप पढ़ा रहे तो आप ये सोचें कि ये तो आपने कल पढ़ा होगा, ये आपको आता होगा। हमें लगता है कि जो गैप मेंटेन होता है वो इसी रीजन से मेंटेन होता है। ठीक है, आप उस चीज को थोड़ा सा बता दें, अगर आपको लगता है कि आपने पहले बताया है तो थोड़ा सा बता दें जिससे कि बच्चा कनेक्ट हो जाए।
5: बेशक।
2: और मेरी जहां तक पर्सनल बात है, मैं जब भी, जैसे मान लीजिए मैंने ट्यूसडे को क्लास स्टार्ट की, तो ट्यूसडे को क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मंडे को मैंने पढ़ाया था, मैं पहले वो रिकैप कराता था 10 मिनट्स के लिए।
5: ओके, ये मतलब आपकी एक स्ट्रेटजी रही है।
2: जी
5: ओके।
2: उसका रीजन ये था कि जो बच्चा हो सकता है किसी भी रीजन से वो मंडे को ना आया हो, तो उसका गैप हो गया, तो वो फिर कनेक्ट ट्यूसडे को नहीं कर पाएगा मेरे साथ। तो 10-15 मिनट्स उसको अगर आप रिकैप करा देते हैं उस चीजों को, तो वो बच्चा आपसे फिर कनेक्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप ये जरूर देखते रहे कि बच्चे का जो टॉपिक छूट गया उसको एक्स्ट्रा टाइम देके आप कंप्लीट करा लें। बच्चे को पर्सनली आप, मतलब ये ना सोचे कि अगर उसने 10 बार पूछ दिया, मैं बताऊं, मैं तो क्लास में हमेशा, आज भी मैं थॉमसन इंटर कॉलेज में हूं, आप पता कर सकते हैं
5: जी।
2: मैं बच्चों से कहता हूं कि आप 1000 टाइम मुझसे पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसका रीजन आप सीखने आए हैं।
5: बेशक।
2: तो ये कहीं ना कहीं एक टीचर्स के लिए होना चाहिए कि बच्चों से वो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, वो हर एक तरीके से कनेक्ट होके चले। तो बच्चे की जो पढ़ाई बीच में छूट जाती है आज के टाइम में, जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे पढ़ते रहे, उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे, तो छूटेगा तब नहीं जब उनका इंटरेस्ट बना रहेगा। और इंटरेस्ट बनने के लिए जरूरी है कि बच्चे को आप कनेक्ट करते रहें उसके सब्जेक्ट से। अगर उसको वो नहीं आ रहा है तो उसके स्कूल कॉलेज ना आने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, तो उससे आप पर्सनली उस चीज को पूछें कि क्या रीजन था, क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो सही में नहीं आना चाहते, मतलब जानबूझकर नहीं आना चाहते, लेकिन बाकी के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। तो हो सकता है कि अगर आप 10 से पूछते हैं तो 1-2 की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन 1-2 के लिए तो आप अच्छा कर सकते हैं।
5: बेशक, यानी आपको एम्पैथाइज करना है बच्चे के साथ, उस जगह खुद को रखना है, जैसे हर बार कहते ना कि अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो उस एक्टर को भी उस दर्शक की निगाहों से बनाना पड़ता है कि अगर मैं इस मूवी को देखूंगा तो मुझे कैसा
2: लगे।
5: तो बिल्कुल वैसे ही है कि कभी हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो आज जो वो फेस कर रहे हैं, कल हमने भी वही चीज फेस की थी, तो मेरे जहन में क्या था, तो वो आप अगर ऑलरेडी पता है, उस चीज को आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, और जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो इसीलिए आपने कहा कि बच्चा 2-10 साल भी आपसे पढ़ेगा, और 10 साल के जाने के बाद भी वो आपको कहेगा कि सर शायद आज भी बहुत कम वक्त मुझे लगता है कि आपके साथ मिला, मैं तो और चाहता था कि आपके साथ और टाइम बीते। बिल्कुल, बेशक ये होता है, और ये बिल्कुल सही बात आपने कही। बातचीत के दौरान, चूंकि अभी जस्ट मैंने देखा भाई छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है, आने के बाद बहुत अहम सवाल, चूंकि हम कॉमर्स के बारे में बहुत देर से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉमर्स के बारे में अब हम ब्रेक के बाद बात करते हैं कि आखिर ये कॉमर्स है क्या चीज, जहां सिर्फ क्या हिसाब किताब ही होता है कि आपने उधार कितना लिया और कितना आपने चुकाया। नहीं, इसके अलावा भी हम जानेंगे क्या स्कोप होता है, करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, गोंडा में कितनी अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से इसको ऑप्ट करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑफकोर्स आज की पर्सनैलिटी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव सर, इनकी लाइफ की वैल्यूज के बारे में भी हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको फॉलो करके आज आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो सब कुछ जानने को मिलेगा ब्रेक के उस पार, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं।
7: रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस अकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-3395-84। 88-40-33-95-84। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने इवनिंग वाले शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं अपना गोंडा वाला एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। जाने से पहले हमने कहा था कि भाई कॉमर्स पे आकर के बात करने वाले, क्योंकि आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स होम्स इंटर कॉलेज गोंडा। सर, कॉमर्स की बात हो रही है, कॉमर्स की कोचिंग की बात हुई, कॉमर्स में बताया कि अभी आप थॉमसन कॉलेज में असिस्टेंट टीचर भी हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉमर्स मतलब अभी तक कई लोगों के मन में बस ये कि भाई कितना लिया कितना दिया, यानी हिसाब किताब खाता कुल मिला करके। लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या कॉमर्स सिर्फ खाता ही है या इससे और भी किस्मत का खाता भी खुल जाता है और बहुत सारे ड्रीम्स हम फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि इसी में हमने जहां तक हम सुनते हैं लोगों की ड्रीम जॉब होती है सीए बनना, सीएस करते हैं लोग, और भी इस तरह से बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारी जॉब होती है, वैकेंसीज आती है कॉमर्स को लेकर के। तो बेसिकली हम जानना चाहेंगे कि कॉमर्स है क्या और इसके स्कोप्स कितने हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और अपने गोंडा लेवल पे।
1: देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो छोटे शहरों में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि लोगों में जो अवेयरनेस है कॉमर्स को लेकर के वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कम है। लेकिन आप अगर मेट्रो सिटीज में जाएं, यानी मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखें तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इस स्ट्रीम से, यानी कॉमर्स स्ट्रीम में, चाहे वो बच्चा बीकॉम हो, एमकॉम हो करके या एमबीए करके निकला हो, तो उसके पास एक चीज है कि आज के टाइम में वो किसी ना किसी कंपनीज में लग करके वो सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छे से जनरेट कर सकता है। जैसा कि आपने कहा कि कॉमर्स स्ट्रीम में करने से हमारे पास क्या क्या ऑफर्स होते हैं, तो मैं एक चीज बताऊं कि कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता, मींस वो डॉक्टर्स नहीं बन सकता
0: जी,
1: और ना वो इंजीनियर बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: बाकी अगर आप किसी भी स्ट्रीम, मतलब किसी भी आप देखें प्रोफाइल को, कि अगर वो चीज साइंस स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, मैथ्स का कर सकता है, आर्ट का, तो वो कॉमर्स वाला भी कर सकता है। इवन आप सिविल सर्विसेज में अगर जाएं देखें तो कॉमर्स स्ट्रीम में आप देख सकते हैं। मैं आपको ज्यादा ना कहूं कि आप खुद चेक कर सकते हैं जो आईएएस के रिजल्ट आते हैं, आप उसमें देखिए टॉप टू टॉप थ्री में जो लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा उसमें टॉप थ्री के जो बच्चे ने टॉप किया आईएएस में वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही थे।
0: ओके, वाओ, क्या बात है।
1: तो ऐसा नहीं कि कॉमर्स स्ट्रीम के लोग सिविल सर्विसेज में नहीं जाते या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए नहीं जाते। और स्पेशली मैं आपको कहूं कि जितने भी आज जो ये पॉपुलेशन है या जितने लोगों को जॉब्स चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब सबके लिए अवेलेबल होगा ये सही नहीं है। इसलिए आज के टाइम में कहीं ना कहीं हमें ऐसे कोर्सेस करने चाहिए जिससे कि हम वो हमारा करियर ओरिएंटेड हो। लाइक जैसे आपने अगर बीकॉम या बीबीए किया तो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। अब एमबीए आप किस फील्ड में करेंगे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है।
0: मींस
1: मार्केटिंग में आप करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में करेंगे कि आप आईटी में करेंगे कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करेंगे। मींस आप एमबीए के में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
0: ऑप्शंस।
1: अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक लग्जरियस लाइफ हर कोई जीना चाहता है, तो उसके लिए एमबीए एक अच्छा स्ट्रीम हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं जहां पर पैसा लिमिट्स नहीं रखता, क्योंकि कहते हैं ना मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपके अंदर नॉलेज है, विद्वता है, तो पैसा आपके पीछे आएगा, आप पैसे के पीछे नहीं जाएंगे।
0: क्या बात है।
1: तो अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, बट एक चीज है कि इसमें आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कह रहे हैं जो बच्चे अपने आप को बिलो द एवरेज मानते हैं, एवरेज मानते हैं, वो इतना नहीं कर सकते, शहर छोड़कर नहीं जा सकते, उनकी फैमिली इतने पैसे वाली नहीं कि वो एफर्ट्स कर सके, तो वो किसी भी जो है ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर में वो जीएसटी फिलिंग का काम आज टाइम में जो बहुत तेजी से चल रहा है या टैक्स रिटर्न्स के काम वो सीख सकते हैं। तो अपने शहर में रहकर ही वो लोग बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिस करके। तो कॉमर्स स्ट्रीम का जो आज एडवांटेज है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं आपको बीकॉम या ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ करने के बाद सीधे आपको एक, हमें नहीं कह रहा कि आपने ट्वेल्थ किया, ग्रेजुएशन किया तो आपको बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा, बट इतना तो हो जाएगा कि अगर आपकी फैमिली अफोर्ड आपके फीस या एक्सपेंसेस को नहीं कर सकती तो आप अर्निंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम का जो एडवांटेज है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी चीज ये है कि इस स्ट्रीम से आपके पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं। छोटे शहरों में तो कम, बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाके देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस कंपनियों के में आपके पास हैं। तो केवल ऐसा नहीं कॉमर्स का मतलब पैसा देने और लेने या हिसाब बनाने से ही है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम में, और एक तो अगर आज का टाइम आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर ही बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर्स में कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
0: तो ये आपने बता दिया कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें यानी ग्लोबल लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे और चाहे गोंडा लेवल पे। एक बात अब और अहम है, पहले तो इस बात को भी जरा हम जानने की कोशिश करें कि ये कॉमर्स है क्या और एक्चुअल में हम इसमें किन किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं।
1: देखिए, जैसे आपका साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज एक स्ट्रीम है, जैसे कॉमर्स भी एक स्ट्रीम है। कॉमर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी आपको कराई जाती है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें वो सब्जेक्ट्स आपके लिए होते हैं जिनका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में यूज ज्यादा होता है। जैसे आपने कहा हिसाब किताब के लिए, तो हिसाब किताब के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग चलती है, और अकाउंटिंग के भी बहुत सारे ब्रांचेस चलते हैं। जैसे एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट लॉस को जानना चाहता हो कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, उनकी पोजीशन क्या है,
0: तो उसके लिए
1: फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करते हैं।
0: बेशक
1: आपने किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और आप ये जानना चाहते हैं उसकी कॉस्ट क्या आई है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, टोटल कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। हम अपनी सैलरी हो या बिजनेस की प्रॉफिट्स हो, उसके लिए हमें टैक्स फाइल करना है, उसके लिए हम लोग इनकम टैक्स अकाउंटेंट का यूज करते हैं। मैनेजर्स को क्या डिसीजंस लेने में क्या चीजें हेल्प कर सकती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज होता है। ठीक इसी तरीके से मार्केटिंग, एक सक्सेसफुल आप मार्केटर कैसे बन सकते हैं, आप मार्केटिंग कैसे अच्छा कर सकते हैं, यानी मार्केटिंग का तो बड़ा सीधा सा फंडा है कि आप ऐसे इंसान को भी कंघी बेच देना जिसके सर पे बाल ना हो, ये है मार्केटिंग। आपके मींस मार्केटिंग का मतलब हम आपके अंदर उस चीज की नीड को अराइज कर दें,
0: नीड क्रिएट कर देना, सही बात,
1: ये मार्केटिंग कहलाता है। अगर आपको उस चीज की नीड है और मैं वो चीज आपको सेल करूं तो मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है,
0: वो तो चाहिए ही थी,
1: वो तो आपको चाहिए ही था। मैं आपको वो चीज सेल कर दूं जिसकी आपको नीड भी नहीं थी, तो मार्केटिंग का फंडा ये है।
0: ओके,
1: क्योंकि बिजनेस यही है।
0: बेशक
1: एक बात मैं ये कहूंगा कि आज के टाइम में नेटवर्क्स आप मोबाइल में देखते हैं, ये साइंस की देन जरूर है, लेकिन आज के टाइम में पर्सन दो सिम लगा के अपने मोबाइल में रखता है या दो से तीन हैंडसेट्स लेके चलता है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग की ही देन है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, ऑफ कोर्स सही बात है। फिलहाल मैं तो एक ही सिम यूज कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। लेकिन बिल्कुल बहुत बड़ा एग्जांपल है, ऑफ कोर्स मैंने भी देखा कि लोग दो सेट्स इस्तेमाल करते हैं सेलफोन्स की, भाई एक ये प्रोफेशनल है, घर वालों के लिए है, या दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एक एग्जांपल आपने दिया है, बिल्कुल सही बताया है। सर आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी में मैं जानना चाहूंगा, आजकल एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता है फ्रीलांसिंग, यानी घर बैठे ऑनलाइन काम करना। जैसे अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो कंटेंट राइटर्स होते हैं जो घर से लिख करके देते हैं किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, यूट्यूब एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं खुद भी हूं, तो किसी की वीडियो में वॉइस देना है, कोई न्यूज चैनल है उसके लिए वॉइस देना है, डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए वॉइस देना, वो सारी चीजें। मैं जानना चाहता हूं कॉमर्स में ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन करते हैं या कर सकते हैं। बहुत सारे सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपने कहा ना स्टडी पर्पस होता है, तो घर पे भी रह सकते हैं, ऑनलाइन वो काम भी कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कॉमर्स के अगर हम फील्ड की बात करें।
1: देखिए, आप घर बैठे इसमें इनकम टैक्स में जो रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले कुछ दिन सीख सकते हैं और फिर घर पे ही अपना सेट लगा करके और उस पे जो है ऑनलाइन आप रिटर्न फिल लोगों का करा सकते हैं, जीएसटी रिटर्न आप फिल करा सकते हैं। क्योंकि आज स्मॉल स्केल का बिजनेस हो या लार्ज स्केल का बिजनेस हो, आपको पूरे शहर में बहुत सारे बिजनेसमैन मिलेंगे जिनका एक ही चीज है कि हमको जीएसटी फाइल करनी है, जीएसटी फाइल करनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा बनना चाहिए जो उनकी जीएसटी को फाइल कर सके। तो आप अपने शहर में ही रह करके और इस चीज को सीख करके आप ये काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उससे एक अर्निंग जो आपकी है वो बराबर जनरेट होती रहेगी। और जब आप एक लोग का ये ऐसा काम करेंगे तो एक से दो बिजनेसमैन, दो से तीन, चार, पांच आपसे खुद ऐड होते जाएंगे। क्योंकि डे टू डे आप देखते होंगे अपने ही शहर में, आप देखिए पहले का गोंडा और आज के गोंडा में बहुत अंतर है।
0: बेशक बेशक,
1: आज डे टू डे कहीं ना कहीं चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हो या छोटे छोटे बिजनेस हो, बहुत सारे बिजनेस ओपन हो रहे हैं, तो उसमें जीएसटी फाइल करना ही होता है, तो ये भी एक काम घर बैठे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आपको डेटा फीडिंग के काम आते हैं, तो उस चीज पे भी आप अपना काम कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते।
0: हाँ बेशक, आपने सही कहा, क्योंकि आज मैं खुद भी जो अपना ITR फाइल कराता हूँ वो ऑनलाइन ही कराता हूँ, जो बंदा करता है वो यहाँ का है ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक एग्जांपल मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि वो बाहर आउट ऑफ गोटा का बंदा है, वो मुझे हर साल कॉल करता है, मैं अपनी डिटेल्स बता देता हूँ, सारे एक्सपेंसेस अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ और उसके बाद मेरा ITR फाइल हो जाता है घर बैठे। हालांकि उनका पूरा ऑफिस है और उनका मेन बिजनेस है और वो बंदा मेरे जैसे न जाने कितने सारे क्लाइंट्स उनके पास हैं जो जिनकी वो फाइल ITR करते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने कहा कि घर बैठे भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। आपको क्या लगता है पेरेंट्स को क्या समझना होगा या गोंडा में जो भी इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं किस तरह की अवेयरनेस की जरूरत है अगर हम कॉमर्स के टर्म में देखें तो?
1: देखिए पेरेंट्स से तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को इस चीज के लिए ना फोर्स करें कि नहीं आप साइंस लेके पढ़ो, हमने साइंस पढ़ा है, घर में सारे लोग साइंस पढ़े हैं, या मैथ्स आप लेके पढ़ो। आप पहले देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। आप ऐसा नहीं कि बच्चे पे केवल आप बर्डन डाल रहे हैं। आप ये तो देखिए ना कि बच्चा आपका साइंस लेके नहीं चल पा रहा है, आप उसको साइंस में डाल दे रहे हो। आप मैथ्स कह रहे हो बच्चे मैथ्स करो, पता लग रहा है बच्चे का इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज में है। तो पहले बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट का ये भी देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, पेरेंट्स हमें नहीं कह रहे कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं, बट ये चीज तो एक स्कूलिंग लेवल तक तो जरूरी है। देखें कि उनका बच्चा सही ट्रैक पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब वो अगर आप घर से कॉलेज गया है तो गया कि नहीं गया। हम नहीं कह रहे कि आप पूरे वीक्स में रोज ये चीजें वॉच करें, लेकिन एक दिन तो आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको लाइफ टाइम का रिटर्न अच्छा नहीं मिल सकता। इसलिए आप अपने बच्चे को जरूर टाइम दें, क्योंकि जब आप उसको टाइम देंगे, देखिए मन में डर किसी ना किसी का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर डर एकदम खत्म हो जाएगा तो बच्चा कुछ नहीं करेगा।
0: सही, बिल्कुल सही है।
1: तो इसलिए गार्जियंस को ये जरूर चाहिए कि वो बच्चे को वॉच करते रहे। हमें नहीं कह रहे कि वॉच करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप बच्चे को हर एक चीज में रोकते रहिए टोकते रहिए, लेकिन वॉच करने का मतलब ये कि ये जरूर देखते रहे कि बच्चे को आपने अगर घर से भेजा तो बच्चा गया कि नहीं गया। टाइम टू टाइम अगर हो सके तो जब भी कॉलेज आपके PTM होते हैं तो उसमें आप जरूर टीचर्स से मिले, और PTM जिन स्कूलों में नहीं होते वहां पर भी टीचर्स गार्जियन से मिलते हैं, तो आप खुद जाके टीचर्स से मिलिए और पूछिए आपके बच्चे का कैसा क्या, आखिरकार वो आपका बच्चा है। अगर आप उस पर टाइम नहीं देंगे तो फिर आप क्या कर सकते।
0: बेशक, मतलब बस पैसे को इन्वेस्ट कर देना, अच्छी कॉलेज में स्कूल में डाल देना ही काफी नहीं है। उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपका खुद के टाइम का इन्वेस्टमेंट बच्चे के लिए होना है। बेशक सर, आप चूंकि असिस्टेंट टीचर हैं कॉमर्स के थॉमसन टेक कॉलेज में, एंड अगर हम बात आज की करें तो लोगों का ऐसा मानना है कि भाई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, बहुत अच्छी पढ़ाई तो अब वैसी नहीं रह गई जैसे एक जमाने में हुआ करती थी। लोग एग्जांपल देते हैं, मेरे पापा जब पढ़ते थे, मेरे दादा जब पढ़ते थे, तो वो दौर था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज के वक्त में आप वहां पे टीचिंग कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों के अंदर वहां टैलेंट है, क्या प्रतिभा आप देखते हैं, किन चीजों की आप कमी देखते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वहां किस तरह से आप टीचिंग आपकी चल रही है?
1: देखिए एक चीज, जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेज में लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, या बच्चे जाते हैं तो उनको भी ये लगता है कि, या गार्जियंस या लोगों को लगता है कि पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट कॉलेज उतना देखने में सुंदर आपको ना लगे या स्कूल्स उतने सुंदर ना लगे, बट मेरा अपना मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा जो टीचर्स की क्वालिटी, उनका एजुकेशन है, वो ज्यादा मायने रखता है। आज के टाइम में जितने भी आप गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि गवर्नमेंट का ये अपना मानना है कि आप भी देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस नथिंग है या बहुत नॉमिनल सी फीस ही है, जिसको एक मतलब आप एक चाय के पैसे से भी आप कम अगर कंपेयर करें तो इतनी कम फीस में गवर्नमेंट एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। रही बात गवर्नमेंट कॉलेजों में लोगों की जो टेंडेंसीज रिसेंट ईयर्स में चेंज हुई है, पहले ऐसा नहीं था, लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी, बट रिसेंट टाइम में कॉन्वेंट एजुकेशन के नाम पे आप भी देख रहे हैं कैसे क्या चीजें चल रही। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई का लेवल कहीं ना कहीं पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। हमारी थिंकिंग थोड़ी सी बदली है, हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस रहे हों, बट करंट टाइम में मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये तो ये है कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है और हर एक टीचर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों पे ध्यान दे रहा है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट भी हर एक चीज को चेक करती है कि मतलब बच्चे को आपने क्या सिखाया, सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब वो दौर पुराने चले गए जिसकी आप बात अभी कर रहे थे कि पढ़ाई होती या नहीं होती। अब तो गवर्नमेंट देखती है कि कैरिकुलम एक्टिविटीज में क्या हुआ, आपने सिलेबस कितने कंप्लीट किए कितने नहीं कंप्लीट किए, आप डेली आपको टास्क कंप्लीट कर मतलब जो है जो असाइन किया गया वो आपको पूरा करना होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सोच मिड में थोड़े से आए थे ना, वो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से चेंज कर दिए हैं। तो इसलिए मैं लोगों से कहूंगा कि अपनी थिंकिंग को बदलिए और एक बार गवर्नमेंट स्कूलों को जाके देखिए, जरूर देखिए कि किस तरीके से चेंज हुआ है और पढ़ाई का लेवल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो चुका है।
0: यानी आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रिव्यू सिस्टम अपना रही है।
1: बिल्कुल अपना रही है। हम लोग ये देखते हैं कि अब तो ये हो गया है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होने लगी है, आप क्लासेस में जो आपको असाइन में आप क्लास में है या नहीं है, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट देख रही है।
0: ओके, और बच्चों के अगर हम एंड से बात करें तो अभी क्या आपको दिखाई देता है? आज भी वही प्रतिभावान बच्चे वहां भी नजर आते हैं आपको?
1: देखिए, बच्चों में एक बात है कि पढ़ने का जो उनका लेवल था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है।
0: ओके,
1: ये मेरा अपना मानना है।
0: ओके।
1: उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि मतलब बच्चे खूब पढ़े, खूब अच्छे से पढ़े और सारी चीजें हों, लेकिन बच्चे उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं जितना उनको अपने करियर या फ्यूचर को लेकर करना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क आज के टाइम में है।
0: अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है
1: जी। बच्चे जिस अकॉर्डिंग उनको मेहनत करनी चाहिए उस अकॉर्डिंग वो मेहनत नहीं कर रहे हैं।
0: इसका बड़ा रीजन क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे जस्ट आपका व्यू जानना चाहूं
1: तो? इसमें मेरा व्यू यही है कि आज के टाइम में नो फेल पॉलिसी एक गवर्नमेंट ला दी है, तो नो फेल पॉलिसी में बच्चे के अंदर डर नहीं रह गया। और मैंने पहले ही कहा कि बिना डर के कुछ नहीं होता। जब हम लोग के टाइम में बच्चे, आपके टाइम में भी ये देखा होगा कि जब बच्चे डरते थे तो वो मेहनत करके पढ़ते थे। अब तो बच्चे को लगता है कि मुझे फेल नहीं होना तो बच्चा फिर पढ़ना नहीं चाहता।
0: तो मतलब
1: ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक्स आप कह सकते हैं।
0: हाँ,

0: सी वजह है, उन पे काम करना होगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सर आपने बखूबी बताया अभी अपने कॉलेज के बारे में, यानी थॉमसन टेक कॉलेज के बारे में, जिससे हम सभी लोग रूबरू हैं। अब चूंकि बहुत सारी आपसे बातें हो गई हैं, इसी बीच में मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, कि आपने भी अक्सर बहुत सारे इवेंट्स गोंडा में देखे होंगे, कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी की उपस्थिति जरूर आपने देखी होगी, और एक अच्छे वक्ता की तरह आपने बोलते हुए भी सुना होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या है, मतलब मैंने खुद भी कई सारे प्रोग्राम्स में देखा है कि आपकी प्रेजेंस रहती है, आप चीजों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्या सोशल एक्टिविटीज से जुड़ना आपका कोई शौक है, आपको अच्छा लगता है, क्या है?
1: जैसा कि आपने कहा कि सोशल एक्टिविटीज को लेकर के, तो मैं आपको बताऊं कि सोशल एक्टिविटीज से एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप नंबर ऑफ पर्सन से अटैच होते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि लोगों से अटैच होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाना अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी चीज है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सपोज मैंने अभी आपके ही कॉलेज में, यहाँ ज्ञानस्थली में ही डिजिटल मार्केटिंग का एक सेमिनार था, उसमें आए थे, तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें बोलने आया था एज ए स्पीकर, वहां से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का रीजन यही है कि एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको बहुत मिलता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि आप उसके साथ बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का रीजन यही है कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का पाना, और दूसरी चीज बहुत कुछ सीखना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, मतलब लाइफ में आप सिर्फ सीखते रहें क्योंकि ये कभी एंड नहीं होता। तो इसलिए जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप बहुत आगे जाते हैं, इसलिए हर किसी को हर स्टेप पर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
0: ओके, ये शायद ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जिंदा होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अगर जिंदा है तो उसकी निशानी है कि कुछ ना कुछ आता रहता है। बेशक, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस पूरी लाइफ टाइम चलता है, और ये कहा भी जाता है, और ये बहुत फैक्ट बात भी है। सर अभी तो जो कुछ भी क्वेश्चंस थे वो हमने पूछे, उसका आपने बखूबी बेहद सहजता और सरलता के साथ में उत्तर दिया। हमारे श्रोताओं तक बहुत सारी बातें पहुंची हैं, जिनको कहीं ना कहीं अगर वो जीवन में उतारते हैं तो ऑफ कोर्स बदलाव नजर आएगा। आप खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने इस पीरियड में खुद को कहां से कहां पहुंचाया, और कहीं ऐसे नहीं, यानी सुविधाओं का अभाव आपके भी साथ रहा है, आप भी एक छोटे शहर एक छोटी जगह से ही बिलोंग करते हैं, आपने भी एजुकेशन इसी गोंडा से ली है, और अगर आज आप कुछ अलग कर रहे हैं तो शायद आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, शायद आपका अप्रोच ऐसा है, शायद आपकी लाइफ की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसके बिहाफ पे आज आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और एक अलग पहचान अपनी बना पाए हैं। ये तो फैक्ट है। अब चूंकि चलने से पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि भाई, अगर मैं जानना चाहूं कि डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव की लाइफ की वैल्यू ऐसी कौन सी है जिसको ये किसी भी हालत में निगोशिएट नहीं करना चाहेंगे, कभी भी चेंज नहीं करते हैं और फॉलो करते ही करते हैं, तो वो क्या है?
1: मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज पर, मतलब मैं अपनी बात करूं तो, अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करते रहिए, और वो राइट वे में आपका हार्ड वर्क हो, तो एक बात कंफर्म है कि आप उस चीज को पा लेंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कभी भी आप ये मत देखिए कि लोग आपको क्या कहेंगे। उसका रीजन ये है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तो आप जिंदगी में हमेशा अकेले होते हैं, लेकिन सक्सेस में दुनिया आपके साथ चलती है। लोग आपके अचीवमेंट्स तो देखते हैं, लेकिन उस अचीवमेंट्स को पाने में आपने कितनी रातें जागी हैं, या कितने आपने किए हैं, या कितना आपने कुछ त्याग किया है, ये कोई नहीं देखता।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज पानी है, या उस सक्सेस किसी पॉइंट्स को, या कोई भी चीज आपका जो ड्रीम है उसको आपको अगर पूरा करना है, तो उसके लिए आप रात दिन सब कुछ एक करते रहिए, जब तक कि वो चीज आपको नहीं मिल जाए। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं, या मैं खुद अपनी बात करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो भी मेरे ड्रीम्स हैं वो एक ना एक दिन मेरे हाथों में होंगे, ये चीज मुझे पता है।
0: क्या बात है। तो अभी तक भी आपने बहुत सारी चीजें की हैं, और अभी भी आपका मानना है कि ड्रीम आपका बड़ा है और वहां तक पहुंचना है। हमारी तरफ से, यानी आरजे अदनान की तरफ से, और हमारे सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों विशेष हैं आपकी लाइफ को लेकर के, एक ब्राइट फ्यूचर की हम भी आपकी कामना करते हैं, जहां पे भी आपने सोचा है वहां जरूर जाएं। साथ ही साथ अब चूंकि एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जुड़ा हुआ, आपने इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ बनाया है, इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है, एक या दो कोई ऐसी चेंज स्टोरी, जो बच्चा आया था तो बड़ी परेशानी में था, या बड़े ही अलग ही सर्कमस्टेंसेस थे, और उसके बाद उस बच्चे ने मेहनत किया और एक अच्छी पोजीशन हासिल की।
1: ऐसे 10 इयर्स की जर्नी में बहुत सारे बच्चे आए, और आज वो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, न केवल इंडिया में जबकि फॉरेन कंट्री

0: में भी है, जिसमें एक दो इवेंट्स मुझे याद है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आप सभी श्रोताओं से
1: जी,
0: क्योंकि उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं और हो सकता है सुनने के बाद आपको भी ये लगे कि हाँ अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब हमारे पास कोई एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होती है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हम टूट से जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को ना खोते हुए भी बहुत आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है काफी साल पहले की बात है, एक लड़का मेरे पास आया था क्लास 11, तो क्लास 11 कॉमर्स में पढ़ा, 12th में पढ़ा, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से करीब 15 से 20 दिन पहले अनफॉर्चुनेटली उसके फादर की डेथ हो जाती है।
1: ओके।
0: एक तरफ 15 डेज बाद यूपी बोर्ड्स के पेपर और फादर का डेथ होना, कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि उस लड़के को मैंने बहुत मतलब पर्सनली सपोर्ट किया इस चीजों को लेकर के कि भाई जो चीजें हैपनिंग हो चुकी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक तरफ सोचने के लिए पूरी लाइफ आपके पास बची है और दूसरे तरफ आपके पास आपका आने वाला पूरा फ्यूचर है, तो आपको दोनों के बीच बैलेंस करके चलना है। मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे ने ये काम जरूर किया और फिर 12th में अप्रोक्स 80% से वो पास हुआ।
1: ओके।
0: उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली चला गया अपने प्रिपरेशंस को लेकर के और फाइनली वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया। करंट टाइम में वो कुवैत में है, बहुत अच्छी कंपनी में है, अच्छे पैकेज पर है। और वो आज भी कहता है कि अभी मैं आपको बताऊं उसकी मैरिज में मैं गया था तो उसने अपनी वाइफ से मेरे को मिलाया और बोला कि मैं तुमसे कहता था ना कि अगर मैं कॉमर्स में सी जानता हूं ना तो उस कॉमर्स का सी बताने वाले मेरे सामने आज खड़े हैं, आज तुम भी इनसे मिलना।
1: वाओ क्या बात है।
0: तो ये ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, आज तो कई अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो जिन बच्चों ने भी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस का, ऐसा नहीं कि केवल इसी तरीके से, हो सकता है किसी के पास इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा रही हो
1: जी,
0: या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी अगर आप अपने आप का जो डेडिकेशन है वो लगे रहते हैं, आप लगे रहते हैं, तो ऊपर वाला खुद आपके लिए रास्ता निकाल देता है, ये बात है। तो बहुत सारे बच्चे जिनके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो एक जरूर सोचें कि ये प्रॉब्लम्स आपको ये बताना चाहती है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, क्योंकि समस्याएं ईश्वर जीवन में उन्हीं के देता है, क्योंकि बॉल उसी के पास फेंकी जाती है जो अच्छी बैटिंग्स कर लेता है। तो प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आई है तो वो इसीलिए आई है कि आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत दूर फेंकेंगे अपने उस हार्डवर्क से और एक दिन आप अपना नेम फेम बहुत अच्छा।
1: क्या बात है, कितना परफेक्ट सा एग्जांपल दिया भाई। बचपन में तो बैट लेने के लिए लड़ पड़ते थे लेकिन आज पता चला कि वो बैट क्या था और वो बॉल कौन सी है। बहुत ही गहरी बात आपने
0: जी, वो बॉल उस प्रॉब्लम्स की थी और बैट वो था जो आपका डेडिकेशन था जिससे उस प्रॉब्लम्स को और बहुत दूर फेंकना चाहते हैं।
1: बेशक, और जरूर फेंकेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका डेडिकेशन होगा, उतनी दूर फेंकेंगे। मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कौन है जिनके बारे में आपने बताया, लेकिन मैं खुद भी पर्सनली काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। इतनी बुरे हालात में भी अगर इंसान इतना बेहतर कर सकता है तो शायद मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि हम और आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह की बातों को बताया। और जितने भी क्वेश्चंस हमने आपकी लाइफ से जुड़े हुए करे, आपकी करियर से जुड़े हुए, आपके ऑक्यूपेशन पेशे से जुड़े हुए, कि आपने उसका बखूबी उत्तर दिया। अब एकदम लास्ट क्वेश्चन चलने से पहले कि आप देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियो स्टेशन में बैठे हैं यानी 89.6 FM में, जिस तरह के शोज यहां से जाते हैं, टॉक शोज होते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जो इसको सुनते हैं यानी इसके जो लिसनर हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले वक्त में, गोंडा के लिए क्या चेंज ला रहा है 89.6 FM, आपको क्या लगता है?
0: देखिए मैं ये कहूंगा कि ये FM देवी पाटन मंडल का, यानी जिसमें आपकी चार डिस्ट्रिक्ट आती है, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती, इन चारों डिस्ट्रिक्ट यानी मंडल के लिए ये पहला FM है। नॉर्मल लोगों को पहले लगता था कि, या दूसरे को मुझे ही लगता था कि FM का मतलब सिर्फ गाने सुनना होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ
1: जी जी।
0: बट जब से ज्ञानस्थली FM स्टार्ट हुआ, मुझे ये लगा कि ये सिर्फ एक गाना सुनने के लिए नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को अवेयर करते हैं और आप लोगों को जो चीजें उनके पास नॉलेज, जिस चीजों की नहीं है, उनको देते हैं। जैसे मैंने कई बार आपका देखा कि आप फार्मर्स के प्रोग्राम करते हैं, आप डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं। हो सकता है कि आपने डॉक्टर से ऐसे क्वेश्चंस पूछे हों जो किसी पेशेंट्स जो सुन रहा हो, वो उस डॉक्टर से एडवाइस ना लेने के बजाय आपके FM से उसको नॉलेज हो गई और वो अपने आप को उस चीज को ठीक कर ले
1: जी।
0: तो आपका ये FM स्टेशन, मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को देना चाहूंगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए आप काम करते हैं तो जो लोगों की सोच हुआ करती थी एक नॉर्मल पर्सन की कि एफएम का मतलब सिर्फ गाने सुनना होता है, उस सोच को आप लोगों ने बखूबी चेंज कर दिया है। इसके लिए आप मेरे लिए, मेरी तरफ से तहे दिल से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं यही ब्लेसिंग्स करूंगा और क्या कह सकता हूं कि जिस तरीके से आप इतने कम समय में लोगों के दिलों की धड़कन ये एफएम बन चुकी है, आने वाले टाइम में लोगों के दिलों की धड़कन को आप ऐसे ही और बढ़ाते रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते ना कि एक गुरु का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स आपने इतने बच्चों की जिंदगी को संवारा है, इतने लोगों की दुआएं आपके साथ में है। अगर आपकी ये दुआएं हैं तो हम भी कहीं ना कहीं और भी बेहतर कर पाएंगे, हमको ये पूरी की पूरी उम्मीद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत की।
0: धन्यवाद नंदन जी, बहुत अच्छा लगा,
1: थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपसे बता दें कि आज हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स थॉमसन टू कॉलेज गोंडा। आप भी सुनते रहिए अपना FM 89.6 FM। अगला प्रोग्राम एंजॉय करिए और कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनकी जर्नी

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

आपकी अपनी शुक्र माइशी में गोडा मैसेज मसाला में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.67। क्या हाल चाल है पब्लिक, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल वर्मा जी सैदापुर से, सविता दुबे, अरविंद फ्रॉम मनकापुर, नाजिया अंसारी, और इसी के साथ में सुरेश कुमार जी चौक से, महेंद्र दीपेन राजस्थान से, और इसी के साथ में मालवे नगर से राजेश सिंह जी, राहुल तिवारी सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जीरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो दोस्तों, आज की गुंडा मैसेज मसाला में होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग, तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल चलिए रुक करते हैं अपनी महफिल की तरफ, अपने गुंडा मैसेज मसाला की महफिल की तरफ। शाम तो दोस्तों बज चुके हैं शाम के 6:19 और शहर की सुहानी हवाओं में घुल रही है पॉपकॉर्न और बॉलीवुड की मस्त खुशबू। जी हाँ, मैं हूँ आज की आपकी अपनी सब्स्टिट्यूट आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल, और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम, और आपके इस एफएम का आपका फेवरेट वाला इवनिंग शो गोंडा मैसेज मसाला। सो दोस्तों, वैसे तो हर बुधवार को हम और आप मिलकर यहाँ अंताक्षरी खेलते हैं, लेकिन आज बुधवार की शाम को थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहती है ये नॉट सो सिंपल। सो क्या आप सभी उस ट्विस्ट के लिए तैयार हैं? आज अंताक्षरी को थोड़ा ब्रेक देते हैं और इस शाम को डेडिकेट करते हैं सिनेमा के उसी जादू को, जहां हम खोलेंगे द अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरी का पिटारा, जिसमें बंद है आपकी पसंदीदा फिल्म और आपके पसंदीदा चटपटे मजेदार डायलॉग और अनसुने किस्से। तो दिल थाम कर बैठिए और अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और चलिए शुरू करते हैं आज का ये फिल्मी सफर इस सुपर डुपर डुपर डुपर हिट ट्रैक के साथ में। जी हाँ दोस्तों, हम लेंगे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक होगा कर्ज पिक्चर का सदाबहार गाना तो बोलो ओम शांति ओम। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन का आपका फेवरेट शो गोंडा मैसेज मसाला। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला शो में, आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनूप मिश्रा जी आपका स्वागत है, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला। सो बुधवार की इस सुहानी सुहानी सुहानी शाम में आपके साथ जुड़ी हूँ मैं, आपकी सब्स्टिट्यूट आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और दोस्तों, जब बात हो 70 के दशक के फिल्मों की, तो फिल्म अमर अकबर एंथोनी का वो सीन किसे याद नहीं होगा, याद है ना? कि याद दिलाऊं? जी हाँ दोस्तों, जहां अमिताभ बच्चन शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ही चोट पर पट्टी बांधते हैं, शराब के नशे में शीशे वाले अमिताभ बच्चन से ही बातें करते हैं और बोलते हैं, माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्वेस। ये सीन आज भी हम टीवी पर बहुत देखते हैं, कई बार देखते हैं, और जितनी बार देखते हैं उतनी बार तो हमारी हंसी ही नहीं रुकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब ये सीन शूट हो रहा था तब सेट पर असली अमिताभ बच्चन जी थे ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना फेमस सीन शूट हो रहा था, अमिताभ बच्चन का लीड रोल में थे वो, तब भी उनके बिना ही, मतलब वो असली अमिताभ थे ही नहीं, कोई और वो शूटिंग कर रहा था, क्या आपको ऐसा लग सकता है, कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी पूरी जानकारी। आपने बिल्कुल सही सुना है कि अमिताभ बच्चन जी ने पूरी शूटिंग नहीं की थी उस सीन का। उस दिन डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब को शूटिंग की बहुत ज्यादा जल्दी थी, लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग में शायद फंसे हुए थे। तो मनमोहन देसाई साहब एकदम आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह बहुत ही ज्यादा उतावले स्वभाव के थे, वो रुकना चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन का बॉडी डबल बना लिया, मींस डुप्लीकेट को बुलाया, और उसी को अमिताभ के कपड़े पहनाए और पीछे से पूरा का पूरा सीन शूट कर लिया। बाद में अब सोचिए, पूरी रामायण खत्म हो गई, सीता का अपहरण हो गया, सीता वापस आ भी गई, फिर उसके बाद में पता चलता है अमिताभ बच्चन को, जब अमिताभ बच्चन जी सेट पर आते हैं तब उनको पता चलता है कि मनमोहन देसाई ने ऑलरेडी उनके बॉडी डबल के साथ में ये सीन शूट कर लिया है, बस खाली उन्हें सिर्फ अपने चेहरे के पास वाले शॉट्स मींस क्लोजअप्स देने होंगे और डबिंग में अपनी आवाज का जादू चलाना होगा। जब ये सीन पूरा एडिट होकर तैयार हुआ, तो मनमोहन देसाई भी अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को देखकर हैरान हो गए थे, है ना कमाल की बात? क्यों, आपके लिए कमाल की बात नहीं है? और अगर कमाल की बात है तो चलिए इसी 70s के मजेदार दौर को याद करते हुए सुनते हैं ये सुपर हिट गाना अमर अकबर एंथोनी पिक्चर का, माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस। लेते हैं ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्वेस।
2: अनूप मिश्रा का कहना है कि सरप्राइजिंग प्रोग्राम विद आरजे सिंपल, वाओ इट्स अमेजिंग इवनिंग ऑफ वेंसडे। थैंक यू, इट मींस रियली अ लॉट। और इसी के साथ में अनिल वर्मा का सैदापुर से कहना है कि जमाने भर की खुशियां एक तरफ रख दी मैंने, पर तुम्हारे चेहरे की इस मुस्कान से कीमती चीनी भी नहीं। अच्छा जी, और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड जग्गू दादा, स्टे ट्यून्ड। और चले चलते हैं अपने अपने अपने अपने अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमने बात कर ली शाहरुख खान की, अब हम बात करेंगे, नहीं हमने बात की अमिताभ बच्चन की, और अब हम बात करेंगे शाहरुख खान की। जी हाँ दोस्तों, शाम ढल रही है और बॉलीवुड के किस्सों का मजा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का राज यानी शाहरुख खान की जगह कोई और हीरो होता? क्या आप गेस लगा सकते हैं? और अगर DDLJ में शाहरुख खान की जगह आप किसी और हीरो को देखना चाहते थे या फिर अभी भी देखना चाहते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आखिर शाहरुख खान की जगह आप किस हीरो को देखना चाहते थे दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर में। जल्दी जल्दी बताइएगा। हम तो किसी और कल्पना, मैं तो बताऊं तो मैं तो किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन सच तो ये है कि डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा पहले ये रोल सैफ अली खान को देना चाहते थे। यहाँ तक कि एक समय तो हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम क्रूज को लेने की भी बात चल रही थी, आपको पता है क्या? और जब आदित्य चोपड़ा ये रोल लेकर शाहरुख खान के पास गए, तो शाहरुख खान ने एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार इस फिल्म के लिए ना कह दिया था। शाहरुख खान को लगता था कि वो तो बस सिर्फ लड़ाई झगड़े और विलेन वाली फिल्मों को करने के लिए बने हैं, ये रोमांटिक हीरो बनना उनके बस की बात नहीं है। उनको स्टार्टिंग में यही लगता था SRK को हमारे, तो वो बार बार रिपीट एंड रिपीट इस मूवी के लिए मना कर रहे थे। लेकिन आदित्य चोपड़ा हार मानने वालों में से थोड़ी थे, उन्होंने शाहरुख को समझाया और आखिरकार मना ही लिया। और जब शाहरुख खान ने हाँ कहा तो उसके बाद जो हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं, फिल्म इतिहास बन गई। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सही समय पर हाँ कहना कितना बड़ा जादू कर देता है, ये मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, लेकिन शाहरुख खान भी बखूबी जानते हैं। सो इसी छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ में, इसी खूबसूरत से एहसास के साथ में, चलिए एंजॉय करते हैं DDLJ का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। Stay tuned everyone, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned everyone.

स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और हमारा और आपका साथ जारी है और बॉलीवुड का ये सुहाना और अनसुना सफर ऐसे ही बरकरार रहेगा। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मुझे एक चीज कहनी थी कि आजकल के डिजिटल दौर में तो किसी गाने में गूंज मींस इको डालना कितना आसान हो गया है ना। इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि जिसका जवाब नहीं है। अब तो हर एक कोई अपने घर में स्टूडियो खोल लेता है ना रिकॉर्डिंग के लिए। सो आजकल के इस डिजिटल दौर में किसी गाने में गूंज मींस इको इफेक्ट डालना बहुत आसान है। बस एक क्लिक कीजिए, सॉफ्टवेयर में प्लग इन लगाइए और बन गई बात। लेकिन जरा सोचिए, अरे सोचिए सोचिए, जरा सोचिए कि उस दौर का क्या, जब ना तो कंप्यूटर थे, ना डिजिटल स्टूडियो और ना ही आवाज से छेड़छाड़ करने वाले मॉडर्न टूल्स। दोस्तों बात है साल 1960 की, जब सिनेमा जगत की सबसे भव्य और ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम बनी थी। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि मुगले आजम मेरे किन किन लिसनरों ने देखा है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अपनी इस बहुत ही प्यारी सी अनसुनी सुहानी सी किस्से की तरफ। इस मुगले आजम बन रही थी, इस फिल्म का एक एक मंजर, एक एक संवाद, एक एक कन्वर्सेशन और एक एक गाना इतिहास रचने वाला था। फिल्म का सबसे प्रतिष्ठित गाना था प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने के संगीतकार थे महान नौशाद साहब। नौशाद साहब अपनी धुन में किसी भी तरह का समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। दृश्य ये था, मींस सीन ये था कि अनारकली बादशाह अकबर के भरे दरबार और विशाल शीश महल में बेखौफ होकर अपना प्यार कबूल कर रही थी। और नौशाद साहब चाहते थे कि जब लता मंगेशकर जी की आवाज आए तो उसमें भी वही शाही गूंज, गहराई और वही गमक सुनाई दे जो एक असली विशालकाय संगमरमर के महल में गूंजती है। लेकिन अब चुनौती तो ये थी ना दोस्तों कि स्टूडियो के बंद और शांत कमरे में महल जैसी गूंज कैसे पैदा की जाए। सो नौशाद जी ने बहुत सोचा और नौशाद साहब ने कई तरकीबें आजमाई, अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया। हर बार जो भी ट्राई किया बात जमी नहीं, उनके मन का कुछ मिल नहीं रहा था। फिर साउंड इंजीनियर्स भी परेशान हो चुके थे, इतना परेशान हो चुके थे नौशाद साहब से कि अब उनका भी कहीं मन नहीं लग रहा था। तभी जाके एक झटके में नौशाद साहब के दिमाग में एक बेहद अतरंगी और अनोखा आइडिया आया। आप सोचिए कौन सा अनोखा आइडिया आया होगा, बताइए बताइए, आप तो कुछ बताते ही नहीं है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद में, सारी चीजें ट्राई करने के बाद में, वो महल की गूंज वही को लाने के चक्कर में इतना परेशान हुए नौशाद जी। और फिर आया वो दिन जब उनके दिमाग में एक बेहद अतरंगी और अनोखा आइडिया आया। उन्होंने स्टूडियो के एक छोटे से बाथरूम की तरफ इशारा किया। जी हाँ, वहां बाथरूम जहाँ टाइल्स लगी हुई थी और जिसकी दीवारें आवाज को कुदरती रूप से रिफ्लेक्ट कर सकती थी। नौशाद साहब ने लता जी से झिझकते हुए कहा, लता क्या तुम इस बाथरूम के अंदर जाकर गाना गा सकती हो? अब जरा कल्पना कीजिए आप लोग, जस्ट इमेजिन कि लता मंगेशकर जी उस समय देश की सबसे बड़ी और सम्मानित सिंगर बन चुकी थी। कोई भी बड़ा कलाकार इस प्रस्ताव पर ऐतराज जता सकता था, लेकिन लता जी के लिए कला से बढ़कर कुछ नहीं था। बिना किसी नखरे, बिना किसी हिचकिचाहट के लता जी मुस्कुराई और स्टूडियो के उस छोटे से बाथरूम के अंदर जाकर बैठ गई। बाथरूम में माइक सेट किया गया, बाहर से नौशाद साहब ने इशारा किया और लता जी ने अपनी मखमली आवाज में तान छेड़ी, इश्क किया कोई चोरी नहीं की।
उस बाथरूम की तंग दीवारों से टकरा कर लता जी की आवाज निकली तो उसमें वही कुदरती गूंज पैदा हो गई जिसकी तलाश नौशाद साहब को महीनों से थी। कोई डिजिटल फिल्टर नहीं, कोई साउंड मिक्सर नहीं, बस एकदम प्योर संगीत और एक जीनियस विचार और समर्पण का वो अद्भुत जज्बा, अद्भुत जज्बा। क्या जुनून था ना दोस्तों उस दौर के कलाकारों में, कला के प्रति ऐसी दीवानगी, ऐसा समर्पण, ऐसा डेडिकेशन आज के दौर में कहाँ देखने को मिलता है। सो चलिए इसी बहुत ही खूबसूरत से अनसुने किस्से की तरफ से चलते हैं और एक ऐतिहासिक किस्से के बाद अब दिल थाम कर सुनते हैं भारतीय सिनेमा का वो अमर और सदाबहार नगमा, प्यार किया तो डरना क्या। तो एंजॉय करते हैं प्यार किया तो डरना क्या, और इसी के साथ लेती हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मिलेंगे फिर से आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला शो में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप डेफिनेटली देख रहे हैं रेडियो, सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हाँ।

वेलकम बैक इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला विद आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। और अब आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेकर आई है सिनेमा के गलियारों से एक और बेहद दिलचस्प और अनसुना किस्सा। तो क्या आप भी इस किस्से को सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब लिखा है कि तौंधी ए बादे मुखालिफ से ना घबराएओ काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी जब आपकी राह में मुश्किलें आएं या लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएं तो घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि वही चुनौतियां आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का जरिया बनती हैं। और ये बात फिल्म शोले के गब्बर सिंह यानी अमजद खान साहब पर 100% खरी उतरती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय सिनेमा का सबसे खौफनाक और प्रतिष्ठित विलेन, जिसके नाम से रामगढ़ ही नहीं पूरे देश के बच्चे सो जाया करते थे, वो पर्दे पर आते आते लगभग बाहर ही हो चुका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, कितने आदमी थे रे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, और ये कमबख्त नींद भी ना, जैसे कालजयी डायलॉग्स के बिना भारतीय सिनेमा का ये इतिहास अधूरा है। लेकिन सच ये है कि शूटिंग के शुरुआती दिनों में अमजद खान साहब को इस फिल्म से हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। किस्सा बड़े मजेदार है दोस्तों, मैं सुनाती हूँ, आप सुनना जरूर। गब्बर सिंह के रोल के लिए सबसे पहले दिग्गज अभिनेता डैनी जी को चुना गया था। लेकिन उस वक्त वो फिरोज खान साहब की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान जा रहे थे, जिसकी वजह से डेट्स का पंगा शुरू हो गया, डेट्स ऐसे क्लैश करने लगे थे, और इसके बाद एंट्री हुई रंगमंच के एक प्रतिभाशाली कलाकार अमजद खान की। अमजद जी ने रामगढ़ के सेट पर गब्बर का गेटअप लिया, मेला कुचेला फौजी कुर्ता और गले में चमचमाती कारतूसों की माला, चेहरे पर वहशीपन और जेब से खैनी निकाल कर रगड़ना शुरू किया। अभिनय के मामले में तो पहले ही दिन से छा गए थे, लेकिन असली पंगा फंसा तब उनकी आवाज जब सुनी गई। फिल्म के महान पटकथा लेखक जावेद अख्तर साहब को लगा कि अमजद खान की आवाज एक खूंखार और बेरहम डाकू के हिसाब से बहुत पतली है, भारी और प्रभावहीन है। जावेद साहब का मानना था कि इस आवाज में तो ना कड़वाहट और गहराई है, और जो थिएटर्स के दर्शकों के रोंगटे खड़े करें, ऐसी कोई चीजें मुझे इस एक्टर में दिख नहीं रही हैं। फिर उसके बाद में क्रू मेंबर्स ने तो यहाँ तक कहा कि बड़े पर्दे पर आवाज नहीं गूंजेगी, इससे अच्छा आप किसी और को अमजद खान की जगह रख दें और अमजद खान को रिप्लेस कर दें। लेकिन तभी एंट्री हुई फिल्म के कैप्टन और डायरेक्टर रमेश सिप्पी की। रमेश सिप्पी अपनी जिद पर चट्टान की तरह अड़ गए। उन्होंने हर विरोध को दरकिनार करते हुए कहा, मुझे अजमत की आवाज में वो सूखापन, वो बेरुखी, वो सनक दिखती है जो एक असली चंबल के डाकू में होनी चाहिए। मुझे उनकी आंखों में वो वहशीपन दिखता है जो किसी गर्जना का मोहताज नहीं। रमेश सिप्पी ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर अमजद खान पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाया। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिस आवाज को कमजोर और असरहीन माना जा रहा था, वही आवाज आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे डरावनी, प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा नकल की जाने वाली आवाज बन गई। इसे कहते हैं निर्देशक का अटूट विजन और कलाकार का

तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसी ऐतिहासिक फिल्म के एक क्लट और थिरका देने वाले धमाकेदार गाने की तरफ। मजा लेते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन उसके पहले अनूप मिश्रा का कहना है कि धीरे से लबों पर उतरा ये सवाल, धीरे से लबों पर उतरा ये सवाल, वो ज़्यादा खूबसूरत है या उसका ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और अब इन्जॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

भी देखेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुंडा मैसेज मसाला में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। एंड हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर के धर्म। दोस्तों, बॉलीवुड के अनसुने पन्नों को पलटने का ये सिलसिला तो जारी था, जारी है और शायद कुछ देर तक अभी जारी भी रहेगा। लेकिन इसके पहले मुझे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक और अमर शेर याद आ जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब किसी कलाकार में अपने फन को लेकर जुनून की हद तक जुनूनियत होती है ना दोस्तों, तो फिर इतिहास बनते देर नहीं लगती। और कुछ ऐसा ही हुआ था 1975 की एक और फिल्म दीवार के सेट पर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। दोस्तों, आपने फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन जी का वो आइकॉनिक नीली शर्ट और खाकी पैंट वाला लुक तो देखा ही होगा। शर्ट के नीचे दोनों सिरों पर बंधी हुई गांठ वो भी याद होगा। सो जो आगे चलकर वही गांठ, वही पैंट के, वही जो पैंट के पास बंधी हुई थी शर्ट में जो गांठ बंधी हुई थी, वही आगे चलकर पूरे भारत का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बन चुका था। हर कोई वैसे ही कपड़े सिलवाने लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ जी का वो अमर लुक किसी फैशन डिजाइनर का विजन नहीं था, बल्कि टेलर की एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा था। जी हाँ दोस्तों, किस्सा बेहद दिलचस्प है, चलिए ध्यान लगा के सुनिएगा। फिल्म में अमिताभ जी एक कुली का किरदार निभा रहे होते हैं। सीन की शूटिंग का दिन था और सेट पर दर्जनों जूनियर आर्टिस्ट तैयार खड़े थे। जैसे ही कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से अमिताभ जी के लिए नीली शर्ट आई, सब हैरान रह गए। दरअसल टेलर ने नाप लेने में इतनी बड़ी चूक कर दी थी कि वो शर्ट अमिताभ जी के नाप से बहुत ज्यादा लंबी और ढीली बन गई। शर्ट अमिताभ जी के घुटनों तक आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई कुर्ता पहना दिया गया हो। और उस जमाने में इतनी बड़ी स्टार कास्ट और लोकेशन के साथ शूटिंग को रीस्केड्यूल करना लाखों का नुकसान था। दूसरा, कॉस्ट्यूम बनाने में पूरा दिन लग जाता। सेट पर सन्नाटा छा गया और सब परेशान हो गए कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन यहाँ काम आई अमिताभ बच्चन जी की गजब की सूझबूझ और काम के प्रति उनका डेडिकेशन। अमिताभ जी ने डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, इसका हल मैं निकालता हूँ। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस लंबी शर्ट के नीचे के दोनों कोनों को पकड़ा और कमर तक कसकर गांठ लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कॉलर को थोड़ा सा ढीला कर लिया ताकि ये बेपरवाह और बागी इंसान का लुक दिखे। जैसे ही वो इस लुक में कैमरे के सामने आए, यश चोपड़ा साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे मित्रों, जो टेलर की एक गलती थी, वो पल भर में एक बेखौफ एंग्री यंग मैन के किरदार का सबसे बड़ा स्टाइल बन गया। अगर कोई और एक्टर होता ना, तो शायद सही नाप की शर्ट ना मिलने तक वैनिटी वैन में बैठा रहता। लेकिन अमिताभ जी ने उस गलती को ही अपना पहचान बना दिया। इसे कहते हैं हुनर और हाजिर जवाबी। तो आप लोगों को क्या लगता है, चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल वर्मा का कहना है सैदापुर से कि सिर्फ उंगलियां थामना मोहब्बत नहीं, उनकी फिक्र को खुद से जोड़ना मोहब्बत है। रवि का कहना है कि तेरे जाने के बाद ये हाल हुआ है, खुशियों का शहर जैसे वीरान हुआ है, हर जगह बस उदासी का साया है, दिल का अरमान अब बेजान हुआ है। स्टे ट्यून्ड, आवाज विकास गोंडा से रवि। और अब एंजॉय करते हैं ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं इस छोटे मोटे खोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

शो गुंडा मैसेज मसाला विद योर जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कजरा मोहब्बत वाला। जी हाँ, और इस गाने की तारीफ आई भी है हमारे पास में अनूप मिश्रा की तरफ से। इनका कहना है कि सॉन्ग सिलेक्शन सुपर्ब है, मेरे पसंद के सारे गाने बज रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी। जुड़े रहिएगा हमारे अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, क्योंकि जारी है बॉलीवुड की पुरानी अलमारियों से सुनहरे किस्से निकालने का हसीन सफर। तो अगर अलमारियों से, पुरानी अलमारियों से एक साथ मिलकर सुनहरे किस्सों का हसीन सफर नहीं निकालेंगे तो अकेले तो मजा आएगा नहीं। दोस्तों, एक महान शायर हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब साहब ने क्या खूब फरमाया है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं दिल में मगर, हजारों ख्वाहिशें हैं दिल में मगर, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जब बात सिनेमा की हो और दिल की गहराइयों में छिपे अरमानों की बात चले तो भला महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब की फिल्म कागज के फूल, जो 1959 में रिलीज हुई थी, और उसके अमर गीत वक्त ने किया क्या हंसी सितम को कैसे भूला जा सकता है। दोस्तों, आज के दौर में जब किसी गाने के सीन में रोशनी यानी लाइटिंग इफेक्ट देना होता है तो कैमरामैन के पास सैकड़ों मॉडर्न कंप्यूटर नियंत्रित लाइट्स होते हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भारतीय सिनेमा इतिहास का सबसे खूबसूरत जादुई और इमोशनल लाइट इफेक्ट किसी बिजली के लाइट से नहीं बल्कि सूरज की असली धूप और एक कांच के टुकड़े से बनाते हैं। किस्सा बेहद रूहानी है दोस्तों। फिल्म कागज के फूल में एक बेहद इमोशनल सीन था जहां वहशी दुनिया से दूर एक खाली और शांत स्टूडियो में वहीदा रहमान जी और गुरुदत्त साहब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। फिल्म के डायरेक्टर गुरुदत्त साहब और उनके महान सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति साहब चाहते थे कि इस गाने में आसमान से आती हुई रोशनी एक ऐसी दिव्य किरण, एक लाइट बीम दिखे जो सीधे वहीदा जी और गुरुदत्त पर जा पड़े। उस रोशनी के बीम में हवा में तैरते हुए धूल के कण भी दिखने चाहिए थे ताकि वो तन्हाई और वो बिछड़ने का दर्द साफ महसूस हो सके। लेकिन स्टूडियो के उस बड़े और अंधेरे हॉल में आर्टिफिशियल लाइट्स से वैसी असली और कुदरती रोशनी की बीम बन ही नहीं पा रही थी। लाइट डायरेक्टर परेशान थे, गुरुदत्त साहब सोच में डूबे थे और दिल ढल रहा था। तभी वीके मूर्ति साहब ने स्टूडियो की छत की तरफ देखा और छत पर एक छोटी सी खिड़की थी जहां से दोपहर की ढलती हुई धूप अंदर आ रही थी। मूर्ति साहब के दिमाग में एक मास्टर स्ट्रोक आया, उन्होंने तुरंत एक बड़ा सा शीशा उठाया, शीशा मंगवाया और उस शीशे को बाहर धूप में इस तरह इस एंगल में बनाकर रख दिया कि सूरज की रोशनी सीधे टकराकर छत की उस खिड़की से होती हुई अंधेरे स्टूडियो के अंदर तक चमकदार किरण बनकर प्रवेश करे, एंट्री ले और उस रोशनी को हवा में उभारने के लिए स्टूडियो में थोड़ा सा धुआं और धूल भी बिखेर दिया गया। जब कैमरा चालू हुआ, सुन रहे हैं ना आप, जब कैमरा चालू हुआ और वहीदा रहमान जी उस धूप की चमकीली बीम के बीच में आकर खड़ी हुई तो पूरा सेट मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने खुद उतरकर उस सीन में अपनी रूह फूंक दी है। बिना किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स या महंगी तकनीकों से, केवल एक शीशे और सूरज की रोशनी से बना वो सीन आज भी दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में,
लाइटिंग की मिसाल के रूप में पढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं पैशन। जब सोच और हुनर मिल जाए तो साधारण सिंपल सी धूप भी इतिहास रच देती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस रूहानी और जादुई नगमे में, खो जाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये मखमली सॉन्ग, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो एंजॉय करते हैं ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आपके अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी हमनवा, हम सफर, हम साथ ही आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला में, आपके अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, आपकी अपनी साथी, आपकी अपनी हमनवा के साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज बॉलीवुड के किस्सों का ये मजेदार सफर। जी हाँ दोस्तों, मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की दो लाइनें याद आती हैं मुझे कि जिस शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। बशीर जी का कहना है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। यानी जब आप किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब भी आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए। और ये बात बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ दोस्तों, आज शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो अपनी पहली सुपरहिट फिल्म दीवाना की शूटिंग कर रहे थे तब उनके पास सेट पर जाने के लिए एक कार तक नहीं था। किस्सा बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों और सादगी से भरा हुआ भी है, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। बात है साल 1992 की। शाहरुख खान उस समय मुंबई में नए नए आए थे और टीवी सीरियल फौजी से पहचान बना रहे थे। उन्हें फिल्म दीवाना में काम करने का मौका मिला। फिल्म की शूटिंग मुंबई की सड़कों और स्टूडियो में चल रही थी। एंड दोस्तों, उस जमाने में नए एक्टर्स को आज की तरह महंगी वैनिटी वैन या बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां नहीं मिलती थी। शाहरुख खान के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो रोज शूटिंग के लिए टैक्सी कर सके या अपनी खुद की कार खरीद सके। ऐसे में शाहरुख खान अपनी पुरानी लाल रंग की जिप्सी या मोटरसाइकिल से सीधे सेट पर पहुंचते थे। और कई बार तो जब रास्ते में ट्रैफिक होता या गाड़ी खराब हो जाती तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के मुंबई की आम लोकल बस में चढ़ जाते थे। जस्ट इमेजिन, एक हीरो जिसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है वो आम लोगों के बीच में सफर करके शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता था। जब वो सेट पर पहुंचते तो पसीने से तर बतर होते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता था उनकी आंखों में वही चमक, वही एक्टिंग, वही जुनून दिखता था जो आज हम देखते हैं। दोस्तों, फिल्म रिलीज हुई और दीवाना फिल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शाहरुख खान रातों रात स्टार बन गए, लेकिन उन्होंने बाद में इंटरव्यू में बताया कि बस और बाइक के उस सफर ने उन्हें इंसान और कलाकार के रूप में जमीन से जोड़े रखा है। अगर आज शाहरुख खान करोड़ों दिलों पर राज करते हैं तो उसकी वजह सिर्फ उनका स्टारडम नहीं बल्कि उनका वो कड़ा संघर्ष और सादगी है। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत फिल्म से सुनते हैं ये शाहरुख खान का वो धमाकेदार और ऑल टाइम फेवरेट गाना ऐसी दीवानगी। सो एंजॉय करते हैं ये गाना। लेती हूँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लेकिन उसके पहले अनूप मिश्रा जी का कहना है, वाह सिंपल जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही प्यारा, कभी ना भूलने वाली प्रेजेंटेशन, अनबिलीवेबल। पहले पता होता तो पूरा शो रिकॉर्ड कर लेता। कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर, लव यू एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अलॉट। आप हैं तभी सब कुछ है, अगर आप लोग ना होते तो ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आज भी शायद कहीं कोने में बैठी होती, या फिर शायद आज भी 9 to 5 ड्यूटी कर रही होती, या फिर शायद ये जो मैं अपने होम टाउन में रह के मतलब अपने फ्यूचर पे भी ध्यान दे रही हूँ, अपने घर वालों के साथ भी हूँ, वो शायद नहीं हो पाता, शायद मैं अब तक दिल्ली मुंबई कहीं ना कहीं बैठी होती, अगर ये स्टूडियो नहीं होता, आप लोग नहीं होते, आप लोग का प्यार नहीं मिलता। तो इट मीन्स रियली अलॉट, थैंक यू सो मच। एंड अब एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

Once again, welcome back in your Shuguna message masala with Rajesh Simple is not so simple. और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, हम आ चुके हैं हमारे अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में। तो क्या कहते हैं, शुरू करें बॉलीवुड की पुरानी और हसीन यादों का ये खूबसूरत सफर। बिल्कुल करेंगे दोस्तों। एक मशहूर शायर निदा फाजली साहब ने क्या खूब लिखा है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। यानी रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, जो इंसान हार नहीं मानता, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। और ऐसी ही एक मिसाल है बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन एक्टर बोमन ईरानी साहब। दोस्तों, आज हम बोमन ईरानी जी को थ्री इडियट्स के वायरस या मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर अस्थाना जैसे यादगार किरदारों के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि 44 साल मींस 44 ईयर 44 साल की उम्र तक बोमन जी ने किसी भी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया था। दोस्तों, किस्सा तो बेहद प्रेरणादायक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। बॉलीवुड में आने से पहले बोमन ईरानी जी कोई बड़े स्टार या अमीर घर के शहजादे तो बिल्कुल भी नहीं थे। अपनी जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने मुंबई के एक मशहूर बेकरी स्टोर पर कई सालों तक बतौर वेटर और कैशियर काम किया। इसके बाद ईरानी जी फोटोग्राफी शुरू कर दिए, उन्होंने धीरे धीरे फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया और सालों तक शादियों का, स्पोर्ट्स इवेंट्स का तस्वीरें खींचा करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन किस्मत उन्हें मौका नहीं दे रही थी। 40 की उम्र पार करने के बाद अक्सर लोग अपने सपनों को भूलकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन ईरानी जी के अंदर का कलाकार हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था मेरे दोस्तों। और आती है वो घड़ी जिसकी इंतजार सबको थी। फिर आया सन 2003, जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अपनी नई फिल्म मुन्ना भाई MBBS बना रहे थे। उन्होंने डॉक्टर अस्थाना के रोल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो सख्त भी दिखे और जिसकी कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त हो। उन्होंने बोमन ईरानी जी का थिएटर प्लेबैक देखा और तुरंत उन्हें इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। जब 44 साल की उम्र में ईरानी जी पहली बार मुन्ना भाई के सेट पर पहुंचे तो उनके सामने संजय दत्त जैसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बोमन जी ने बिना किसी झिझक के अपनी अनूठी हंसी और जबरदस्त अभिनय से वो जादू बिखेरा कि पूरा देश उनका मुरीद हो गया। जिंदगी के इस पड़ाव पर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, है ना, सेविंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि चलो मैं टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूँ, कुछ होते हैं लो मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, अरे मैं नहीं रहूँगा मेरे बच्चों के काम आएगा, मेरी बीवी के काम आएगा। क्यों प्लानिंग करनी, हम आज में खुश नहीं है, हम आज इकट्ठा करते जाएंगे बाद में, अरे कल का क्या पता किसी को। अरे दोस्तों, मेरे साथ इतना इंसिडेंट होता रहता है कि अब तो मेरा मन भर चुका है, मुझे तो नहीं करनी है सेविंग, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा यही हिसाब है, जो है वो आज है, कल पता नहीं हो ना हो। क्यों सही कहा ना मैंने। तो जिंदगी के जिस पड़ाव पर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं, उस उम्र में बोमन ईरानी जी ने बॉलीवुड में कदम रखा और रातों रात स्टार बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसी सीख और खूबसूरत जज्बे के साथ सुनते हैं फिल्म मुन्ना भाई MBBS का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। मिलती हूँ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे जे हॉस्पिटल आ रहे लाओ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने का, आप लोगों से अलविदा लेने का। आपका अगला प्रोग्राम फरमाइशी, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से होस्ट करेंगे आपके मेरे हम सब के आरजे मनु। तो क्या ख्याल है दोस्तों, लूं अलविदा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि फिल्में तो सिर्फ 3 घंटों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन सच कहूँ तो सिनेमा कभी ख़त्म नहीं होता। वो तो बस एक रील से दूसरी रील और एक दिल से दूसरे दिल में चलता रहता है। आज हमने देखा कि कभी एक छोटे से बाथरूम की कुदरती गूंज से अमर संगीत बना, तो कभी टेलर की एक ढीली शर्ट दुनिया का सबसे बड़ा फैशन बना। जिंदगी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है ना दोस्त। यहाँ जो खामियां दिखाती है, कभी कभी खामियां दिख जाती है, कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। और इसी तरह एक मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब की 2 पंक्तियां दिल को छू जाती हैं दोस्तों, कि सफर में साथ हमारे हवाए शाम चले, सफर में साथ हमारे हवाए शाम चले, जहाँ तक धूप रहे हम वहाँ तक चले। बस यही दुआ है कि आपकी जिंदगी का सफर यूं ही खूबसूरत रहे और बॉलीवुड के नगमे आपकी हर शाम को खास बनाते रहें। अब आपके हमराही, आपकी अपनी हमसाथी, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से इजाजत। आप सुन रहे हैं 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, अपने अंदर के उस कलाकार को कभी भी सोने मत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त कुछ नए किस्सों, कुछ पुरानी यादों और आपके पसंदीदा धुनों के साथ में। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए 89.6 FM। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेताहाशा प्यार। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

और अब चलते हैं भाई, गोंडा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है मनकापुर, और अरविंद मौर्य जी ने वहाँ से गीत भेजा है, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे ये तोहफा, प्यार का डेडिकेट किया है अपने सभी श्रोताओं को।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। और अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे से श्रोता जिनके चेहरे पर हमेशा रहती है मुस्कान। नाम है उनका राजू सलमानी और गीत चुना है उन्होंने पायल की झनकार रस्ते रस्ते। हालांकि उनके पैर में इस समय दर्द है लेकिन फिर भी पायल की झनकार तो वो नहीं रोक सकते। जी हाँ राजू।

जी हाँ बिल्कुल, पायल की झनकार रस्ते हंसते और चलते हैं भाई कार्तिक कश्यप जी की तरफ। फिल्म का नाम श्री 420, गीत के बोल है मेरा जूता है जापानी, पर्दे पर है राज कपूर और आवाज़ है जी मुकेश कुमार की।

हो जी हाँ। और अब चलते हैं धर्मेश त्रिपाठी जी की तरफ। और क्या बात है भाई, गजब की फिल्म चुनी है, मुकद्दर का सिकंदर, और गीत है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो।

0: हो। अगली फरमाइश पूरी करते हैं भाई मनोज मिश्रा जी, जो हमको सुनते हैं खरगोश चांदपुर से। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

जी हाँ, और फरमाइश पूरे करते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता की। भाई उनका गीत आया था लेकिन मिल नहीं रहा था, धागों से बंधन, बहुत ही प्यारा सा गीत। और ये गीत उन्होंने अपनी दोनों दीदियों को डेडिकेट किया है, और उनकी दोनों दीदियों के नाम है आकांक्षा जी और सिंपल जी।

0: विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता

0: बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
1: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के

0: लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिस घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के NUNG को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर

उल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए, मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, और आइए भाई, पंकज कुमार चतुर्वेदी जी की फरमाइश पर अब गीत सुनाते हैं आपको, धूम 3 का बहुत ही शानदार सा गीत, कमली कमली।

कमली जी हाँ भाई। और अब चलते हैं सुरेश चंद्र जी की तरफ और गीत उन्होंने भेजा है आज की रात मचा हुस्न का आंखों से लीजिए।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत है और बहुत ही प्यारा सा डांस। आज पता नहीं क्या बात है भाई, गीत ऐसे आ रहे हैं जिस पर डांस बहुत अच्छा है, चलते हैं भाई। हमारी अगली फरमाइश है राजू श्रीवास्तव जी की और उनको सुनना है गीत बेशरम रंग। क्या बात है भाई, चलते हैं फिर इस गीत की ओर।

जी हाँ, और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश। अब चलते हैं भाई प्रवीण जी की तरफ और उनको गीत सुनना है। भाई वो कहते हैं हम बम्बई वाला नहीं, हम यूपी के रहने वाले हैं और कुछ यूपी का सुनेंगे। जी हाँ, तो यूपी का क्या है, यूपी का ठुमका बहुत मशहूर है और वो भी तब जब गोविंदा हो पर्दे पर। तो यूपी वाला ठुमका लगा।

जी हाँ, अब चलते हैं भाई अगली फरमाइश, और आज की आखिरी फरमाइश हमारे पास है श्रीमती प्रमीरा देवी की, और उनको गीत सुनना है कोई हमें प्यार करे कोई जान निसार करे। जी हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे, आप रहने दीजिए। लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9876 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों की।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा ही नहीं बल्कि आपके दिलों की भी धड़कन। और आज बुधवार है और आज के दिन होता है हमारा कालीन का प्रोग्राम, अर्थात आज के दिन जो हमारे हफ्ते भर के श्रोता होते हैं वो बन जाते हैं वक्ता। तो आज आप सुनते हैं और हम सुनते हैं, जी हाँ। तो चलिए, आप घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि वक्त हो चुका है। मैं साथ धर्मेंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं आवास विकास से। मनुष्य जी गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक, गज़लों की दुनिया में मेरी उपस्थिति ही गज़लों में बहार बदल देती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी हैं और जी आपसे भी, और श्री तेज नारायण शुक्ला जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं प्रभु आपको। जी इतना कहते ही किसी की कॉल आ चुकी है और देखते हैं कौन हमारे साथ। भाई आज पहली

0: हेलो,
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार,
1: मैं तनुश्री बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से बात कर रही हैं आप?
1: जी सर।
0: क्या बात है, नमस्कार आपको।
1: जी नमस्कार सर, आप कैसे हैं?
0: जी बस आपका आशीर्वाद है, ईश्वर की अनुकंपा है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद स्नेह।
1: जी सर।
0: और लगता है कि आज आपको हम पहली बार सुन रहे हैं, महाराष्ट्र से आप सुन रही हैं हमको।
1: नहीं सर, जो सुबह का कार्यक्रम होता है ना हमारे गोंडा का, तो उसमें मैं जुड़ती हूँ, पर आपसे बात मेरी इस कार्यक्रम में पहली बार हुई है।
0: अच्छा, इस कार्यक्रम में पहली बार बातचीत हो रही है।
1: जी सर।
0: क्या बात है, तो तनु जी आप अपने बारे में कुछ बताएं पहले।
1: शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ
0: जी,
1: और 10वीं से पढ़ाई छोड़ दी है, और इसमें शास्त्रीय संगीत में ही अब करियर बनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपने करियर चुन लिया कि आपको करियर जो है वो सिंगिंग की फील्ड में ही बनाना है।
1: जी सर,
0: ये बहुत अच्छी बात है। तो महाराष्ट्र से आप हमको सुनती हैं और तनुश्री नाम है आपका।
1: अरे सर
0: जी, पिताजी क्या करते हैं आपके?
1: सर मेरे पिताजी तो मेडिकल में हैं, जॉब करते हैं।
0: जी जी, तो आज हमसे पहली बार आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ सुनने वाले हैं आपसे हम?
1: सर मैं आपको तीन गाने बताने वाली हूँ, आप उसमें तीन गाने में से एक गाना सिलेक्ट कर बताइए मैं कौन सा गाना गाऊँ। पहला तो है नन्ना मुन्ना राही हो, दूसरा है पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, और तीसरा है पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
0: पहला गाना आपने क्या बताया था, कौन सा गीत?
1: नन्ना मुन्ना राही हो।
0: और दूसरा?
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: और तीसरा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
0: तो मुझे लगता है तीसरे पर चलते हैं क्या?
1: ठीक है सर, ओके।
0: आपको जो, वैसे आपको जो अच्छा लगता हो आप वो सुनाए, हमारी पसंद से नहीं, जो
1: आप नहीं, नहीं, नहीं सर, आज मुझे आपकी पसंद का गीत सुनाना चाहती हूँ मैं।
0: अच्छा ये बात है, नहीं नहीं अपनी पसंद का भी आप सुनाए तो अच्छा लगेगा हमको।
1: नहीं सर, मुझे सच बता तो मुझे तीन ही पसंद है, पर मैं आप जो तीसरा नंबर का ऑप्शन चुनाना, मैं तो वही गाना मैं गाती हूँ।
0: जी जी तनुश्री जी, बिल्कुल आप गाइए।

0: क्या बात है भाई तनुश्री जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत प्यारा गीत सुनाया। और ये आपने हमारी पसंद का सुनाया था, कुछ अपनी पसंद की कुछ पंक्तियाँ अगर आप गुनगुना देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: जी सर, नहीं पर ये भी मेरा पसंद का ही सरगाना था।
0: हनी वो तो ठीक है, लेकिन इसकी फरमाइश हमने की थी, बस जो इंसान का जो बेस्ट होता है वो हमेशा एक होता है, मतलब द बेस्ट कैन नॉट बी टू। तो आपको भी कोई ऐसा गीत हुआ होगा जो लगा होगा कि सबसे अच्छा गीत ये है।
1: तो सर मुझे पूछो जरा, मुझे गीत थोड़ा सा गुनगुनाती हो।
0: जी।

पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, किसी बेकरारी है कैसा नशा है।

0: खता है, किसी ने रुकी है मेरे दिल को पता है। तुमसे दिल लगाने की सजा है, हा हा हा, तुमसे दिल लगाने की सजा है। जी सर।
1: क्या बात है भाई, बहुत खूब। और विशाल विद्यार्थी ने लिखा है, इंडियन आइडल जैसा आप मुंबई आ सकती हो, नहीं आ सकती हो कैसे बताएं, सिंगर ऑलरेडी मुंबई से है, क्या बात है, बट गुड सिंगिंग। और अनूप मिश्रा जी, भाई 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो याद बनेगी, बहुत अच्छा गाते हैं। इन्होंने भी लिखा है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारा बेटा, बहुत गाया आपने। नाजिया जी ने आपकी तारीफ कर दी है, वाह वाह। और सत्यनारायण शुक्ल जी, जो अपने आप में व्यक्तित्व, उन्होंने कहा है बेहतर प्रयास, और आपको आपके भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। जी जी जी। और बहुत अच्छा लगा महाराष्ट्र की आवाज यूपी में सुनकर, अच्छा लगा
0: जी सर। और मुझे भी आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, जो मतलब श्रोता मुझे बता रहे थे ना, बहुत अच्छा सर प्रस्तुति करते, ये बात तो बिल्कुल मतलब उन्होंने सच कहा था। वो भी अभी जो कार्यक्रम सुन रहे होंगे, वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे, तो उनको भी पता चल गया होगा कि मैं किन के बारे में बोल रही हूँ। तो सर वो बोले थे ना, तो एकदम सच बोला था कि सर आप बहुत बढ़िया कार्यक्रम पेश करते, सच में मतलब सच में आप बहुत बढ़िया कार्यक्रम पेश कर रहे हैं।
1: देखिए ऐसा है तनुश्री जी की, अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने एक पंक्ति पढ़ी है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है और सुनने वालों के कान में होती है। तो अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो आपको लगता है कि हर कोई अच्छा बोल रहा है, तो इसमें तारीफ आपकी है कि आप अच्छा सुनती हैं तो आपको लगता है कि अच्छा है।
0: पन आप उधर हमारे लिए बेटे हैं ना, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी तारीफ करें, क्योंकि सर जब अब देखो ना, अब मुझे कितनी तारीफें आई, तो ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई, आप ही बताइए। मतलब मैं कितना आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी, जैसे हम हमारे जैसे आरजे को सपोर्ट हम जैसे श्रोता करेंगे, तो आरजे की भी हिम्मत मतलब कितनी दुगनी हो जाएगी कि हाँ हम कर सकते।
1: जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, होनहार बिरवान के होत चीखने पार। तो जिस पौधे को आगे बढ़ना होता है उसकी पत्तियां शुरुआत से चिकनी होती हैं, और आपकी गायकी बता रही है कि एक ना एक दिन आप महाराष्ट्र में ही रहती हैं तो किसी दिन हम आपको किसी फिल्म में देखेंगे कि आज तनुश्री जी ने इस फिल्म में ये वाला गीत गाया है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब सोच कर मुझे खुशी हो रही है कि आप मतलब इतनी आवाज मेरी अच्छी है कि आप सब लोग पसंद करते, तो दिल से आप सबको थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और प्रणाम भी।
0: जी सर।
1: अच्छा, नमस्कार। महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे इसको? जी हाँ भाई, पहली बार मेरे साथ ये बेटी जुड़ी, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी
2: हेलो।
1: हेलो,
2: अरे नमस्कार मनु जी।
1: अरे दादा प्रणाम, कैसे हैं आप?
2: कैसे है?
1: हेलो
2: हेलो, हाँ जी
1: जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो भाई?
1: बस आपका आशीर्वाद,
2: बड़ा आपकी दुआएं हैं हमारे साथ।
1: जी जी, मतलब हम तो हमेशा शुभकामनाएं देंगे और आपका आशीर्वाद चाहते रहेंगे।
2: हम भी आपको आशीर्वाद ही देंगे
1: जी। और क्या मतलब, आप रक्षाबंधन गोंडा में मनाएंगे या गोरखपुर में मनाएंगे?
2: बताइए कि जहाँ है पहले वहाँ मना ले।
1: जी
2: उसको बोला हूँ मैं आज ही शिल्पी को।
1: जी
2: आज आप गोरखपुर।
1: जी
2: तो कहते नहीं दादा, उसके 2-4 दिन बाद आएंगे। चलिए घर में हमारे छोटे भाई साहब लगा दिए डेंटी पेंटी का काम।
1: जी जी,
2: तो आप उसी वजह से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो मैं सोच रहा था कि आज आपको
1: हाँ?
2: मेरे पास चॉइस थी दो गाने।
1: जी,
2: एक तो रफी साहब का।
1: जी,
2: तुम मुझे भुला ना पाओगे।
1: हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, पगला कहीं का।
2: हाँ और एक चंदन दास का, आप ही जाओ
1: कि जिंदगी कम है तुम नहीं हो तो क्या बात है।
2: तो मैं पता चंदन दास से कोशिश कर रहा हूँ।
1: जी दादा,
2: तो मेरा हौसला आप जाए कीजिएगा
1: एकदम। मतलब आप चंदन दास आपसे बढ़िया नहीं गाए हैं।
2: अरे फिर देखिए अभी तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: अभी आपने कहा हौसला आप जाए कीजिए, तो छोटा हम कैसे सोच सकते हैं। हमने कहा कुछ बड़ा सोचो।
2: तो हमने कहा
1: जी
2: सुन तो ले तब तो बोले।
1: नहीं आपने कहा मेरी हौसला आप जाए कीजिए, हमने तुरंत कर दी।
2: तो मैं गाऊं?
1: जी निसंदेह।
2: आपका वही गजल सुनाता हूं
1: जी,
2: क्योंकि मेरे पास सुबह से है, पता नहीं क्यों दिन भर हमारे दिमाग में रिमाइंडर
1: हो रहा है। कहीं कॉलेज की लाइफ का तो दौर नहीं याद आ रहा है आपको, किसी को देख कर कि आप भी जाओ कि जिंदगी कम है। जी
2: सुबह से ध्यान नहीं गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस गाने को, क्योंकि मैं सुबह से रियल बता रहा हूँ आपसे।
1: हाँ मतलब हम करें किसी की याद तो नहीं आ रही है, मतलब आपका माजी, आपका जो बीता हुआ कल है उसमें कोई था तो नहीं ऐसा?
2: शायद सपने में याद आया हो लेकिन सपने भूल गया।
1: जी जी जी जी जी, तो आप ही जाओ कि जिंदगी कम है।
2: कम है या
1: जी।

जिंदगी कम है, तुम रहे हो तो हर खुशी कम है।

नहीं हो तो हर खुशी कम है, अब जाओ कि जिंदगी कम है। वादा करके कौन आया नहीं, वादा करके कौन आया नहीं, वादा करके ये कौन आया नहीं शहर में।

जितने कम है तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, अभी जाओ कि जिंदगी कम है, अभी जाओ कि जिंदगी कम है, जाने क्या हो गया है मौसम को, जाने क्या हो गया है मौसम।

खुशी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, अभी जाओ।

0: मायना देख कर ख्याल आया, आयना देख कर ख्याल आया, आयना देख कर ख्याल आया, आजकल उनकी दोस्ती कम है, आज कल उनकी दोस्ती कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है, आवे जाओ कि जिंदगी कम है।
1: आखिरी सुन जा
2: जी दादा,
0: तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ।

0: हो तो हर खुशी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। आओ भी जाओ कि जिंदगी कम है।
1: धन्यवाद सर।
2: क्या बात है, क्या बात है। विशाल बेदर्दी ने लिखा है, हमेशा अच्छा गाते हैं दादा, आज तो अलग ही फॉर्म में है, बहुत बढ़िया गाया है, क्या बात है।
1: भाई सभी लोगों को धन्यवाद।
2: और सुजीत जी लिखते हैं, वाह भाई गजब का टैलेंट है।

0: हम दोनों चले आ जाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर पौधा हो जाएंगे।
1: नहीं नहीं उससे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तो आप, आपके लिए तो मोस्ट वेलकम ऑलवेज।
0: हाँ
1: कि रफी साहब का जो मैंने बताया था गाना, तुम मुझे बुला, तो अगर आपका इजाज़त हो तो मैं एक आधा सुना दूँ।
0: हाँ बिल्कुल सुना दीजिए, मतलब हम आपका साथ भी दे देंगे इसमें।
1: तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ही गए।
0: जी
1: पक्का
0: दादा,
1: कोई
0: अपनी बेइज्जती उनको नहीं करवानी है दादा, इसलिए आप अकेले गाइए। मतलब आप सुर में गाते हैं और हम महिषासुर में गाते हैं।
1: देखिए ये गलत बात, गाना गाना होता है, सुर बेसुर अलग बात। सुर और बेसुर जब आप दिल से गाएंगे तो वो सुर में ही होगा, बेसुर बिल्कुल नहीं होगा। सुनने वालों की अपनी अपनी अपने अपने कान है, अपने अपने चीज है।
0: ठीक है तो पहली पंक्ति हम गाते हैं दादा, इसके बाद पूरा आप गाइए, कैसा रहेगा?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट।
0: जब कभी भी सुनोगे

0: भुला न पाओगे
1: तुम मुझे जो भुला न पाओगे तुम मुझे यो भुला न पाओगे जब कभी भी सुनो थोड़ा बहुत ऊपर हो गया था
0: मेरे हाथों में तेरा चेहरा था गाइए दादा
1: एक्चुअली आपका सुर थोड़ा बहुत ऊपर हो गया है
0: हाँ तो नीचे कर लीजिए इसलिए तुम उसको नीचे कर दिया
1: तुम मुझे जो भुला न पाओगे तुम मुझे जो भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे ये तुम्हारे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे तुम मुझे यूं वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें ओ बहार

0: जब ख्यालों में मुझ को लाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं।
1: थैंक यू सर।
2: क्या बात है, अगला स्टेशन जब मैं गाता हूँ आपके लिए,
1: बिल्कुल
2: तो धुरा रह जाए तो ये अच्छा नहीं लगता है। मुझको देखे बिना करा

0: तुम मुझे यो।
1: बहुत बढ़िया है मनु भाई।
2: अरे नहीं दादा, बस आप लोगों से सीख रहे हैं।
1: नहीं नहीं, आपके पास है टैलेंट।
2: अरे नहीं, बिल्कुल टैलेंट नहीं है, मतलब आपने इतने दिन से रफी साहब का सुनाया तो हमको याद आ गया, हमने कहा दादा का साथ हम देंगे।
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने साथ दे के मेरा हौसला अफजाई किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नहीं नहीं, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं दादा। प्रणाम। हेलो।
3: हेलो।
2: चलिए, मतलब बड़ी देर से दिल पे आंखें लगी थी, बड़ी देर कर दी, मतलब हम ये सोच रहे थे कि मतलब ऐसी कौन सी खता हमसे हो गई है जो ये सजा मिल रही है।
3: नहीं, खता कुछ नहीं है सर, बस थोड़ा समय का अभाव है।
2: तो मतलब इसके पहले नहीं रहा, मतलब
3: नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि वो जिस समय प्रोग्राम होता है उस समय हम व्यस्त हो जाते हैं।
2: बताइए
3: आज, मतलब तो मैं सोचिए, मैं इतने दूर से लौट करके आई हूँ, फिर मैंने कहा दादा आज गजल सुनाए हैं तो मैं भी एक गजल गाऊंगी।
2: अरे क्या बात है, और आज दादा के साथ हमने भी आवाज में आवाज मिला दी।
3: हाँ मैं सुनी है आपकी कोशिश, बहुत अच्छी थी।
2: उन्होंने
3: दादा का गला तो आज चोक हो रहा था बहुत ज्यादा।
2: नहीं, उन्होंने सुर में गाया, हमने महिषा सुर में गाया।
3: नहीं नहीं, आपने भी सुर में गाया, ऐसी बात नहीं है।
2: मतलब कहाँ दादा, कहाँ हम, मतलब
3: नहीं ऐसी बात नहीं है सर, आप भी अब अच्छा प्रयत्न करते हैं, अच्छा गाते हैं आप भी, ऐसी बात नहीं है।
2: बस आप लोगों से सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं।
3: मेरे हस्बैंड बोलते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है।
2: हाँ, तो ये तो आपके पति पर लागू है।
3: तो मुझे लगता है कि ये कहावत कहीं ना कहीं सच हो रही है।
2: बिल्कुल सच हो रही है, और मतलब हम दादा को सुनकर, आपको सुनकर और बाकी सारे श्रोताओं को सुनकर सोचते हैं थोड़ा बहुत गाएं। तो आज बहुत दिनों के बाद आप आई और आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, कहिए तो मतलब आपकी जो है वो प्रतीक्षा रहती है।
3: जी जी जी, कोशिश करेंगे कंटिन्यूटी सर, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बस थोड़ा सा वही हो जाता है। ठीक है सर, शुरू करते हैं ना।
2: जी जी जी
3: जी। झुकी

झुके झुके सिधर तुम अपने दिल की जवा धड़कनों को जिंग

उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुके

रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे

0: झुकी झुकी सी नजरी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, इसे कहते हैं सो सुनार की और एक लोहार की, मतलब तीन हफ्ते से नहीं आए और चौथे हफ्ते में क्या गजल चुनी आपने। और मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर भगवान मुझे अगले जन्म में लड़की बनाए तो आवाज आपकी।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो हर बुधवार को 10 मिनट का समय हम गरीबों के लिए निकाल लिया कीजिए।
0: अरे नहीं सर, बिल्कुल कोशिश करते हैं सर, कभी कभी थोड़ी वो हो जाता है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगी।
1: हाँ जी, मतलब हम आपकी उस कोशिश का इंतजार करेंगे।
0: एक एक मैं नया गाना सुनाना चाहती हूँ अरिजीत सिंह का।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: शायद लिरिक्स इधर उधर हो जाए, मुझे याद नहीं है, बस लेकिन मैं फिर भी गाना चाहती हूँ थोड़ा सा।

0: सर, उल्टा सीधा गाया लेकिन मन था।
1: क्या बात है, क्या बात है, अनूप मिश्रा ने लिखा है, वाह मामी जी, सुपर गजब, मतलब सुपर गजब दोनों।
0: पूरे गजल पे पानी फेर दिया मैंने ये गा के।
1: नहीं, वो अरिजीत सिंह और वास्तव में मतलब क्या गाया है आपने, झुका झुका दिल में प्यार है।
0: ओके सर, थैंक यू।
1: अच्छा, चरण स्पर्श
0: खुश रहिए सर जी।
1: जी आशीर्वाद रहे दिखते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तेली बोल रहा हूँ।
1: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से
2: अविनाश तेली।
1: अविनाश तेली जी, क्या बात है भाई, बहुत हमको लगता है कि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है।
2: जी जी, आपसे पहली बार मुलाकात मेरा भी हो रहा है। इससे पहले तो मैं काफी बार जुड़ चुका हूँ इस कार्यक्रम में, और बल्कि जो ज्ञानस्थली 89.6 FM का नियमित श्रोता हूँ।
1: जी
2: जी सर जी, तो आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा। पहले कॉलर तनुश्री की आवाज़ में सुना, उसके बाद फिर एक भाई साहब ने बहुत अच्छे गजल सुनाए, और अभी एक बहन जी बहुत अच्छे गजल गा रही थी, तो सुनने में मजा आया। और जाते जाते उन्होंने अरिजीत सिंह की आवाज़ में भी एक जो उनका गीत था उनको गुनगुनाने की कोशिश किया, बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी, तो आपने क्या नाम बताया अपना?
2: अविनाश।
1: अविनाश जी, आप उनको सुनते हैं?
2: जी जी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं।
1: मतलब आप सुनते हैं कहाँ से हमको?
2: जी मैं तो त्रिपुरा से सुनता हूँ, और मोबाइल ऐप के जरिए।
1: जी त्रिपुरा से सुनते हैं आप उनको, क्या बात।
2: जी जी, तो
1: बहुत अच्छा लगा भाई, चलिए हमारा परिवार बढ़ रहा है।
2: जी जी, ये और इस परिवार को बढ़ाने के लिए अनु पांडे जी बिल्कुल बहुत तेज तरार कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने ही देखिए बहुत सारे मतलब कि मुझे भी जोड़ा है और बहुत सारी श्रोताओं को जोड़ा है उन्होंने।
1: जी जी, अनु जी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी श्रोता है, बहुत प्यारी श्रोता है।
2: जी जी जी
1: जी,
2: और जो जो पहली कॉलर थी उन्होंने ही जोड़ा था आज उनको।
1: जी जी जी,
2: तो
1: आपसे हम क्या सुनने वाले हैं?
2: जी मैं सुनाने वाला हूँ एक गीत जो कि बाजीगर मूवीज का टाइटल सॉन्ग है, कुमार सानू जी की आवाज में जो उन्होंने गाया था, इसको थोड़ा सा मैं अपनी आवाज में गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी।
2: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी प्यार में जागूं रात भर। बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ओ दिल के दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल भर, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, पास आओ बता दो ना बाबा, डर लग रहा है मुझको, गलत ना समझना मैं नहीं बादल लवारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा, प्यार पे कुर्बान मेरे दिल मेरी जान, तुझे लग जाए मेरी बाजी करो बाजीगर, तुम्हें बड़ा जादूगर, ओ दिल के दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी की तादार, बाजी कर मैं बाजीगर, दिल का मैं दिल बन, पहली नजर में बनी है तू मेरे सपनों की रानी, याद रखेगा ये दुनिया अपनी वफा की कहानी, ओ मेरा नींद चुरा के मेरी चैन चुरा के, कौन जाना किसी मोड़ पर, बाजीगर मैं बाजीगर,
1: क्या बात है भाई, बाजीगर में बाजीगर, बहुत ही प्यारा सा गीत। और बहुत अच्छे तरीके से आपने निभाया और सुजीत ने कहा वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जुड़ते रहेंगे, उम्मीद है बुधवार को आपकी उपस्थिति दर्ज होगी।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल उपस्थिति दर्ज रहेगी।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, और प्रतीक्षा रहेगी अगले बुधवार को पुनः आपकी फिर।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते रहेंगे। और शनिवार को जो आता है वो डॉक्टर लगता हूँ भी कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि उसमें हंसी हंसी मजाक का तड़का लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ वो डॉक्टर लव कोई है मतलब मैं नहीं जानता, वो शनिवार को हफ्ते में दिन आते हैं।
2: जी जी जी
1: मतलब हमसे उनका परिचय नहीं है कि डॉक्टर लव कौन है, लेकिन सुना है कि वो मतलब कहीं ऑक्सफोर्ड वगैरह से पीएचडी करके आए हैं, तो यहाँ हफ्ते में एक दिन आते हैं।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनता रहता हूँ, वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से अपना जो नुस्खा बताते हैं वो नुस्खा भी हम सबके लिए बहुत ही लाभ फायदेमंद होते हैं।
1: अच्छा हाँ हमको भी कुछ परेशानी है, हम भी उनसे पूछेंगे भाई जरा बताइए।
2: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: जी जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: जी जी धन्यवाद, शुभरात्रि।
1: जी जी शुभरात्रि, 10 बजे के 10:30 बजे होगी सर।
2: जी ओके ओके
1: अच्छा प्रणाम।
2: जी जी प्रणाम धन्यवाद।
1: जी हाँ भाई, तो ये हमारे साथ इतनी दूरी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अच्छा लग रहा है, देखते हैं फिर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
3: हेलो
1: हेलो
3: हाँ सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
3: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
1: जी आपके पीछे कुछ बज रहा है, जरा उसको बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है आपकी।
3: जी सर।
1: जी जी हेलो,
3: थोड़ा बहुत हम भी सुना दें सर।
1: जी जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत बिल्कुल सुनाइए।
3: मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का बहार तूने दी है, तेरी जुल्फ पर बनी है ये घटाओं की कहानी। मेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। जी सर
1: क्या बात है भाई, इश्क है तो जिससे इश्क है उससे बेपनाह है।
3: जी सर,
1: और आज के दौर में मोहब्बत की जरूरत ज्यादा है, और उम्मीद करते हैं कि ये मोहब्बत बनी रहेगी।
3: नहीं सर, आज का दौर ऐसा हो गया हेलो।
1: जी जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं।
3: आज का दौर ऐसा हो गया कि मोहब्बत जो है अब दूसरी चीज हो गई सर।
1: जी
3: तो इसीलिए कहना है
1: जी,
3: मोहब्बत करेंगे तो रोते रहेंगे और तो अश्कों से दामन को अपने हम भिगोते
1: रहेंगे।
3: जी सर
1: बहुत अच्छा है भाई, मोहब्बत करेंगे तो होते रहेंगे, अश्कों से दामन भिगोते रहेंगे, बहुत प्यारी बात।
3: शुक्रिया सर,
1: आपको बाद अभी मुबारकबाद दी।
3: आपको भी 12 रबीउल और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
3: और सभी सालों को भी मेरे तरफ से 12 रबीउल और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
1: अग्रिम।
3: जी सर,
1: खुदा हाफिज।
3: खुदा हाफिज।
1: जी हाँ भाई, तो ये मुमताज अंसारी जी हमारे साथ बने रहे और उन्होंने भाई सबको शुभकामना भी दे दी, अग्रिम शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और अब देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
4: गुड इवनिंग सर।
1: अरे चल स्पर्श,
4: आज कैसे फोन लग गया, मैं 10 मिनट से मिला रहा हूँ, इसलिए बिजी इतना जा रहा था तो मिलाया फिर, मगर लाओ काम आपसे खुद का मिला रहूंगा, फिर देख सकता है तो फोन।
1: मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांग रहा हूँ।
4: क्या हुआ?
1: मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।
4: अरे नहीं, अरे नहीं, देखिए ऐसा ये सब चीजें नहीं। अब देखिए वो तो मैंने बता दिया कि भाई जो है मिला रहे थे, नहीं मिल रहा था
1: जी,
4: और ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई आपका कोई फॉल्ट ही नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं।
1: नहीं मतलब जब श्रोता कई बार
4: नहीं, भी देखिए ऐसा है कि हर आदमी प्रयास करता है, और आज तो अभी मैं जो है आखिरी देर से लगा रहा, देखिए सब लोग लगे हैं तो उसमें कोई क्या कर सकता है। वैसे आज आपको मैं खुशखबरी दे दूं
1: जी,
4: मैं आपका प्रोग्राम आज सुन भी रहा।
1: क्या बात है?
4: सुन इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने हमारा भतीजा आया है अभी, तो मैंने इसको सही कराया, भी आईडी वगैरह डाला तो नहीं है।
1: हाँ।
4: और मैं दादा से सुन रहा हूँ
1: जी,
4: दादा के बाद उनकी शायद वाइफ आई, क्या नाम था उनका?
1: उनकी बहन जी है श्रीपी।
4: हाँ अच्छा, बहन है उनकी।
1: हाँ, दादा की बहन।
4: तो वही मतलब जो है, अच्छा चलिए बातचीत तो बहुत, क्योंकि समय भी कम है बहुत, तो उसमें जो है
1: जी।
4: तो मैं एक गाना, चूंकि राखी आ रहा है
1: जी जी,
4: तो मैंने कहा कि भाई अब तो आप राखी के बाद ही मिलेंगे
1: जी,
4: तो कहिए तो इजाजत हो, तो थोड़ा सा दो चार लाइन है।
1: अरे साहब क्या बात
4: है, मतलब हमारी आवाज सही आ रही है?
1: अरे आवाज आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, जितनी
4: आप। वो पंखा चल रहा था तेज,
1: नहीं
4: नहीं मैंने वो लगा लिया था ईयरफोन वगैरह, तो हमने कहा था पूछ ले पहले।
1: नहीं नहीं क्लियर है।
4: चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ
1: जी,
4: ठीक है।
1: हाय हाय हाय।

फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका

नजरों से हो गई तो दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। सुखी सॉरी सर, जब फिर से मैं सुना, जब

हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हम्म,

0: मुझको कैसे गई भूल, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मनु जी
1: क्या जी जी
0: इस गाने की सबसे शानदार लाइन है, अभी मुझे आखिरी में एक लाइन है,

0: में संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। चलिए थैंक यू, और सभी हमारी बहनों को राखी की एडवांस बधाई।
1: यू ही नहीं, मैं आपको गोंडा का किशोर कुमार कहता हूँ।
0: अरे नहीं सर, बस आप का वो है
1: और देखिए
0: थोड़ा बहुत शौक है।
1: हाँ जी, लिख दिया है कि भाई बहुत खूब आर्केस्ट्रा जी, और अनूप जी ने लिखा है वाह आर्केस्ट्रा जी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अनिल शास्त्री ने आपकी तारीफ की है। अरविंद जी
0: लिखापुर
1: से मेरी बहना है और आपकी आवाज बहुत पसंद आई भाई अरविंद जी को। प्रीति शुक्ला जी ने आपको जो है वो तारे सितारे चॉकलेट सब जो बहन,
0: मैं सबको देख रहा हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या लिख रहा है
1: जी।
0: हमने वो ऑन कर लिया तो थोड़ा हमें अच्छा भी लग रहा है।
1: अरे आप,
0: और
1: आप हमारी महफिल की शोभा है साहब।
0: अरे नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं सब देखिए, अरे कोई 19 कोई 20 सब ऐसे रहता है। और देखिए किसी का अभी मैंने एक लाइन जो है सुन रहा था, तो आपका मैंने एक चीज देखा कि आप में कोई कितना भी डाउन पड़े आप कुछ बहुत अच्छा करते।
1: अरे नहीं नहीं
0: ऐसा मतलब नहीं है ऐसा। देखिए सबसे बड़ा चीज वही होता है जो मनोबल गिरने लगे
1: जी।
0: और काफी लोग सुना गए उसमें, हमने देखा सबको आपने बहुत ही ज्यादा उपलाइज किया। हम लोग को जो है बहुत पुराने हो गए, गाना वाना गाते हैं, हम लोगों को करिए ना करिए संतन है। चलिए सर दूसरे को मौका दीजिए, और प्रीति जी को मैं पहले से एडवांस में बधाई दे दूं। मैं बहुत दिन बाद चैट बॉक्स पे आया हूं, और चूंकि कुछ कारण से मैं नहीं आ पा रहा था। चलिए सभी जितनी हमारी बहने हैं, आशू जी, प्रीति जी, शिल्पी जी, और भी जो मतलब याद तो नहीं है, सबको एडवांस में राखी की शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए बॉस नमस्कार, खुश रहिए, खुश रहिए।
1: जय भाई, देखते हैं अब कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो हेलो,
1: ओहो मतलब
2: नमस्कार सर
1: जी। हाँ इस अंदाज में तो केवल एक इंसान बोलता है।
2: कैसे हैं आप?
1: बस जैसे रख ले आप।
2: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो संभाल के रखा हुआ
1: है। तो वैसे ही है एकदम।
2: जी मौसम कैसा है आपके उधर का?
1: मौसम बहुत शानदार है।
2: अच्छा अच्छा, मौसम हमारे यहाँ का बहुत खूबसूरत है, बदली छाई हुई है।
1: और
2: जी जी, और ऐसा लगता है कि बारिश हो ही जाएगी। जी बारिश हो ही जाएगी जी सर।
1: तो क्या सुनने वाले हैं आज आप
2: सर? कोई सॉन्ग मेरे पास है ही नहीं जो मैं सुनाऊँ आपको। और जी
1: ऐसा कैसे हो सकता है?
2: हाँ वो तो नहीं सकता, लेकिन मैं सोच रही कौन सा सॉन्ग चूज करूँ जो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो मेरे दिमाग में श्रेया जी का एक सॉन्ग है जो गजनी मूवी से है, उसका मैं एक अंतरा गाना चाहूंगी जो श्रेया जी ने गाया है।
1: जी
2: शुरू करें सर?
1: निसंदेह
2: जी। बदले रास्ते झरने और नदी, बदले बरखा की रिमझिम, छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं, बदले बरखा की टिम टिम, बदलेंगी ऋतु पर मैं रहूंगी सदा उसी तरह तेरी बाहों में भागीदारी, हर लम्हा हर पल कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है जमीन पे, हर पल हर लम्हा। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, कहाँ कहता है कि मतलब देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, पंक्तियों में आपने बहुत बड़ी बात कही।
2: जी सर, तो दिमाग में कहीं ना कहीं था, तुमने कहा चलो ठीक है। वैसे तो कोई सॉन्ग है नहीं जो मैं अच्छे से गुनगुना पाऊँ, क्योंकि इस समय बहुत बहुत कम टाइम दे पाती हूँ। इस समय मेरा फोकस किसी और चीज पे है।
1: मतलब हम समझ रहे हैं कि फोकस उस चीज पर है, तो अच्छी बात है।
2: सर फोकस किताबों पे है।
1: हाँ वही हम कह रहे हैं कि आप जो है वो कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ली इसलिए।
2: अरे नहीं नहीं सर, सरकारी इतनी अच्छी किस्मत का सरकारी नहीं, वो सर उसकी बात नहीं है, मैं एक्चुअली समय बुक्स ज्यादा उसको ज्यादा प्रेफर दे रही हूँ, उसको ज्यादा टाइम दे रही हूँ।
1: चलिए थोड़ा सा टाइम हमको भी दे दिया कीजिए, हम गरीबों के हिस्से में।
2: जी जी, अरे नहीं सर बिल्कुल सर, आपके वो जितने बिजी जाते हैं बताइए हम क्या करें। आपको पता सर, अभी हम खाना खा के जब छूटे हैं, बर्तन धुलने जा रहे थे
1: जी,
2: फिर भी हमने हाथ धुल के कॉल किया है क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा बिजी जा रही थी आपकी।
1: इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
2: अरे नहीं शुक्रगुजार की ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो हम लोग का भी काम है ना
1: जी।
2: तो इस समय में मैंने सर अभी दो किताबें पढ़ी है, तो अब मैं तीसरी किताब पढ़ रही हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, और हमारी किताब और पढ़िएगा, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र की पुस्तक है, और मौका मिलेगा तो पढ़िएगा
2: सर, जरूर मौका निकालेंगे। एक बार फिर से बताइए सर,
1: इंडिया आफ्टर गांधी,
2: इंदिरा,
1: इंडिया,
2: ओके, इंडिया
1: आफ्टर गांधी।
2: अच्छा अच्छा, आफ्टर गांधी, ओके ठीक है। लेकिन सर मैंने इस समय उपन्यास मैंने अभी पढ़ी है,
1: तो यशपाल की एक उपन्यास पढ़िएगा उसको
2: जी। मैंने, मैं बताऊँ आपको कौन सी पढ़ी है मैंने
1: जी,
2: मैंने पढ़ी है दिव्य प्रकाश दुबे जी की अक्टूबर जंक्शन, और धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई गुनाहों का देवता।
1: क्या बात है।
2: और श्याम नारायण जोशी जी की कश्यप।
1: क्या बात है, तीनों एक से बढ़कर एक है
2: जी, थैंक यू। तो ये दो बुक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, तो तीसरी कसम पढ़ रही हूँ, मैंने आधी पढ़ी है।
1: चलिए, तो आपका किताबों से मोहब्बत जुड़ी रहे, और बुधवार को आप हमारी उपस्थिति में प्रार्थना
2: जी। और मैं इस बार जो है, मैं अगर आऊंगी तो मैं एक एक बहुत प्यारे सॉन्ग के साथ आऊंगी, जो मुझे बहुत पसंद है
1: जी।
2: ओके सर, ओके, नमस्कार सर।
1: हेलो,
3: क्या मनु जी।
1: अरे सौ चांद भी निकलेंगे तो क्या बात है, कैसे हैं अनुप जी आप।
3: सर अच्छा हूँ, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, तो वही वाला हाल हो गया कि हम ही नहीं थे तेरे चाहने वाले, तेरे चाहने वालों का तो काफिला निकला, सोचा था करूंगा शिकायत ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाला भी आपका चाहने वाला निकला।
1: मतलब ये सब आप श्रोताओं को डेडिकेट कर रहे हैं
3: जी।
1: जी तो मतलब क्या किया जाए साहब, हम आपसे भी क्षमा ही मांग सकते हैं।
3: नहीं नहीं सर, कम से कम चलिए, मुझे ये चीज अच्छी लग रही है कि आज मतलब शो उस मुकाम पर है कि हमको मौका नहीं मिल रहा है कि कॉल मतलब मैं कर पाऊँ, बिजी बिजी बिजी बिजी।
1: नहीं मतलब इसके लिए तो हम क्षमा चाहती हैं भाई, लेकिन अपनी तरफ से मैं ये नहीं करता।
3: नहीं सर, ये तो चलिए, तो और आप ठीक हैं
1: जी। आशीर्वाद आपका।
3: शुरुआत गोरखपुर से हुई थी और समापन गोंडा में होगा
1: जी
3: तो गाना सर आज मैंने एक सुना है, थोड़ा सा मतलब मर्म स्पर्शी गाना है ये
1: जी।
3: बेटियां पराया धन होती हैं, विदा हो जाती हैं घर से, तो उसी पे मैंने गाना लिया है, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे।
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे, क्या गीत चुन लिया आपने मुझे, क्या
3: जी सर। तो मैं शुरू करता हूँ सर
1: जी।
3: महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। मैं

चले डोली चलेगी, डोली में डोलेगा जिया, डोली में डोलेगा जिया, के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। जिस घर जाए स्वर्ग बन

0: दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ, के रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, के रानी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कोई ना रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तेरानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है अनूप जी, क्या क्या गीत चुन लिया आपने किस मौके पर, क्या बात है
2: सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब गीत तो खैर ये तो एक सांसारिक रस्म है, लेकिन जो पिता अपने ये नहीं चाहता कि कभी उसकी बेटी को कोई देखे, उस बेटी को वो चंद मुलाकातों के बाद, मतलब लड़के लड़की वाले जब लड़के वालों के घर जाते हैं तो चंद मुलाकातें ही होती हैं, और चंद मुलाकातों के बाद अपनी स्कूल सी बच्ची को वो उनको सौंप देते हैं, उसके बाद जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि मतलब ऐसे व्यक्तियों को जीने का अधिकार नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, उनको चौराहे पर गोली मारनी चाहिए।
2: नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता गोली मारने, मतलब दिस इज द ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाएगा, बट इतना कहूंगा उनको जीने का अधिकार नहीं, प्रभु उनकी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर दे।
1: दो पंक्तियां मैं भी कहूंगा।
2: कहिए सर।
1: बाबुल पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के

0: हम चाहेंगे कि ये कुछ दिन का ठिकाना की जगह हर दिन का ठिकाना हो जाए इस गीत में, तो शायद गीत और अच्छा हो जाएगा।
1: बिल्कुल सर, आज मैं बताऊं आपसे, आज मैं गाने वाला था दो गाने। पहला गाना तो जो आर के जी ने गा दिया वो गाने वाला था मैं, और दूसरा जो मुमताज अंसारी जी ने गाया मुझे इश्क है तुझे से। जब दोनों गाने गा दिए गए मैं सोच रहा था कि मैं आज गाऊं क्या, फिर मुझे अचानक ये गाना याद आया कि महलों का राजा मिलाल आवाज ये गाते, लता जी की आवाज में है बट मेल वॉइस पता नहीं कैसा लगेगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा।
0: आपने अनूप जी बहुत प्यारा गाया और आज शाम तो वास्तव में बहुत शानदार है।
1: आज सर मैं अगर कहूँ तो आज शुरुआत में जो आज सिंपल जी का प्रोग्राम था जो आज उन्होंने किया है आज 6 से लेके 8:30 के बीच में
0: जी,
1: 6 से लेके 7:45 के बीच में
0: जी,
1: गोंडा जो भी मतलब उसको प्रोग्राम का नाम गोंडा मैजिक मसाला है शायद आई थिंक, और जब से ज्ञानस्थली रेडियो शुरू हुआ है तब से उतना अच्छा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ था, सुपर प्रोग्राम था, मतलब एक एज जस्ट लाइक अ मैच्योर आरजे, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त।
0: क्या बात है भाई,
1: वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था आज का, और तब से लेके मतलब अब तक का प्रोग्राम पूरा बेहतर ही चलता चला गया।
0: मतलब आज का दिन याद रखा जाएगा,
1: दिल को याद रखा जाएगा सर।
0: क्या बात है, तारीख का भी नोट कर लीजिए और भी नोट कर लीजिए।
1: सर अगर इजाजत हो तो 4 लाइनें और सुना दूं
0: जी,
1: क्योंकि समय तो ज्यादा ले रहा हूं मैं।
0: जी जी बस 4 पंक्तियों का सुना दूं। कल
1: नन्हा सा गुल खिले गांगना सुनी

चननिया गुनगुनाएगी, चननिया गुनगुनाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी, आपको बहुत बहुत आभार आपका और प्रणाम आपको।
2: थैंक यू सर।
1: जी हाँ मित्रों, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। आज हम सविता जी को नहीं सुन पाए, लेकिन शनिवार को जरूर सुनेंगे। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आप सभी को आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गणेश की 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पर मनोज कहां सुनने को तैयार था। 30 साल की अधीरा का मुंह जैसे अपमान से लाल पड़ गया था। मनोज और अधीरा की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। मनोज औसत रंग रूप का युवक था और अधीरा गोरी लंबी पढ़ी लिखी आत्मविश्वासी घरेलू और खुश मिजाज युवती थी। पर मनोज उसे बहुत प्रेम करने के साथ साथ उसे लेकर बहुत पोजेसिव था। कोई उसे एक नजर देख भी ले, ये मनोज को कतई बर्दाश्त नहीं था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना अधीरा अपना देह त्याग चुकी थी और मनोज वहां बैठा पुरानी बातें याद कर रहा था कि किस तरह आज से कई साल पहले ही उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था मनोज के शक्की स्वभाव की वजह से। अब आगे दूध वाला जब अपनी बीवी के साथ उसकी नई कोठी पर आया तो उस दिन सोमवार था। अधीरा को अचानक अपने दोनों बेटे सजल और सारांश के साथ मायके जाना पड़ गया था। साप्ताहिक अवकाश के चलते मनोज अपने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान नहीं गया था और घर पर ही था। बस शक का कीड़ा उसके मन में कुंडली जमा कर बैठ गया और उस दिन अधीरा को डसने लगा। अधीरा बोली, दूध वाला गांव से रोज बाइक से शहर आता है तो अपनी बीवी को ले आया होगा, उसको सामान दिलाने या डॉक्टर को दिखाने, कितने ही काम होते हैं गांव वालों को शहर में। पर मनोज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अधीरा के खिलते चेहरे पे जैसे पतझड़ आ गया, आवेश में चेहरा गुस्से से तमतमा आया। पर माँ की वो सीख कि गुस्से में पति कुछ भी कहे तो उस समय चुप रह जाना, ये अविश्वास का दीमक गृहस्थी की जड़ों को खोखला कर देता है, याद करके वो चुप रह गई। 8 और 10 वर्षीय सजल और सारांश इस सब से बेखबर थे, पर माँ की सूनी सूनी रोती आंखें, मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कहना चाहता था मगर मासूम बच्चे उन्हें पढ़ ही नहीं पाते थे। एक आम युवती की तरह उसने बस प्रेम पूर्ण जीवन की ही कामना की थी। जिन लम्हों की तमन्ना उसने तमाम उम्र की, वो लम्हे मिले तो पर इतने कम कि उनका मिलना ना मिलने के दुख से दोगुना हो उठा। तेज रोने की आवाज से मनोज जैसे अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आया। अधीरा की दोनों छोटी बहनें अनुभा और सुगंधा भी आ गई थीं और लाल साड़ी में लिपटी लेटी अधीरा को देखकर उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ा था। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से मनोज को ही घूर रही थी। हाय दीदी, इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई, अनुभा रोते रोते कह रही थी। छोटी बहन सुगंधा को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, अपने हाथों से अधीरा को छू छू कर देख रही थी। दीदी उठो, देखो हम आ गए, अब तो उठ जाओ, देखो हम अचानक ही आ गए, वो भी बिना तुम्हारे बुलावे के। हर बार तुम्हें मैं बुलाती थी ना कि आ जाओ दीदी, अब उठ भी जाओ ना, इतनी भी क्या नाराजगी। पर अधीरा तो इन सब से दूर जा चुकी थी। बड़ी सी कोठी के शानदार ड्राइंग रूम के बीच में अधीरा आज शांत लेटी थी। हमेशा की तरह हंसती खेलती मुस्कुराती अपने घर को सजाती सवारती अधीरा अब कभी नहीं दिखेगी किसी को।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना अधीरा का पति मनोज बहुत ही शक्की स्वभाव का था और उसके इस व्यवहार से अधीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने जैसे मनोज से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया था और आज जब अधीरा अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी तो मनोज नजरें उठाने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। अब आगे मनोज ड्राइंग रूम के दरवाजे पर काफी दूर बैठा था। वहां से उसे अधीरा का चेहरा नहीं दिख रहा था। दोनों बहनों के रुदन से माहौल और भी गमगीन हो गया। पास बैठी परिवार की अन्य औरतें और अधीरा की सहेलियां भी तेज स्वर में रोने लगीं। अनुभा अपनी बड़ी बहन के पास बैठकर सुबक रही थी और आग भरी नजरों से मनोज को ही घूर रही थी। एक पल को दोनों की नजरें मिल गईं। ओह, इतनी नफरत, घृणा। मनोज की नजरें झुक गईं। हाँ, हूं मैं इस लायक। मैंने कब उसे चैन से रहने दिया? उस दूध वाले प्रकरण के बाद कुछ साल सब ठीक रहा। दूध वाले को हटा दिया गया। अब दूध एक बूढ़ा नौकर डेयरी से लाने लगा था। अधीरा भी धीरे धीरे सब भूल गई ऐसा लगता था, पर अविश्वास की फांस उसके दिल की गहराइयों तक समा चुकी थी। 6 साल बाद एक रोज, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा आ पाना संभव नहीं है। अधीरा किसी से बात कर रही थी। मनोज को अंदर आते देख उसने झट से फोन रख दिया। इतनी बात तो मनोज ने सुन ही ली थी और शक का फन उफान पर था। किसका फोन था? किसी का नहीं, मेरी एक सहेली अंजलि का था। घर पर बुला रही थी मुझे। आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या? पर बात आई गई नहीं हुई। उसी दिन मनोज ने चुपचाप कॉल डिटेल निकलवा ली। ललित नाम के किसी शख्स ने

वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। शादी के 10 सालों बाद अब उसके घर में बेटी हुई है। उसके नामकरण में बुला रहा था मुझे। उसकी पत्नी अंजलि भी मेरी अच्छी दोस्त है, पर कई वर्षों से मिलना नहीं हुआ है उन दोनों से। अधीरा ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, पर अविश्वास में अंधा हो मनोज ये सब सुनने मानने को तैयार ही नहीं था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना, मनोज अपनी पत्नी अधीरा पर बहुत शक करता था। उसके शकी स्वभाव ने अधीरा को अंदर तक तोड़ दिया था। फिर एक समय ऐसा आया जब उनके रिश्ते में कोई मिठास नहीं बची, और अब जबकि अधीरा ये संसार छोड़कर जा चुकी थी, तब मनोज को अपनी करनी पर बहुत अफसोस हो रहा था और पुरानी सारी बातें याद आ रही थीं। अब किसका इंतजार है? मृतदेह को इतने घंटों तक घर में रखना ठीक नहीं।

कोई बोल रहा था। आवाज सुनकर मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। काश सब कुछ वहीं रुक गया होता, काश उसने अपने दिल के साथ कुछ दिमाग की भी सुन ली होती, मगर ऐसा ना हो सका, वो मन ही मन सोच रहा था। अजीब सा विरोधाभास था, अपने नाम के विपरीत अधीरा में धैर्य कूट कूट कर भरा था। मनोज के बेमतलब के इल्जामों को सुनकर कुछ दिन तो वो खूब रोती रही, कुछ माह उदास रहती थी, पर अपने बेटों का मुख देखकर सब कुछ भुला देती थी। रोने की आवाजें अब तेज हो चली थीं, एक एक सरकते पल में जैसे सांसों में धुआं भरता महसूस हो, जैसे नब्ज डूबती ही जा रही हो। हर गुजरता लम्हा उन्हें मिलने के बजाय दूर करने के लिए तैयार खड़ा था। दोनों बेटे और अनुभा, सुगंध के पति और उनके बेटे अधीरा का पार्थिव शरीर को उठाकर बांस पर बनी सेज पर लिटा रहे थे। बांस पर सूखी पुआल भी पड़ी थी, उस पर सफेद चादर बिछा दी गई। उस पर मत लेटाओ मेरी अधीरा को, उसके कोमल बदन पर खरोंच लग जाएगी। मनोज मानो तड़प उठा। मनोज आगे बढ़ा, पर दोनों बेटों की अंगार भरी आंखों को देखकर पांव जमीन पर चिपक कर रह गए। इसके आगे मनोज कुछ कह ही नहीं सका, उसके कदम भी लड़खड़ा कर रह गए। भाभी अपराजिता ने उसे थाम लिया। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं भैया, जब तुम जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा ना कर सके तो अब मृतदेह से मुंह दिखाने का क्या फायदा। चुपचाप किसी कोने में खड़े रहो, नहीं तो अपने दोनों बेटों का गुस्सा तो तुम्हें पता ही है ना। जीते जी अधीरा अपने दोनों बेटों से कहकर गई थी कि मैं मरूं तो मेरा तथा कथित पति मेरा अंतिम संस्कार ना करे, करना तो दूर, मेरा चेहरा भी ना देखे, मुझे छू भी ना सके। और बेटों ने इस बात का पूरा मान रखा था। अतीत के वे पल चलचित्र की भांति मनोज की आंखों में तैर उठे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है सम्मान। अब तक आपने सुना, मनोज के शक्की स्वभाव के कारण उसकी पत्नी अधीरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन खुद को संभाले अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। अब वो इस दुनिया में नहीं थी और जाने से पहले वो मनोज से ये अधिकार छीन चुकी थी कि वो उसका अंतिम संस्कार भी करे। अब आगे अविश्वास का फन ना केवल सिर उठा चुका था, बल्कि जहरीली फुफकार मारता ही रहता था। एक रोज जब वो अधीरा को अपशब्द बोल रहा था, उसी वक्त उसका बेटा सजल चीख उठा, चुप रहिए, आपके शक ने आपको अंधा कर दिया है, पर मेरी माँ को आप एक भी अपशब्द अब नहीं कहेंगे। मुझे मम्मी की सहेली मधु आंटी ने सब कुछ बता दिया है, आपके शक का कोई इलाज नहीं है। जवान बेटे का क्रोध देखकर मनोज ठंडा पड़ गया था। उधर अधीरा अपने दोनों जवान बेटों के सामने पति के मुंह से ऐसे लांछन सुनकर मानो शर्म से गड़ी जा रही थी। वो तड़प कर बोल पड़ी, सजल, सारांश, मेरे बच्चों, अब सफाई दे देकर थक गई हूं। मैं मर जाऊं तो पति नाम के इस इंसान को मेरी मृत देह को छूने भी मत देना और चेहरा भी मत देखने देना। उस दिन से अधीरा ने मनोज को पति के सिंहासन से उतार कर जमीन पर लापटका। करवा चौथ आदि सब त्याग दिया अधीरा ने। कितनी बातें थीं जिन्हें साझा करने की जरूरत थी, कितने खुले घावों को सिला जाना था, कितनी खरोंचों पर मोहब्बत के फाहे रखे जाने थे, पर घड़ी की टिक टिक ने नए घाव दिए। कितना हंसना था, कितना रोना, पर बेरहम वक्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। पलक झपकी और पल गायब। वहां उपस्थित लोगों के रुदन से मनोज अपने वर्तमान में लौट आया। हाय, क्या मैं अंतिम समय में अपनी जीवन साथी का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा? अधीरा का चिर निद्रा में लीन चेहरा शांत था, जैसे तमाम जिल्लत और रुसवाई से मुक्ति पा गई हो। अधीरा की बहनें, सखियां और दोनों जेठानी तेज स्वर में रो रही थीं। सजल अपने हाथों में मिट्टी का घड़ा लेकर जा रहा था। सारांश और परिवार के कुछ अन्य पुरुष अर्थी को कंधा देकर ले जा रहे थे। जिस अर्धांगनी को वो हमेशा पर पुरुष के नाम के साथ जोड़कर उसका चरित्र हरण करता रहा, उसे ही आज गैर पुरुष कंधा दे रहे थे। पर मनोज के लिए वर्जित था अधीरा को छूना तक भी। अविश्वास, शक का फुफकारता नाग मनोज के मन में आज निर्जीव सा पड़ा था और जीते जी इसी लाश को ढोते रहना था उसे अब ता उम्र।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी सम्मान। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। Yes, of course. मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाए उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया। 1995 था जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाए ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाए की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाए भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाए को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती है। वे बॉलीवुड में तो करती लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चनाई ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं